mulțumită, drumada la șobini. Suna sinii, sumătura mașinii,

यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की सातवीं तिथि तदनुसार 28 जून सन 2026 सुबह के 10:53 हुए हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे अगला प्रसारण, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
1: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शब्द कीर्तन,
2: कोई बोले राम,
1: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
2: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
4: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: बोल बोल के थक गया, क्या हुआ? नया किट बैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो।
5: नहीं सुना तो मैनेजर से।
6: करेक्ट।
5: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले
6: ले आ गया ना किट बैग।
7: RBI कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
9: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सबसे जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती है। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी है। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर

0: मिला।
1: वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की ये ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी

इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वही
समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती, और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूँ। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे, कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है, और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनकी रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है, इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की
विमेन फुटसल लीग,

हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्य शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीख

करने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनकी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज, रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है, इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती है। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती है। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे। लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि ये किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया।
ये नहीं सोचा

0: रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो, वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं, वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती है। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले, तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हां, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक

नन्हे जैसलमेर सुनने वाले सभी प्यारे और मासूम से मेरे बच्चों को, मेरे छोटे भाइयों बहनों को, मेरे प्यारे दोस्तों को, आपकी रेडियो दीदी सुधा पुरोहित का प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चा, आज फिर हम हाजिर है हमारे पसंदीदा कार्यक्रम, आपके पसंदीदा कार्यक्रम नन्हे जैसलमेर के साथ, जिसमें हम काफ़ी कही और अनकही बातें करते हैं। बच्चों, बोलना हर कोई जानता है, और हम नॉर्मली भी घर में परिवार वालों के साथ, स्कूल में दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ हम कोई ना कोई बात करते हैं, हम बोलते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि स्टेज पर अगर बोलना है, जाकर मंच का संचालन करना है, तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि बच्चों में स्टेज फियर होता है, मतलब स्टेज का डर होता है। तो आज हम जो जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, उसमें यही है कि स्टेज के डर को कैसे दूर कर सकते हैं हम भी औरों की तरह। आपने टीवी में देखा होगा कि कई लोग बिंदास होकर स्टेज पर बोलते हैं, तो हम कैसे स्टेज पर, मंच पर संचालन कर सकते हैं और ये बिना डरे, बिना भय के एकदम आत्मविश्वास के साथ बोल सकते हैं? तो बच्चों, अगर स्टेज का डर जो है वो दूर करना है, तो सुरक्षित और आरामदायक माहौल में बोलने का आपको अभ्यास करना होगा। आप छोटे स्तर से शुरुआत कीजिए, जैसे घर के सदस्यों या खिलौनों के सामने बोलना शुरू कीजिए, और समझाइए आप खुद को कि घबराहट होना तो सामान्य बात है, लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे तो ये डर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और मंच के भय को समाप्त करने के लिए हम कुछ बातों का ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि डर को सामान्य मानिए, एकदम नॉर्मल मानिए। बच्चों को हमें समझाना होगा कि मंच पर जाने से पहले घबराहट या धड़कन तेज होना एक आम बात है। बच्चों को ये भी बताइए कि बड़े वक्ता और कलाकार भी कभी कभी नर्वस होते हैं, ये जानकर उन पर दबाव कम होगा। बच्चों को अचानक बहुत बड़ी भीड़ के सामने भेजने के बजाय घर के सदस्यों या जो करीबी दोस्त हैं उनके सामने बोलने के लिए कहा जा सकता है, या डाइनिंग टेबल या लिविंग रूम में भी एक छोटा सा मंच बनाया जा सकता है, जहां से वे कविता या कहानी सुना सके। बच्चों, डर का सबसे बड़ा कारण होता है अच्छी तैयारी न होना। जब आप लोग अपनी प्रस्तुति जैसे स्पीच या नाटक को कई बार दोहराते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। आप आईने के सामने खड़े होकर भी बोलने की आदत डाल सकते हैं, और अपने जो पसंदीदा खिलौने हैं, गुड्डे या गुड़िया है, तो उनके सामने भी बोल सकते हैं, ताकि आपका जो ध्यान है वो दर्शकों से हटकर कला पर केंद्रित होगा। बच्चों, अगर आपको कभी भी स्टेज पर बोलने का मौका मिले ना, तो आप दर्शकों पर ध्यान मत दीजिए। आप जो बोल रहे हैं, आपको बोलने की जो कला है, उस पर आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप काफ़ी लोगों की, सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच बोल रहे हैं। और एक बात और है कि अपनी गलतियों से आप सीखिए, क्योंकि अगर आपसे गलतियां हो भी जाती है, तो गलतियां सीखने की प्रक्रिया जो है वो एक सामान्य हिस्सा है, आप अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। और अगर आप मंच पर कुछ भूल जाते हैं, तो बिना घबराहट के आप आगे बढ़िए, जैसे रिकवरी प्लान जो है वो तरीका आप अपना सकते हैं। साथ ही साथ इंटरनेट पर मशहूर लोगों या बच्चों के भाषण के जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं अच्छे से। और सबसे बड़ी बात ये है, जो मैं सभी माता पिता से कहना चाहूँगी, कि बच्चों की अच्छी बातों और सफलताओं के लिए उनकी तारीफ कीजिए। और अगर आपका बच्चा किसी विशेष कार्यक्रम या स्कूल की किसी गतिविधि में भाग लेने जा रहा है, तो आप भी उनके लिए उनकी मदद कर सकते हैं, और कोई आसान सी जो स्पीच है वो आप उनके लिए लिख के दे सकते हैं। और बच्चों को ये सुझाव दीजिए कि वे अपने दोस्तों या परिवार के सामने अपने स्क्रिप्ट का अभ्यास करें, ताकि वह किरदार में और भी सहज हो सके। और आप उनका वीडियो भी बना सकते हैं, ताकि वो ये देख सके कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और सुधार की ज़रूरत जो है वो कहाँ है। तो बच्चों की भावनाओं को हमें समझना होगा, उन्हें सुरक्षित माहौल देना होगा, और

बच्चों में अगर बोलने का डर है तो उन्हें सुरक्षित माहौल देना होगा ताकि बच्चे जो है वो आत्मविश्वास के साथ मंच का संचालन कर सके। बातें आगे भी जारी रहेगी बच्चों, क्योंकि आपके लिए इंतजार कर रही है एक प्यारी सी कहानी। लेकिन बातों के साथ संगीत भी उतना ही जरूरी है। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

इसी के साथ प्यारे बच्चों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक प्रेरणा देने वाली कहानी। कहानियां तो आपने भी दादी नानी से अपने घर में बड़ों से काफी सुनी होगी, लेकिन जब हम कहानी की बात करते हैं तो कहानी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिले। तो एक ऐसी ही बहुत लोकप्रिय और प्रेरणादायक कहानी है जो हमें एकाग्रता, धैर्य और आत्मविश्वास का महत्व सिखाती है। एक साहसी और पराक्रमी राजा युद्ध में शत्रु पक्ष से पराजित होकर गहरी निराशा में डूब जाता है। वह अपना सिंहासन, राज्य और सम्मान खोकर एक गुफा में शरण लेता है। वहां बैठकर वह गहरे चिंतन में डूब जाता है और सोचने लगता है कि उसके जीवन में अब कोई आशा शेष नहीं रही। एक दिन गुफा के भीतर विश्राम करते समय उसकी नजर एक छोटी सी मकड़ी पर पड़ती है जो बार बार जाला बुनने का प्रयास कर रही होती है। मकड़ी कई बार गिरने के बाद भी हार नहीं मानती। इस प्रकार अनेक प्रयासों के साथ वह सफलतापूर्वक अपना जाल बुन लेती है। यह दृश्य देखकर राजा के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठती है। वो समझ जाता है कि असफलता जीवन का एक अंतिम परिणाम नहीं है, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद राजा नए उत्साह के साथ अपने सैनिकों को संगठित करना प्रारंभ करता है और कठोर परिश्रम और उचित योजना के माध्यम से फिर से युद्ध करता है। अंततः वह अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर लेता है। बच्चों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कठोर परिश्रम और अगर योजना बनाकर हम काम करें और धैर्य और साहस और निरंतर प्रयास करें तो किसी भी बाधा को पार करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कहानी की तरह बच्चों, आपको भी घबराना नहीं चाहिए। जिस तरह से एक धैर्य और मेहनत के साथ मकड़ी ने अपने जाले को अंततः ये कहें कि बना ही लिया और राजा को उससे प्रेरणा मिली, तो आप लोगों को भी इस तरह के किस्से और कहानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हमें पेशेंस रखना चाहिए। जल्दबाजी में किसी भी काम के सफल होने की गुंजाइश नहीं होती है। काम तो काम है बच्चों, हंसते हुए करो चाहे रोते हुए करो, तो हम हंसते हुए ही करें ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें काम करने का भार पड़ता है, यहाँ तक कि होमवर्क करने का भार पड़ता है। और मैंने तो कई बच्चों को देखा है जो अपना स्कूल बैग उठाकर भी अगर उनको ले जाना पड़ता ना, तो उन्हें बहुत भार आता है कि उन्हें इतना भारी बैग कौन उठाएगा। तो बच्चों, एक छोटी सी मकड़ी ने अपने दिमाग से, अपने आत्मविश्वास से, अपने धैर्य से, साहस से धीरे धीरे बार बार असफल होने के बावजूद, गिरने के बावजूद आखिर सफलता का रास्ता तैयार कर लिया। तो आपको भी अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखना है कि आप कोई भी काम करते हैं तो जल्दबाजी मत कीजिए। एक सुकून के साथ आप काम कीजिए और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमारा जो काम है वो पहली बार में ही हम सफल हो जाएंगे। अगर हम असफल हो भी जाते हैं तो आप निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रयास करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास भी आता है और हमें खुद से ही काम को करने की प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों, इसी कहानी के साथ में हम एक बार फिर विराम लेते हैं और चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक गीत।

दामा माँ दूर के हुए पकाए भूर के आप खाए थाली में सुनने को दे प्याली में आप खाए थाली में सुनने को दे प्याली में।

चंदा मामा दूर के बच्चों वचन फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसे आवाज दी थी आशा भोसले ने। सही कहा इस गाने में कि चंदा मामा तो बहुत दूर है, लेकिन सभी बच्चों के प्रिय होते हैं चंदा मामा। चंदा मामा और सूरज दादा, हम बचपन में बच्चों यही कहते थे कि चंदा मामा है और सूरज दादा है। बचपन के वो दिन बहुत सुहाने होते हैं, बहुत याद आते हैं। बचपन में ये लगता था कि हम बड़े कब होंगे, और अब हम जब बड़े हो गए तो ये लगता है कि हम छोटे ही अच्छे थे, वो बचपन ही अच्छा था। खैर बच्चों, उम्र का हर पड़ाव तो हमें पार करना ही पड़ता है। अब हम जिस बात की चर्चा करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए, या ये कहें मानव प्रजाति के लिए, और वो है वृक्षारोपण या पौधारोपण करना। बच्चों, पौधे लगाना पर्यावरण संरक्षण और मानव अस्तित्व के लिए अत्यंत जरूरी है। पेड़ हमें प्राण वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को सोखते हैं, प्रदूषण कम करते हैं और जलवायु को संतुलित रखकर हमें प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाते हैं। शुद्ध हवा और ऑक्सीजन तो हमें पेड़ों से ही मिलती है। पता है आपको, पेड़ प्राकृतिक एयर फिल्टर की तरह काम करते हैं, और वे आर्बर डे फाउंडेशन के अनुसार वातावरण से हानिकारक प्रदूषकों को छानकर हवा को भी साफ करते हैं और सांस लेने के लिए ताजी ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग भी कम होती है। मृदा अपरदन रोकना, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कसकर बांध के रखती है बच्चों, जिससे बाढ़ या तेज हवाओं के कारण मिट्टी का कटाव रुकता है, और पेड़ वर्षा के जल को भी सोखते हैं, जिससे भूजल भी, जो ग्राउंड वाटर होता है, वो भी बढ़ता है। वन और पेड़ पौधे लाखों जीव जंतुओं और पक्षियों का प्राकृतिक आवास होते हैं, और इनसे हमें फल, सब्जियां, लकड़ी, जीवन रक्षक जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाली के बीच समय बिताना तनाव और मानसिक जो अवसाद होता है, डिप्रेशन जो होता है, उसको कम करने में मदद भी करता है। एक बात मैं आपको और बताऊं कि आजकल जो एक फ्लैट सिस्टम चल रहा है, लोग ये कहते हैं कि मतलब हमारे घरों के आसपास जगह नहीं है खुली कि हम पेड़ पौधे लगा सकें, तो मैं आपको इसका भी एक बता दूं कि हम अपने घरों में अगर छोटी सी बालकनी है या एक थोड़ी सी खुली जगह या छत के ऊपर भी हम ग्रीन नेट लगाने के बाद में गमले जो है वो लगा सकते हैं। तो मैंने तो भाई अपने घर पे कई गमले लगा के रखे हैं, क्योंकि उससे भी ये कह सकते हैं कि ज़रूर हम कुछ न कुछ तो योगदान दे ही सकते हैं। तो बच्चों, आप छोटे छोटे जो पौधे हैं उनको लगाइए, और मैं तो ये कहती हूँ कि पौधारोपण को आप जन आंदोलन का रूप दीजिए। हम सबको मिलकर इसे जन आंदोलन बनाना होगा, और इसे अपनी भावनाओं, स्वास्थ्य और जो पर्यावरण संरक्षण है उससे जोड़ना होगा। जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम जैसे भावनात्मक अभियान या जन्मदिन जैसे विशेष अवसर आते हैं, तो पौधे लगाकर आप लोगों को इसके प्रति प्रेरित कर सकते हैं। और एक बात और है कि सही तरीके से अगर हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो पर्यावरण भी शुद्ध होता है और हमें स्वच्छ प्राणवायु भी मिलती है। बच्चों, पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, और हम एक पेड़ माँ के नाम का संकल्प ले सकते हैं अपनी माँ के सम्मान में, या उनकी स्मृति में भी एक पेड़ अवश्य लगा सकते हैं। ये तो एक बहुत ही भावनात्मक और प्रेरक पहल है। और अब बच्चों, मैं तो बच्चों की माता पिता से भी कहना चाहूँगी कि अपने अपने बच्चों के जन्मदिन, शादी की सालगिरह या अन्य कोई खुशी के मौके हैं तो हर हाल में एक नया पौधा लगाने की परंपरा शुरू कीजिए और पेड़ को नाम दीजिए। जब आप किसी पेड़ से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं ना, तो उसकी देखभाल करना बहुत आसान हो जाता है। और आप कई सामुदायिक और सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम भी चला सकते हैं अपने मोहल्ले, स्कूल या कार्यस्थल पर ट्री प्लांटेशन ड्राइव आयोजित कर सकते हैं। जो लोग अपने लगाए पौधों की बच्चों की तरह देखभाल करते हैं, उन्हें ग्रीन चैंपियन या पर्यावरण प्रहरी के रूप में सम्मानित किया जा सकता है। और अपने पौधे लगाते हुए हरियाली भरी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं ताकि लोग प्रोत्साहित हो। तो बच्चों, जैसे बारिश का मौसम आता है अभी, जैसे जुलाई और अगस्त का, तो उस समय में पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि इस समय पौधों के जीवित रहने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और हमें सही पौधों का चुनाव करना चाहिए जो स्थानीय वातावरण और जलवायु के अनुकूल हो, फलदार हो, छायादार हो और औषधीय पौधे हो।
और बच्चों केवल पौधे लगाना ही काफी नहीं है, उनके बड़े होने तक बच्चों की तरह उनकी सुरक्षा करना, उन्हें पानी देना, खाद देना, ये सब भी बहुत जरूरी है। तो बच्चों, हम पौधारोपण करके पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ एक बेहतर भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आप मेरी बात को मानेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे। और अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी खाली जगह दिखती है तो वहाँ पर आप बीज डालकर पौधे उगाने का काम करेंगे, लेकिन सिर्फ पौधे उगाएंगे नहीं बल्कि उनकी देखभाल करने का भी प्रण लेंगे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, क्यों न चले संगीत की दुनिया में और सुने एक प्यारा सा नगमा।

सही कहा इस गाने में बच्चों, मम्मी और डैडी का यानी माता पिता का प्यार कभी कम ना तो कम होता है और ना ही कभी बढ़ता है। तो एक प्यारा सा गाना आपने सुना कालीचरण फिल्म से, और जिसे आवाज दी थी अनुराधा पौडवाल और कंचन ने। तो बच्चों अब घड़ी ने भी इशारा कर दिया है कि आपसे विदा होने का समय आ चुका है, लेकिन हम वादा करते हैं कि हम आपसे जल्द मिलेंगे और हम ढेरों बातें करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अपने आप दीदी की आज कही बातों को ध्यान में रखेंगे। एक तो आपको मंच संचालन करना है, स्टेज पर जाना है, तो आप अपना पेशेंस नहीं खोएंगे और एक कॉन्फिडेंस के साथ में आप धीरे धीरे अपने मन के डर को, भय को दूर करते हुए बहुत अच्छे मंच संचालक बनेंगे। साथ ही साथ बाल कहानी से भी आपको सीख लेनी है कि किसी भी काम में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ, साहस के साथ बार बार कोशिश करनी है। और सबसे बड़ी आज के कार्यक्रम से हमें जो सीख मिलती है वो ये है कि हम अपने जीवन में पेड़ पौधे लगाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे ताकि हम अपनी मानव सभ्यता को बचा सकें। अब एक आपसे वादा और एक खुद की तरफ से इरादा कि जल्द आपसे मिलूंगी, ढेरों बातें करेंगे, कुछ खूबसूरत नगमों के साथ और एक प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार और प्यार भरा नमस्कार।

यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू को। फिल्म का नाम था आशिकी। अगला गीत आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है बादल।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, चमेली फिल्म में आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान को। अगला गीत आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाजों में। फिल्म का नाम है दिल मांगे मोर।

ਮੇਰੀ ਮੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀਏ ਚੰਨ ਬਲੀਏ।

0: अभी आप सुन रहे थे सुदेश भोसले और अलका यादव को, फिल्म का नाम था बागवान। इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजे हैं, अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: बारिश की एक एक बूंद को बचाने और कैच द रेन अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने की अपील करते हुए वोकल फॉर लोकल को अपनाने का आह्वान किया है। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने जून महीने के दौरान देश की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों और महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है और देश आज समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने ईंधन बचाने, कुछ समय के लिए सोना नहीं खरीदने और विदेशों में छुट्टियां मनाने से बचने के लिए बीते दिनों किए गए अपने आग्रह पर देशवासियों से मिले समर्थन पर आभार जताते हुए कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि देश का हर नागरिक वैश्विक संकट का मिलकर मुकाबला कर रहा है।
2: मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो

0: कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचे कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचे, कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया। मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूँ कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना का उल्लेख करते हुए योजना की प्रगति और इनके लाभों की जानकारी एक दूसरे तक साझा करने की अपील की। उन्होंने अंधविश्वास पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर धारणाओं को बदलने को कहा। श्री मोदी ने एआई टूल्स को देश की संस्कृति तथा भारतीय ज्ञान भाषाओं के संरक्षण में काम लिए जाने पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के कई भागों में गांवों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए आगामी महीनों में गणेश उत्सव की तैयारियों में लगे मूर्तिकारों से मिट्टी से बनी मूर्तियां बनाने और खरीदारों से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां नहीं खरीदने की अपील भी की। आकाशवाणी के इस बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम को सुनने को लेकर प्रदेश भर में खासा उत्साह दिखाई दिया। प्रदेश भाजपा की ओर से कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई। राजस्थान सहित देश भर में आज से 3 दिन के राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जा रही है। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 59,000 से अधिक बूथों पर ये दवा पिलाई जा रही है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ मोबाइल और ट्रांजिट टीमें गठित की गई हैं, जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक तथा अन्य आवागमन स्थलों पर भी बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की दवा पिला रही है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। श्री नरसिम्हा राव को 90 के दशक में वैश्विक संकट और मंदी के दौर में भारत को सुरक्षित रूप से बाहर रखने पर कुशल प्रशासक के तौर पर याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि देश के महत्वपूर्ण दौर में श्री राव ने भारत की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 269 पदों पर चयन के लिए सुबह 11 से 1 बजे तक एक पारी में ये परीक्षा ली गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम मूमल।

0: मोमल कार्यक्रम सुन रही मेरी सभी प्यारी प्यारी सखियों को मैं आपकी रेडियो सखी ललिता और मैं प्रीति भाटिया करती हूँ प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार सखियों,
0: तो उम्मीद है कि हमारी सभी बहनें सकुशल होगी और इस इतवार की दोपहरी में हमसे गुफ्तगू करने के लिए और जो हम लेकर के आते हैं अपने पिटारे में ललिता अपनी सखियों के लिए कि आज इस मुद्दे पर बात करेंगे, आज ये प्यार और सनगमा सुनाएंगी, वो सुनने के लिए हमारे साथ ही जुड़ी होंगी। तो बस यूँ ही आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी तमाम कामों और जिम्मेदारियों के बीच में कुछ पल हमारे लिए भी निकाल कर रहे हैं।
1: बिल्कुल प्रीति, और तुम्हें पता है कि आज जब मैं सुबह घर से रवाना हुई तो आकाशवाणी के लिए मैं रवाना हो ही रही थी।

0: तो रास्ते में मैंने एक बहुत सुंदर दृश्य देखा।
1: अच्छा
0: क्या देखा? एक माँ है ना, अपनी नन्ही से बेटे का हाथ पकड़कर सड़क पार कर रही थी, और बेटी के हाथ में एक चॉकलेट का छोटा सा रैपर था। उसने जैसे ही उसे सड़क पर फेंकना चाहा तो माँ ने तुरंत उसका हाथ रोक लिया और
1: वाह,
0: प्यार से मुस्कुराई और इशारा सामने रखे डस्टबिन की तरफ किया। और बेटी दौड़ कर गई और कचरा उसने डस्टबिन में डाल दिया। ये देखकर तो प्रीति, मेरा मन तो खुश हो गया।
1: बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि कम से कम कुछ लोग तो हैं हमारे आसपास ऐसे, हमारे देश में ऐसे, जो इस चीज को लेकर के, इस बात को लेकर के जागरूक हैं कि जिस तरह से घर में हम हर चीज करीने से रखते हैं, और जिस चीज की जो जगह होती है ललिता, वहीं रखते हैं, तो कचरा फेंकने के लिए भी कचरा पात्र बने हैं, डस्टबिन बने हैं। उन्हें यहाँ वहाँ फेंकना हमारी बेवकूफ़ी का और हमारी कर्तव्य निष्ठा की कमी का एक बहुत गंभीर उदाहरण होता है।
0: बिल्कुल प्रीति। और आज का जो हमारा आज की बात है वो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा हमारी सबकी साझी जिम्मेदारी है। तो जब हम सार्वजनिक संपत्ति शब्द सुनते हैं ना, तो अक्सर हमारे मन में एक छवि बनती है कि ये सब तो सरकारी चीज़ें हैं। और हमारे समाज में एक बहुत पुरानी कह सकते हैं कि गलत धारणा बैठ गई है कि जो सरकारी है वो किसी का नहीं है, मेरा क्या जाता है, ये तो सरकार का है। लेकिन अगर हम जरा ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो बस जिनमें हमारे जो बसें चलती हैं, जिनमें हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं, जो ट्रेनें चलती हैं, जिसमें हमारे भाई पति या हम खुद सफ़र करते हैं, या वो अस्पताल जहाँ मुश्किल वक्त में हमारा इलाज होता है, और वो सुंदर पार्क जहाँ हमारे बुजुर्ग सुबह हम सब ताज़ी ठंडी हवा लेते हैं, तो क्या ये सब वाकई से सरकार के हैं?
1: सरकार भी तो हमारी है, कहीं और से थोड़ी ना सरकार आई है। याद रखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ हम अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, मतलब हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और जिन्हें हम चुनते हैं वो हमारे बिहाफ पर इस पूरे देश का कामकाज चलाते हैं नियमों के अनुसार, संविधान के अनुसार। तो बहुत गौर करने वाली बात है, सरकार जो है ना वो लोगों का समूह है, व्यक्तियों का समूह है जो हमारा हमें हेल्प आउट करने के लिए काम करते हैं। सरकार कहीं कमाने नहीं जाती, सरकार वही पैसा खर्च करती है बहनों जो हमारा कमाया हुआ होता है, जो हम टैक्स के थ्रू देते हैं। अब बताइए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ना, कि जब पेड़ की डाल पर बैठे हैं उसी को काटे जा रहे हैं। और ललिता, आप जानते हैं कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक मानवीय प्रवृत्ति है, हम उस मुद्दे में बहुत जल्दी बात करते हैं जहाँ से हमें फ़ायदा दिखता है, यानी हम हमेशा चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं कि मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। और आप देखिए, लगभग भारत के हर व्यक्ति को पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में उन्हें कौन से संवैधानिक अधिकार दिए हैं, पर लोग इस मुद्दे पे बात करना भूल जाते हैं कि जहाँ अधिकार आते हैं वहाँ बिल्कुल पीछे पीछे पीछे पीछे अधिकारों का दामन पकड़े धीरे धीरे कर्तव्य भी आते हैं, कर्तव्य यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप क्लेम की बात करते हैं तो फिर आप ड्यूटी की भी बात करें। और मैं छोटी सी ना एक प्रेरक प्रसंग कहें ललिता, आप या बात आपके साथ शेयर करना चाहती हैं?
0: बिल्कुल बताइए।
1: विवेकानंद जी जब जापान गए थे, जापान एक बहुत छोटा सा देश है भारत के मुकाबले, अगर आप देखें तो बड़ा छोटा सा राष्ट्र है, पर अगर वर्तमान में भी हम देखें तो बहुत तरक्की कर चुका है। उन्होंने वहाँ जाके एक बड़ी अच्छी सी चीज़ देखी, क्योंकि आप बस की बात कर रही थी, तो बस की यात्रा में माँ बच्चा कर रही थी यात्रा, तो कई बार होता है ना कि सीट का कवर थोड़ा सा फटा हुआ सा होता है, ऊपर का लेदर या स्किन निकल रही होती है, तो बच्चे ने उसमें से कुछ फॉर्म निकाला, यहाँ वहाँ बिखेरा। तो देखकर माँ को बहुत गुस्सा आया, उसने पहले बच्चे का हाथ पकड़ा, डांटा, और उसके बाद में से सुई और डोरा अपने बैग में से निकाला और उस सीट को चलने लगी।
0: बिल्कुल, और हर महिला अपने पर्स में ये चीज़ तो रखी होती बड़ी रखती है।
1: लेकिन लेकिन यदि हम भारत में होते तो ललिता हम सिलते नहीं,
0: हम
1: बच्चे को कुछ कहते नहीं, हमें लगता वही आपकी वाली बात कि मेरा क्या जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है। तो अगर हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा नहीं करेंगे, सुरक्षा नहीं करेंगे, हम अपने वातावरण की रक्षा नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने बच्चों को भी कुछ नहीं समझा सकते हैं। और बस ये बिल्कुल वही होता है कि आपके बच्चे किसी और रिश्तेदार के घर में जाके वहाँ तबाही मचा के आ जाएं, बड़ी शर्मिंदगी वाली स्थिति होती है। लेकिन हर दिन वो स्थिति हम करते हैं जब हम जाते हैं पब्लिक टॉयलेट में और फ्लश नहीं करते हैं, जब हम पान की पीक गुटखा यहाँ वहाँ थूक देते हैं, हर एक दीवार का कोना, एक लाल कोना हमारी इस बदतमीजी का गवाह होता है।
0: बिल्कुल प्रीति। और अक्सर जब हम सार्वजनिक इस तरह के टॉयलेट वगैरह यूज़ करते हैं तो हम दूसरों को, हम हमारे मुँह से अपशब्द कई बार निकल जाते हैं कि लोग कैसे हैं,
1: कितना
0: गंदा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम

0: उसी तरह का व्यवहार करते हैं तो दूसरा पर्सन भी हमें ऐसा ही बोलता होगा।
1: तो मुझे लगता है कितना बड़ी अंदर से आती है, कितना आपका कॉन्शियस क्या अलाउ कर रहा है। अगर हम घर में भी बच्चों को टॉयलेट यूज़ करने के मैनर्स नहीं सिखा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि कोई शर्मिंदगी की बात नहीं अगर हमें टॉयलेट साफ करना नहीं सिखा रहे हैं, घर में हम उन्हें ये नहीं बता रहे कि जब आपने खाना खा लिया आपकी थाली में से जो कचरा है वो घर में भी कचरे के पात्र में होना चाहिए, उसके बाद में आप आपकी थाली सिंक में रखें, सीधा ही भर के ना रखें। जब छोटी छोटी आदतें बहनों घर से शुरू होगी तभी वो धीरे धीरे बहुत बड़ी राष्ट्र की जो समस्याएं हैं उनको सुलझा पाएगी, अन्यथा हमारे हालात बद से बदतर होते ही जाएंगे।
0: बिल्कुल प्रीति, और बातें तो बहुत सारी करनी है लेकिन समय हो चला है एक खूबसूरत गीत सुनने का, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

खुद दिल की मैं कम भी मैं दे दूं अपना। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है। दिल ने दस्तरखान बिछाया।

0: davate davate ishq hai
1: ishq hai ishq hai davate ishq
0: davate davate ishq hai davate davate ishq hai
2: और ये प्यारा सा मीठा संगीत हमने सुना। दावत की बात हो रही है ललिता जी, तो मुझे दिल में तो बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ खाने का मन कर रहा है। और मुझे लगता है कि घर की रसोई है ना, उसमें खाना बनाते बनाते एक दिन ऐसा होता है कि कभी कोई हमारे लिए बना के आए, कोई हमारे लिए थाली परोस ले जाए।
3: बिल्कुल प्रीति, और किसी ने खूब कहा है कि जैसा खाए अन्न और जैसा रहे मन। लेकिन मैं इन सब में एक लाइन और जोड़ना चाहूंगी कि जैसा साफ होगा अन्न, वैसा ही हमारा स्वस्थ रहेगा तन।
2: बिल्कुल,
3: तो हम महिलाएं सुबह उठते ही सबसे पहले कहाँ जाते हैं, सीधा अपनी रसोई में और अपनी भोजनशाला में। रसोई सिर्फ घर का एक हिस्सा नहीं, ये हमारे पूरे परिवार के स्वस्थ का एक कह सकते हैं पावर हाउस है, उसका केंद्र बिंदु है। यहीं से होकर हमारे बच्चों की सेहत, हमारे पति की ऊर्जा और हमारे बुजुर्गों की लंबी उम्र का रास्ता जो है गुजरता है। इसीलिए अपनी भोजनशाला को हमें हमेशा ना साफ सुथरा रखना चाहिए, और वह तो हम करती ही हैं। तो जब हम घर की बाकी हिस्सों को सजाने में बहुत सारा वक्त लगाती हैं, कई बार ड्राइंग रूम में सुंदर पर्दे लगाना और सोफे चमकाना, हमारा जो असली ध्यान जहाँ होना चाहिए वो होती है हमारी रसोई। अक्सर लोग सोचते हैं कि रसोई तो केवल खाना बनाने की जगह है, बर्तन धुल गए और हो गया काम खत्म। लेकिन जरा हम गहराई से सोचेंगे तो अगर हमारी भोजनशाला में जरा सी भी लापरवाही होती है, वहाँ बाहरी कीटाणु जैसे कि कॉकरोच जो होते हैं ना, वो अपना घर जल्दी से बना लेते हैं। और वो कीटाणु जो हमें आंखों से तो नहीं दिखाई देते, लेकिन हमारे खाने के जरिए कई बार परिवार के पेट में भी पहुँच जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हम तो घर का शुद्ध खाना खा रहे हैं, फिर भी बच्चे टाइम टाइम से बीमार क्यों हो रहे हैं और इनके पेट में इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। तो उसका कारण छुपा होता है हमारे रसोई के किसी कोने में जमी गंदगी में, या सिंक में रात भर जो छोड़े गए जूठे बर्तनों में। तो हमारी रसोई को आयुर्वेद में औषधालय यानी दवाओं का घर कहा गया है, क्योंकि वहीं तो रखी होती है हल्दी, अजवाइन और सौंठ जो इन सब बीमारियों को दूर करती है। लेकिन हर जगह औषधालय ही साफ नहीं होगा तो बीमारियाँ जो हैं वो अपना घर तो बनाएंगी ही। और इसीलिए पहले से एक रिवाज का बना हुआ है कि रात के जूठे बर्तन कभी भी हम सिंक में नहीं रखते हैं।
2: बिल्कुल,
3: हमें इसके लिए कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी नहीं आती है, समृद्धि नहीं आती है। खैर, इस चीज़ें तब कही जाती थी जब व्यक्ति के दिल में थोड़ा धर्म को लेकर के डर होता था। साइंटिफिक मैनर में हम बात करें तो वो जो बर्तन जो पूरी रात पड़े रहते हैं, चाहे हम उसमें पानी डालें या ना डालें, उनमें कहीं ना कहीं बहुत माइक्रो बैक्टीरिया ज़रूर पनपते हैं, वो हमें दिखते नहीं है। दूसरा, जब आप सुबह सुबह उठिए और आप थोड़ा नज़र डालिए किचन की तरफ, सिंक भरा हुआ पड़ा है, बर्तन यहाँ वहाँ है, जूठन हमने बाहर नहीं फेंकी है, तो ना बहुत फ्रेशनेस का फील नहीं होता है। इसलिए भी अगर हम साफ सफाई रखते हैं, जितना अपने घर को बहुत अच्छे से साफ करते हैं, कर्टेन साफ हो, नई बेडशीट बिछाते हैं, तो घर कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल वैसे ही समय समय पर हमें अपनी रसोई में साफ सफाई करनी चाहिए। साफ सफाई का मतलब सिर्फ ऊपरी ऊपरी बर्तन साफ करना नहीं है, बल्कि किसी दिन किसी एक रैक को आप खोल करके देख लें, किसी दिन डिब्बों को थोड़ा पलट लें, क्योंकि कई बार लगी था छोटी बड़ी चीज़ें भी होती है जो रसोई में पड़ी होती हैं, हमें पता नहीं चलता। फ्रीज की अच्छे से आप सफाई करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो खाना बनाते हैं वो उसके स्वाद के लिए नहीं होता, जीवन जीने के लिए खाना बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अब कई बार हम जाते हैं ना किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, अगर हमें नज़र पड़ जाती है हमारी किचन की तरफ, दिल इतना खराब होता है और ऐसा लगता है कि अगली बार तो कभी ना खाएं, पता नहीं कैसा होगा,
2: खाने का मन नहीं करता उस समय,
3: मन नहीं करता। बाजार की चीज़ों के प्रति आजकल मोह थोड़ा कम इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमें महसूस होता है कि बाजार की चीज़ों में वो बात नहीं होगी, पता नहीं कैसे हाथ लगाए होंगे, कैसे बर्तन होंगे, कब धोया होगा, अच्छे से मसाले साफ होंगे कि नहीं। लेकिन अगर घर में भी यही हाल है तो व्यक्ति कहाँ जाएगा। तो अपने भोजनालय को औषधालय बनाना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि किसी बाहरी औषधालय में हमें ना जाना पड़े। तो बस बातें और भी हैं बहुत सारी करने को, अपनी बच्चियों को सुनाते हैं एक मीठा सा गीत।

0: तो मीठा सा गीत हमने सुना, गुनगुनाया। इसके बाद समय आ चुका है सुनने का जरूरी जानकारी। आइए सुनते हैं कुछ जरूरी जानकारी।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा

0: करते हैं महिलाओं के सपनों की, उनकी तरक्की की और उनके हौसलों की। तो आज हमारी बेटी, जैसे कि आपको पता है, बेटियां बहनें जो है इन सब दहलीजों को पार करके आसमान छू रही हैं, चाहे वो दफ्तर हो, कॉलेज हो, स्कूल हो या देश की सीमाएं, हर जगह महिलाएं जो है अपनी कामयाबी का परचम लहरा रही। लेकिन इस तरक्की के साथ साथ एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि घर से बाहर निकलते हुए या कभी कभार घर के भीतर ही महिलाओं को अपनी सुरक्षा को लेकर एक अनजाना सा डर सताता रहता है। और यौन हिंसा या उत्पीड़न एक ऐसी बुराई है जो न सिर्फ एक महिला के शरीर को बल्कि उसकी आत्मा को, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाती है। अक्सर जानकारी के अभाव में या लोक लाज के डर से हमारी कई बहनें जो है चुप रह जाती है। लेकिन याद रखिए कि चुप्पी कभी भी समाधान नहीं होती। कानून ने हमें आत्मरक्षा और न्याय के लिए बहुत सारे अधिकार दिए हैं और इसीलिए आज हम एक इसी संवेदनशील मुद्दा पर बात करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यौन हिंसा से बचाव हमारे जो है कानूनी अधिकार हैं।
1: देखिए ललिता, एक बहुत अच्छी सी पंक्ति है अंग्रेजी में कि यू हैव टू बी कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। जिंदगी में हमें हर एक चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। जब हम घर से बाहर निकल के अपने सपने पूरे करने जाते हैं ना, चाहे हमें कितना भी कैलिबल हो, कितना भी टैलेंट हो, लेकिन घर के बाहर की चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे घर के अंदर हो। और कई बार आपको उन गलत स्थितियों में मौन रहने की कीमत चुकानी पड़ती है। कई बार अगर आप बोल देते हैं तो भी सभी आपके विरोधी हो जाते हैं, आपको उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली बात ये खुद को समझानी चाहिए कि आप क्या चाहती हैं। क्या आप चुपचाप रह करके हर बार घुटना पसंद करेंगी? क्या आप ये पसंद करेंगी कि कोई अन्य पुरुष आपको देख करके अलग अलग तरह की भाव भंगिमाएं देता है? या फिर आप इंतज़ार कर रही हैं कि किसी ने आपके साथ कुछ बहुत बड़ा हो, उस हादसे के बाद में आप खुद सीखेंगी? यौन हिंसा के कई रूप होते हैं। यौन हिंसा का अर्थ सिर्फ बलात्कार नहीं होता, ये किसी ने आपको छू करके आपके साथ कुछ बहुत गलत किया ये नहीं होता। बलात्कार तो उसका चरम होता है, लेकिन उसके अलावा हर दिन जो हम देखते हैं, हर दिन हम घुटते हैं, मरते हैं, परेशान होते हैं, वो भी तो यौन हिंसा है कि किसी ने आपको छू करके निकल गया, किसी ने आपको छूने की कोशिश की और आप डर डर करके उस इंसान को देख करके अंदर ही अंदर घुटते हैं। और सबसे अलग सी बात मैं आपको बताऊँ ललिता, ये हमारा एक भ्रम है कि महिलाओं के साथ सर्टेन एज के बाद में जब आप घर से बाहर निकलेंगे तब आप सुरक्षित नहीं हैं। आंकड़े बताते हैं कि घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। और घर के अंदर एक छोटी सी बच्ची, 6 माह की बच्ची, 2 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, अपने ही रिश्तेदारों के बीच में, चाहे वो मामा हो, चाचा हो, उम्र में दादा हो, नाना हो, इस किस्म के घर का नौकर हो जिसे हम परिवार का हिस्सा मानते हैं, हम उनके बीच भी सुरक्षित नहीं हैं। हमें समझने की ज़रूरत है कि पोक्सो जैसे बहुत सारे एक्ट हैं, कानून हैं जो हमें बचाने के लिए बने हुए हैं। और लड़की को बहुत कम उम्र से ये उसकी माता को समझाना ही पड़ेगा, पिता को समझाना ही पड़ेगा। चाहे हम कह दें भैया हमने तो अपनी बेटियों को नहीं समझाया, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, हमें बताना पड़ेगा कि जिस तरह से किसी अनजान से कोई चीज़ नहीं लेनी है, वैसे ही किसी अनजान की छुअन, चाहे वो गाल पे हाथ रखे गालों को छू रहा हो, पीठ पर हाथ दे रहा हो, सर पे हाथ फेरते फेरते उसका हाथ न जाने कहाँ आ जाए, हमें उस चीज़ को पहले स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्ची बड़ी होगी ना, थोड़ी सी उम्र में होगी, अगर वो टीनेजर है, टीनेजर के बाद वाली है, घर से बाहर निकल के नौकरी करती है, शायद वो जवाब दे पाएगी, शायद वो कहीं ना कहीं शिकायत कर पाएगी, किसी पुरुष को बता पाएगी, किसी सहकर्मी को बता पाएगी, शायद वो कॉल करके टोल फ्री नंबर पर भी बता दे। लेकिन लड़की जब बहुत छोटी होगी ना, गुड्डे गुड्डी से खेलने वाली उम्र में, तब शायद वो इन चीज़ों को किसी को ना बता पाए। तो यौन हिंसा से बचाव के लिए इतने कानूनी अधिकार हैं ना, पर सबसे पहले हमें शर्म और लिहाज को छोड़ना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारी इज्जत शिकायत करने पे नहीं जाएगी। इज्जत तो उस इंसान की गई है जिसने वो कार्य किया है जिस पर हम शिकायत कर रही हैं। और मुझे तो लगता है पर्सनली ललिता कि जब तक अरब कंट्रीज की तरह कानून नहीं आ जाएंगे ना, तब तक भारत में इस मानसिकता वाले लोग, सिक मेंटेलिटी वाले लोग नहीं सुधरेंगे। तो आप उन कानूनी अधिकारों को कृपया प्रयोग में लाएं। आप इंतज़ार ना करें कि कुछ बहुत बड़ी घटना हो, फिर अखबार में नाम आए, फिर 5 लोग आपसे पूछें। आप उस स्टेज तक जाने से पहले ही चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। और मामला ना थोड़ा सा स्ट्रेस का हो रहा है ललिता, तो चलते हैं माहौल को थोड़ा सा हल्का फुल्का करते हैं, सुनते हैं, गुनगुनाते हैं बहुत प्यारा सा गीत।

बहुत मीठा सा हमने प्यारा संगीत सुना। ये संगीत हमें बड़े अच्छे लगते हैं ललिता, क्योंकि हम चाहे कितने ही स्ट्रेस में क्यों ना हो, वो हमें हील कर देने का काम करते हैं। और ज़िंदगी में हील होना तो बहुत ज़रूरी है। जैसे हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे, पर वो एक ऐसा घाव है ना जो कभी भर नहीं पाता। हम लोग चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर आ जाए, पर अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है तो हम एक लंबे समय तक, मुझे लगता है लंबे समय तक नहीं चलेगा।

0: वो कहीं ना कहीं हमारे जहन में वो चीज़ें रहती ही रहती है। अब सवाल ये है कि किया क्या जाए। मुझे लगता है कि हम क्यों इस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं ललिता, हम आज अपने कार्यक्रम में तो बात कर रहे हैं, पर आप देखिए ना, हम फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसे मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते। चुप चुप मत करो, धीरे बोलो धीरे बोलो, इस तरह के जुमले होते हैं जब कोई लड़की अपनी माँ को शिकायत कहना शुरू करती है। और वो लड़की की उम्र शायद कुछ भी हो, और माँ शायद जानती भी हो कि लड़की जो कह रही है सही है, पर उन्हें लगता है चार और लोग बातें बनाएंगे लोक लाज। मुझे लगता है कुछ मुद्दों पर ना हमें शर्म नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो मुद्दे इतने बेशर्मी भरे हैं कि उसमें शर्म के लिए कोई जगह बची ही नहीं है। अगर आप वर्कप्लेस की बात करते हैं, आप सोचिए कि अगर ऐसा मामला बाहर आ जाता है ना जिसमें किसी महिला के साथ गलत हो रहा है, यौन हिंसा का शिकार महिला हुई है, तो उस महिला में चिंता भी बहुत कम लोगों के दिल में होगी, लेकिन उस महिला को मद्देनजर रखते सत्या हजारों लोग कटेंगे, गई ही क्यों थी, घरों में ही बैठी रहो, बाहर निकलती क्यों। तो ऐसे भी बहुत सारे मुद्दे जो है ना वो मिल करके परिवारों की मानसिकता को बदलते हैं कि बच्चों को नहीं, बच्चियों को घर से बाहर ना निकलेंगे, उन्हें कुछ ना करने दें।
1: कई बार आरोप भी उन्हीं पर ही लगाए जाते हैं,
0: बिल्कुल, कि ऐसे बंधन की क्यों निकलती है, ऐसे क्यों रहती है। तो मुझे लगता है कि हर एक स्थिति में कसूरवार महिला को ही ठहराया जाता है, और कोई और नहीं होता वो जजमेंट करने वाला, वो भी महिलाएं ही होती हैं। तो हम सबसे पहले ये सोचें कि हम जजमेंटल होने से पहले इस पल के लिए सोचें कि अगर उस स्थिति में हम होते तो, हमारा कोई करीबी होता तो, तभी हम उस बात का मर्म समझ पाएंगे, और एकजुट होकर के हमें डिमांड करनी चाहिए हमारी कंट्री से, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से, कि कानून को बदलने का समय आ चुका है। किसी की मृत्यु के बाद में आप उस आरोपी को सजा दे दें, कोई लड़की खुद परेशान होकर सुसाइड कर ले फिर आप सजा दे दें, किसी की जिंदगी तहस नहस से छिन्न भिन्न हो जाए, फिर हम उन मुद्दों पर लंबे समय तक मीडिया से उसको बात करें, लेकिन उससे क्या होगा। वो इतना बड़ा हादसा तो हो चुका है, लेकिन अगर एक अच्छा कानून बनेगा ललिता, तो उस तरह के हादसे तो आगे नहीं रिपीट होंगे। और अगर हम खुद अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, इवन अपने बेटों को भी यौन हिंसा किसी न किसी रूप में आज लड़कों के साथ में भी हो रही है, लड़कों को भी नहीं बख्शा जा रहा, अगर हम अपने बच्चों से बहुत खुले शब्दों में उनकी उम्र के अनुरूप बात करें और उन्हें बताएं कि कुछ भी गलत लगने पर घर में आकर के बताएं, स्कूल में टीचर्स को बताएं, कितने लोग होते हैं जिन्हें बताया जाए, बात को छिपाया ना जाए, बताया जाए, कहा जाए, और सबसे बड़ी बात कहने वालों को सुना जाए, तो शायद समस्या हल
1: हो सकती है।
0: चलिए बातें बहुत कर ली ना ललिता, एक गीत गुनगुनाते हैं हम और अच्छा।
1: चलिए बिल्कुल,
0: तो मुझे लगता है कि जब तक हम ये गीत संगीत को गुनगुनाना नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक कहीं ना कहीं हम चर्च से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो चलिए, जिस गीत संगीत की दुनिया में हम चल रहे हैं, अपने कदम बढ़ा रहे हैं, ऐसे गीत को सुन के आप बहनें कहीं ना कहीं अपना स्ट्रेस जो है या अपना जो तनाव है उसे आप तनाव मुक्त हो सकती हैं। आप अच्छा सुनेंगी, अच्छा गुनगुनाएंगी, गाएंगी, चाहे कैसी भी आवाज़ हो, खुद को लता मंगेशकर समझिए और गाते रहिए।

مہربان مہربانیاں تیری قدر دان.

0: तो बहुत मीठा प्यारा संगीत हमने सुना यानी माँ, लेकिन ये संगीत यूँ ही थोड़ी खत्म होते हैं। ये संगीत तो जीवन का एक हिस्सा है, लगातार जीवन के साथ वो चलते ही रहते हैं। पर जीवन का कुछ और भी हिस्सा होता है जो कभी कभी हमारे इतने करीब आ जाते हैं जिनके बिना हम जीने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। बताइए ललिता, ऐसा क्या होता है भाई?
1: बिल्कुल, हमारे पशु सिंगर जिन्हें हम पालते भी हैं और जो जिन्हें नहीं पालते हैं वो भी प्रिय होते हैं हमें। और प्रीति, तुम्हारी बात से मुझे याद आया कि कल जब मैं रसोई में काम कर रही थी ना, तो बाहर गली में एक कोने में रोने जैसी आवाज आई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो कड़कड़ाती धूप में छोटा सा डॉगी जो है छांव की तलाश में गाड़ी के नीचे छिपने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां से गुजरते एक राहगीर ने बिना किसी बात के उसे छोटा सा पत्थर मार दिया। वो बेजुबान दर्द से चीख उठा और लंगड़ाते हुए भाग गया। उसे देखकर मेरा दिल जो है ना बहुत ही दहल गया। तो सोचो प्रीति कि तपती धूप में उसे ना पानी मिला ना छांव मिला, और ऊपर से मिला तो सिर्फ उसे दर्द। तो वो बेजुबान है, वो रोकर अपना दर्द किसी को कह नहीं सकता। आज हमारा मन जो है इसी विचार को, इसी पर विचार करने के लिए जो है व्याकुल हो रहा है कि आखिर हम इंसानों की जो संवेदनाएं है ना वो कहाँ खोती जा रही है। क्या पशुओं के प्रति हमें सहृदय नहीं होना चाहिए, यानी बेजुबान जीवों के प्रति हमें दयालुपन नहीं होना चाहिए? तो मेरी प्यारी बहनों, हम उस देश के वासी हैं जहाँ सुबह उठते ही ना हम पहली रोटी जो है गाय के लिए निकाली जाती है, और जहाँ चींटियों को आटा डाला जाता है, पक्षियों के लिए छतों पर दाना पानी रखा जाता है। हमारी संस्कृति में तो प्रकृति और पशुओं को भगवान का रूप और उनका वाहन माना गया है। चाहे आप देख लो, चाहे वो शिव जी हों, शिव जी का नंदी, और दुर्गा माँ का सिंह हो या गणेश जी का मूर्तक। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में जैसे जैसे कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं, हम इन बेजुबानों का आशियाना कह सकते हैं कि एक तरह से छीनते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, ऐसा आप खुद सोचिए कि हम एक छोटे से बच्चे को जब हम गोदी में लेकर के बाहर की हवा खिलाते हैं, घर के बाहर ले जाते हैं, बालकनी में बिठाते हैं, तो उसे क्या दिखाते हैं हम? उसे आसमान में जब चांद सितारे दिखाते हैं, उसके साथ हमेशा हम उसे हटाने के लिए एक चिड़िया दिखाते हैं। देखो चिड़िया इसलिए कैसे उड़ती है, फुर, तोता, कबूतर, कितने कितने पशु पक्षियों से हम रिश्ते नाते बना देते हैं। हमारी बचपन की कविताओं में याद रखिए वो हाथी दादा बहुत बड़े सूढ़ी लाके कहाँ चले, है ना। और संस्कार भी कुछ ऐसे हैं कि जब हमें ईश्वर ने हमारा पेट भरने के लिए भोजन दिया होता है तो हम किसी जीव के नाम भी, गाय के लिए रोटी, कुत्ते के लिए रोटी, और जिन आप चींटियों के दाने की बात कर रहे थे तो हम अपनी भाषा में कीड़ी नगरा सींचना कहते हैं। पूरी नगरी को खाना खिलाने से ज्यादा पुण्य का माना जाता है। कबूतर को दाना देना, ज्वारी डालना, इसके अलावा जब घर में किसी का जन्मदिन हो, कुछ शुभ अवसर हो, अमावस हो, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, तो हम हमेशा गौशाला में जाकर के घास भी खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मानते हैं कि पशु हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। और बात जब पेट की होती है जिन्हें हम घर में पालते हैं, तो वो बिल्कुल हमें उतना ही प्यारा लगता है जितना कि हमें अपने बच्चे और अपनी संतान प्यारी लगती है। ऐसे में हो सकता है आप ना पसंद करें कि आप अपने घर में किसी को पेट के रूप में लेकर जाएं, लेकिन ये भी तो ठीक नहीं है ना कि आप राह चलते हुए जानवरों को देख के ना घोंसले पड़ें, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो जानवर कितना दर्द खुद में लेकर के बैठा है। उसके ऊपर पानी गिरा दें, उसे लाठी पर मार दें, वो हमारे घर के बाहर दिखे तो हम बड़ा अजीब सा बर्ताव कर लें।
1: बिल्कुल, ये बहुत गलत चीज़।

0: आजकल तो वैसे क्योंकि कई लोग है ना जो सड़क के इस तरह के पशु होते हैं उनको अडॉप्ट भी करते हैं,
1: हाँ
0: और ये होना भी चाहिए। तो हम जैसे महिलाओं की अगर बात करें तो हम महिलाओं के भीतर करुणा और ममता का जो सागर भरा हुआ है ना वो बहुत अद्भुत है। एक माँ अपने बच्चे को बच्चे के बिना बिना बोले ही समझ जाती है कि उसे क्या चीज़ चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है बोल नहीं पाता तब भी माँ को पता चल जाता है कि उसको भूख लगी है और उसे कोई तकलीफ है। तो जब ईश्वर ने हमें बेजुबान की भाषा समझने की ये दिव्य शक्ति दी है तो फिर इन पशुओं का जो दर्द है वो हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो हम महिलाएं अगर ठान लें कि तो अपने घर के साथ साथ अपने जो हमारे गली मोहल्ले पास पड़ोस के जो जानवर हैं तो हम उनके सुरक्षित रहने के लिए एक माहौल तैयार कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में थोड़े थोड़े बदलाव लाने बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल
0: तो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जब हम सुबह खाना बनाते हैं तो पहली रोटी जो है प्यार से किसी गाय या गली में किसी श्वान को के लिए निकाल दें तो यकीन मानिए छोटी एक रोटी आपके भंडार को कभी कम नहीं होने देगी, बल्कि आपके घर में और
1: दुआएं आपके भंडार को बढ़ाएगी
0: बरकत
1: ही।
0: भी आएगी। तो क्योंकि चर्चा जारी रहेगी, बातें ढेर सारी करनी है, लेकिन वक्त हो चला है एक खूबसूरत गीत का, तो क्यों ना सुना दिया जाए अपनी सखियों को ये मधुर गीत।

0: तो बस प्यारी बहनों, ये बहुत मीठा सा एक गीत था कि मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। तो जिंदगी में ललिता मोह होना भी कितना ज़रूरी है। सोचिए अगर हमारा मोह खत्म हो जाए, हमारा मोह कुछ अच्छा पहनने से, बोलने से, ओढ़ने से, अच्छा खाने से, पीने से, घूमने से और जीने से खत्म हो जाए तो क्या होगा? हम गृहस्थ में कहने के लिए तो रहेंगे पर हम साधु बन जाएंगे।
1: बिल्कुल प्रीति, और तुम जो साधु बनने की बात कह रही हो, मुझे याद आता है कि जब बचपन में हम दूरदर्शन पर नाटक वगैरह देखते थे, अपना फेवरेट जो टीवी सीरियल देखते थे, उसके बाद एक सेगमेंट आता था और उसका हमें देश सब्जी से इंतजार रहता था और वो था छोटी छोटी मगर मोटी बातें।
0: बिल्कुल,
1: तो उनमें से आपने भी कुछ देखा सुना होगा या अपनी दादी नानी से भी कुछ नुस्खे सुने होंगे, तो आप क्या कहेंगे?
0: मुझे तो लगता है कि कोई वो समय वापस लौटा दे जब रात को सोने से पहले हम अपनी दादी के पास बैठते थे और वो कहानियों के रूप में न जाने हमें कितना जीवन का मर्म बता देती थी। और जब आज हम बड़े हुए हैं तो तमाम कहानियाँ, तमाम मर्म पता हैं। एक चीज़ है जो मुझ में भी नहीं है, मैं चाहती हूँ आ जाए, तो पता नहीं कि अभी तक आ नहीं पाई है। मेरी दादी हमेशा बोलती थी कि जो धैर्य है ना, मतलब सब्र, सबूरी बोलते हैं अपनी भाषा में, उसको मारवाड़ी में, तो कहते कि सबूरी रखनी चाहिए, सब्र रखना चाहिए। अब आप सोचिए कि ऐसे तो सब्र आएगा नहीं। मतलब हम अगर बात करें बचपन की, या बात हम करें उस तरह की किसी चीज़ की जिसमें हमें कहानियों के रूप में ही पता नहीं कितना कुछ बता दिया जाता था, कितना कुछ सिखा दिया जाता था, तो एक कॉमन सी चीज़ हमें बताई जाती थी, वो थी सब्र। सब्र रखना बहुत मुश्किल होता है उस हालात में, तो विशेषकर जब आपको लगे कि तमाम चीज़ें आपके खिलाफ़ हैं, तमाम चीज़ें आपके विपरीत हैं, आप सही हैं पर आपको गलत बताया जा रहा है, आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है। जब ना बहुत कुछ बदल जाए, मतलब सब कुछ हमारे हाथ से बाहर आ जाए, तब कुछ समय के लिए स्थिर रह जाए, कुछ समय के लिए थम जाए। क्योंकि देखिए कितनी भी घनी रात होती है, कितनी भी काली रात होती है, मूसलाधार बारिश होती है, हमें लगता है यार कोई रास्ता ही नहीं है, बिजली ही नहीं है, उजास कहीं नज़र नहीं आ रहा, पर तब भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भोर तो आती है, थोड़ी लेट आती है। तो वैसे ही जीवन में जब चीज़ें हमारे

0: विपरीत हो जाए, बहुत कुछ बिगड़ने लग जाए, आप जहाँ संभाले वहाँ से आपको लगे कि चीज़ें ताज के पत्तों की तरह बिखर रही हैं, तब सबूरी रखें, सब्र रखें। आपका समय भी आएगा, ज़रूर आएगा। चाहे कितना भी लेट आए, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन ईश्वर किसी न किसी रूप में आएगा। खुद ना आएगा तो किसी को भेजेगा, पर हालात ज़रूर ठीक होंगे, तो उम्मीद बनाए रखें। और ललिता, मुझे लगता है उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। बड़ी छोटी सी बात है, पर देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है।
1: सब्र रखना, पेशेंस रखना, धैर्य रखना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम धैर्य से कोई काम करते हैं ना, तो हमारा काम पूरी तरह सक्सेस होता है। तो कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने। और बात करें अगर हम अपने सखियों से, तो हमेशा संकल्प लीजिए कि मुस्कुराते रहेंगे और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ रहेंगे। और इसके साथ साथ हमें ये भी संकल्प लेना चाहिए कि हमें जो पानी बचाना चाहिए, ये भी एक छोटी छोटी मगर मोटी बात है। और अपनों को हमेशा वक्त देना चाहिए और हमेशा अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखिए। और इसके साथ ही अगर हम खाने की बात करें, तो खाना भी हमें धीरे धीरे चबा कर खाना चाहिए। और रात को सोने से कम पहले, 1-2 घंटा पहले भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि कई लोग भोजन करते ही सीधा लेट जाते हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और खाने के बाद तुरंत ठंडा पानी पीने से बिल्कुल बचिए। तो सखियों, ये तो थी छोटी छोटी मगर मोटी बातें, और आशा है आपके लिए ये बातें ज़रूर फायदेमंद होंगी। तो अभी हमारी स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है विदा लेने का। क्यों प्रीति?
0: बिल्कुल, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, हमारे रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।

0: कोलकाता में आईएनएस दुल्हागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: मिस्टर मोदी आल्सो साइटेड द एग्जांपल ऑफ द पेटकर फैमिली इन नांदेड़ महाराष्ट्र हु अरेंज्ड एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर अप्रोक्सीमेटली 3,500 विलेजर्स। ईच इंडिविजुअल वाज प्रोवाइडेड विद एन इंश्योरेंस कवर ऑफ 1 लाख रुपीज। The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargela bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: Touching upon the topic of sports, Prime Minister Modi expressed happiness that the number of young people in the country who are both playing sports is rapidly growing. In today's Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also spoke about preserving people's creativity in the age of technology and AI. He said Nalanda University has found a solution to this and is now shaping India's destiny in a new avatar.
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: Mr. Modi highlighted other significant efforts are underway to prepare the youth for new technology while keeping them rooted in their heritage. The Central Sanskrit University in Delhi is launching a B.Tech program in artificial intelligence and data science. Prime Minister Modi expressed happiness that Indian culture is reaching various corners of the globe today. He spoke of an initiative in the Dominican Republic, which has an Indian population of around 100.
0: Caribbean Sagar mein डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से

0: जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: द प्राइम मिनिस्टर मेंशन्ड मेघालय'स रूट ब्रिजेस, सेइंग दीज रूट ब्रिजेस टेक डेकेड्स टू टेक शेप। He shared that India has now applied to have Meghalaya's route bridges included in the UNESCO World Heritage Site Network. On the subject of cleanliness, Mr. Modi gave the example of some women from Byavara in Rajgarh district of Madhya Pradesh. The women resolved to remove plastic waste scattered around the area. Mr. Modi also urged people to ensure that the idol of Ganpati Bappa for Ganesh Utsav is made from the soil of this country and crafted by the hands of local potters and artisans. He also urged those who make Ganesh idols to prioritize clay idols. Concluding his address, the Prime Minister stressed on water conservation, saying that every single drop of rainwater must be saved. He said the momentum of Catch the Rain campaign should not slacken. In some more news, Prime Minister Narendra Modi and President of Seychelles, Patrick Hamani, held bilateral talks at Victoria this afternoon. Both leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. Earlier, he was given a guard of honor at the State House, with President Hermione also present. Several agreements were exchanged in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan today highlighted the central role of villages in realizing the vision of Viksit Bharat 2047. Addressing the Rashtriya Grameen Vikas Sammelan in New Delhi, Mr. Chauhan said a provision of over 1,51,000 crore rupees, including the state's contribution, has been made under the Viksit Bharat Grameen scheme to accelerate rural development while ensuring livelihood security for rural workers.
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है।
3: विलेज इज नॉट मेयरली अ पार्ट ऑफ इंडियाज ज्योग्राफी, इट इज द सोल ऑफ इंडिया, इट इज इंडियाज इकोनॉमी, इट्स आइडेंटिटी। अ विलेज इज नॉट जस्ट अ सेटलमेंट, इट एम्बॉडीज इंडियाज सिविलाइजेशन, कल्चर, वैल्यूज ऑफ लाइफ, ट्रेडिशंस एंड हैज लॉन्ग बीन अ सेंटर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आवर स्ट्रेंथ लाइज इन आवर विलेजेस एंड सो डज आवर फ्यूचर पोटेंशियल। विलेजेस आर ऑल्सो द स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ आवर डेमोक्रेसी। टुडेज कॉन्फ्रेंस इज अ मीनिंगफुल चर्निंग ऑफ आइडियाज एम्ड एट achieving rural prosperity.
2: Grameen samriddhi ka manthan hai.
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at TI News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Midday News. The security situation in West Asia has deteriorated sharply after the fragile US-Iran ceasefire effectively collapsed, with both sides launching fresh military strikes over the past several hours. The United States said it carried out airstrikes against 10 Iranian military targets near the Strait of Hormuz after accusing Tehran of attacking a commercial oil tanker with a drone. US President Donald Trump warned that further violations could trigger a much broader military response. Iran responded within hours with missile and drone attacks targeting American military facilities in Kuwait and Bahrain. More from our correspondent.
4: The latest exchange marks the most serious collapse of the interim ceasefire agreed earlier this month between Washington and Tehran. The United States Central Command says it carried out strikes on multiple targets inside Iran in response to continued attacks on commercial shipping. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps says it retaliated by launching missiles and drones targeting U.S. military infrastructure in Kuwait and Bahrain. Following the exchange, both Washington and Tehran accused each other of violating the ceasefire. In a statement, United States Central Command said Iran had been given an opportunity to uphold the ceasefire, but instead launched a one-way attack drone that struck Panama-flagged oil tanker MT Kiku. Iran's foreign ministry, meanwhile, said it had carried out strikes against targets linked to American forces, blaming it as the treaty-breaking United States regime for renewed escalation. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
1: Indian assistance sent under Operation Amistad has reached Venezuela. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar expressed confidence that the field hospital unit, relief supplies, medicines and medical equipment will bolster ongoing post-earthquake relief efforts in the country. On to sports now. Kidambi Srikanth has advanced to the men's singles final of the U.S. Open Badminton Championships at the Titan Gym in California today. Srikanth defeated Japan's Yudai Okimoto in a hard-fought semi-final. He will next face Su Li Yang of Chinese Taipei in the final. In ICC Women's T20 World Cup, India will take on Australia in the final Group A match at Lord's Cricket Ground in London today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. In men's cricket, India will take on host Ireland in the second and final T20 International of the two-match series in Belfast today. The match is scheduled to begin at 6 p.m. Indian Standard Time. In FIFA World Cup, Argentina star Lionel Messi has become the first player in history to score in 7 consecutive World Cup games. The 39-year-old scored with a free kick after coming off the bench as Argentina won 3-1 against Jordan. It was Messi's 6th goal of the 2026 World Cup and he leads the Golden Boot race by 2 goals. Lo Celso and Lautaro Martinez scored the other 2 goals for Argentina as they finished their Group J campaign with 3 wins from 3. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies with focus on indigenous defense production. Highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft made in India. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation level talks in Victoria. Government asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in the final Group A match in London today. With that, we end the midday news.
5: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
0: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
5: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
0: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
5: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
5: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
5: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की, जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
5: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
5: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक

0: ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशेल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
1: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटना

0: हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था राजकुमार, गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।

मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अभी आपने राजा मेहदी अली खान की लिखी रचना सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था आपकी परछाइयां।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत आवाज मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है मेरे महबूब। इस गीत को शकील बदायूनी ने लिखा है और धुन बनाई है नौशाद साहब ने।

कार्यक्रम में अब सुनिए चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी की लिखी गीत रचना। गायिका है लता मंगेशकर और ये फिल्म है बाघी।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम हैं राही प्यार के। जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका दो गाना अब आप सुनेंगे, स्वर लता मंगेशकर और तलत महमूद के। इस गीत को जानिसार अख्तर ने लिखा है और धुन बनाई है हयब साहब ने।
3: बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, आवाज मुकेश की। फिल्म का नाम है दिल ही तो है। गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत रोशन का।

भी नहीं, बात तोड़ी भी नहीं, तुमने बनाई भी नहीं, ये सहारा ही बहुत है।

लहू में रहूं अपनी मासूम जवानी की पनाहों में रहूं, मुझको वो दिन न दिखाना।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बाशु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: 20 जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
2: कौन लाया।
3: राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत हम आपको मदन मोहन जी संगीत निर्देशन में सुनवा रहे हैं। स्वर मोहम्मद जफी का है और फिल्म का नाम है शराबी।

कब से तन्हा घूम रहा हूँ दुनिया के वीरान में, खाली जाम लिए बैठा हूँ कब से इस मैखाने में। कोई तो होगा मेरा साथी, कोई तो प्यार।

0: प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मंचा है गीत।
1: मंचा है गीत,
0: मंचा है
1: गीत, मंचा है गीत।
0: मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
2: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
3: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
2: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
3: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
4: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्ट कार्ड ना भेजे, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्ट कार्ड भेजे।
2: और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है? कार्यक्रम मंचा है गीत,
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत हम आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं। सुनने वाले हैं भोपाल से श्रवण सिंह गिन्नारे, गौरव सौरभ रेखा शेर सिंह गिन्नारे, और ये है तेलंगाना राजन्ना सिरसिल्ला जिला विलास सागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास, लक्ष्मी प्रसन्ना, मनस्विनी चंद्रैया, मल्लवा लावण्या, रेवंत महेश्विन, श्रीनु सुजाता, ग्रीष्मा, दीपक, रमेश, कनक, लक्ष्मी, श्रीजा, साई कुमार और सुषमा। और ये खत हमें मिला है हथबंद करेली से भाई रामाधार ध्रुव, संजय कुमार ध्रुव और संजू कुमार का। आप सभी सुनना चाहते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज में फिल्म तर...

अगला गीत सुनना चाहते हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल, निशा और इनके परिवार वाले। आप हैं समाना मंडी पंजाब से अश्विनी कुमार वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, अर्पणा और विकास वर्मा। ये खत हमें मिला है सिमगा छत्तीसगढ़ से श्रीमती सविता जैन, प्रदीप जैन और उनके साथियों का। आपसे भी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म चंपा कली में। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की है और तर्ज हेमंत कुमार।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चंपा कली। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। ये है सिमगा छत्तीसगढ़ से पुष्कर भोसले और उनके परिवार वाले, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन और उनके परिवार वालों ने ये खत लिखा है। ये लिखने वाले हैं हमारे ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं मुकेश की आवाज। फिल्म का नाम है सहेली। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

मनचाही गीत कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है अनोखी रात। इस गीत को इंदिवर ने लिखा है और धुन रोशन की है। सुनने के लिए आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं महाराष्ट्र से विनोद कुमार अठिया, भारती अढ़िया, पारस, उर्वी बेन अढ़िया और इनकी परिवार वाली। इसी गीत को सुनने के लिए आपने भी हमें खत लिखा है। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, वीना देवी आर्य, प्रतीक आर्य और ये हैं छत्तीसगढ़ से डॉक्टर प्रदीप देवेंद्र और उनके साथी। आपसे भी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनोखी रात में।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप ही गांव टुकिया तहसील सिरधरी जिला बालोतरा राजस्थान से कृष्ण कुमार ढाबी और उनके परिवार वाले। अंबेडकर चौक खुरई से ये खत हमें लिखा है राम सखी परमानंद सौरभ गौरव एलपी रोहित लल्लूराम पूरन रोहित छोटू डुंडुन और इनके परिवार वालों ने। और ये है वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे विजया सरकटे और मिलिंद। आप सभी सुनिएगे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत सुनना चाहते हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन की धुन।

ये आवाज थी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था कटी पतंग। कार्यक्रम का आखिरी गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज और फिल्म का नाम सूरज और चंदा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे, बाबुल गांव पातूर से प्रकाश पाटिल, अलका पाटिल, दीप्ति, तृप्ति, यशोदीप और उनके परिवार वालों ने ये खत हमें लिखा है। आप हैं अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। आइए आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सूरज और चंदा का ये गीत।

आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले। आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं नाटक कटीला रास्ता का दूसरा एवं अंतिम भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने और इसके निर्देशक हैं वीपी दीक्षित भट्टो। तो आइए सुनते हैं नाटक कटीला रास्ता, इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग।
1: तुमने बहुत बदनसीब लड़की हो डॉक्टर साहब, तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो? मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है। आपके मामा जी छाती के दर्द से बेचैन थे, उसी के शिकार हो गए। मेरे झंझट में आप उनकी भी देखभाल नहीं कर पाई।
2: उनके रोग का इलाज इस गांव में नहीं था, मैंने भरसक कोशिश की पर क्या किया जाए, उनकी अवधि पूरी हो चुकी थी।
1: वे देखते ही देखते चले गए डॉक्टर साहब।
2: एक बात मैं उनसे कह नहीं सकी, कहना तो चाहा था, कितनी ही चुड़ैल नागमणि आकर मुझे ले गई।
1: वो क्या बात थी डॉक्टर साहब?
2: अगर मैं मर्द होती
1: तो फिर
2: शकुंतला से शादी कर उसे नया जीवन देती, यही कहना चाह रही थी मैं।
1: आप बहुत महान हैं डॉक्टर साहब। मैं बेखबर सो रही थी जब अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने आपके बारे में पूछा। इस जानम्मा से पता चला कि नागमणि डाइन आकर आपको ले गई।
3: अब तभी शकुंतला तुरंत चिल्ला उठी, नागमणि तो काली सापन है, भयानक सापन है।
1: ये सुनते ही मामा जी बहुत चिंतित हो उठे थे, उनको थक्का सा लगा। आप ही के फिक्र में वे छटपटाती हुई दम तोड़ गए।
2: उनको यही खबर जानलेवा साबित हुई, इस थक्के को सहने की ताकत उनमें नहीं थी। लेकिन मैं डॉक्टर होकर इतनी नाजुक दिल नहीं हो सकती। खैर जो हुआ सो हुआ। सुनो जानम्मा।
3: जी डॉक्टर साहब, क्या बात है?
2: अल्लाह बख्श नहीं आया तक,
3: आते ही होंगे।
2: देखो शकुंतला
1: जी,
2: तुम अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई हो, अब आगे के काम जल्दी जल्दी होने हैं। और देखो तुम्हें बेहिचक गवाही देनी होगी।
1: डॉक्टर साहब मैं कैसे भरी अदालत में गवाही दे सकूंगी? डॉक्टर साहब मेरी जिंदगी का क्या होगा? मेरे भरोसे और मेरे मोहताज बनकर जी रहे मेरे परिवार की इज्जत का भी तो सवाल है।
2: शकुंतला कैसी बातें कर रही हो तुम? उस दर्दनाक दिन की याद करो, बारिश की शाम को तुम पर जो वहशियाना जुल्म हुआ उसका बदला।
1: मेहरबानी करके उस घटना की याद न दिलाइए डॉक्टर साहब, मैं उस घिनौने धब्बे को धो डालना चाहती हूँ, आप उसे समाज के सामने मत आने दीजिए।
2: शकुंतला इस तरह तुम ये साबित कर रही हो कि तुम भी औसत मामूली लड़कियों में ही हो।
1: माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे आराम से जिंदगी गुजारनी है।
2: शकुंतला आगे बढ़े कदम को पीछे हटा लेना मेरे बूते की बात नहीं है, तुम निसंकोच सच्चा बयान देने को तैयार रहो।
3: शकुंतला बेटी जरा सोच समझ कर आगे बढ़ो, डॉक्टर साहब तुम्हारी भलाई की ही बातें कर रहे हैं, तुम निडर बनो बेटी।
4: गुड मॉर्निंग डॉक्टर।

0: हेलो माँ, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। देखो तू, तुम्हारी डिस्पेंसरी देखने और कौन आए हैं?
1: हेलो,
0: डॉक्टर रतनगिरी, विश्वविख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ। बैठिए।
1: धन्यवाद धन्यवाद। कहिए, आपकी डिस्पेंसरी तो ठीक ठाक है ना?
0: आपके नर्सिंग होम की तुलना में। भाती, तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं? सुनाओ। मैं शीघ्र ही मद्रास जाकर इनके साथ काम करने वाली हूँ। बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी पत्नी की शिक्षा का सम्मान करना शुरू किया, उसके लिए बधाई।
2: अम्मा जी,
0: हाँ बताइए, क्या लेंगे आप? कॉफी, चाय, नारियल का पानी? कुछ नहीं चाहिए, तुम हमारे साथ घर चलो।
1: वो हमारा मतलब था हमारे साथ भोजन करने का निमंत्रण।
0: हाँ, डॉक्टर साहब, ये चिट्ठी शकुंतला दे गई है।
2: शकुंतला? कौन शकुंतला? तुम जानती हो सोमा? उसके बारे में आज सुबह यहाँ के बड़े रईस कुमार सामी बातें कर रहे थे। ये शकुंतला ग्राम सेविका है ना?
0: हाँ हाँ, ये चिट्ठी उसी ने भेजी है।
2: हाँ, क्या बातें हो रही थी उसके बारे में?
0: उसका दूर का रिश्तेदार एक लड़का है।
2: तब खुद कुमार सामी ने उस लड़के के साथ शकुंतला की शादी कराने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। कह रहे थे गांव के मंदिर में शादी करा देंगे।
1: अच्छा, वो सुबह नए कपड़े, फूल मालाएं, फल तांबूल वगैरह लेकर जो लोग आए थे, वो सब कैसी शादी के लिए?
2: जी हाँ। तब तो इस चिट्ठी का कोई उपयोग नहीं है।
0: कैसी चिट्ठी है?
2: इसमें एक दुखियारी की दर्दनाक कहानी है।
0: ओ,
2: शादी की आड़ में वो चैन से जिंदगी बसर कर सकती है। आइंदा समाज में सिर उठाकर चलने के लिए चिट्ठी ना रहे तो ही अच्छा है।
1: अरे ये क्या, आपने चिट्ठी फाड़ क्यों डाली?
0: क्या हुआ डॉक्टर साहब?
2: शकुंतला को हमसे भी बढ़कर पनाह मिल गई है।
0: कह क्या रही हैं आप?
2: इस वक्त कुमार स्वामी के संरक्षण में हमारे गांव के स्कंददेव मंदिर में शकुंतला का विवाह हो रहा होगा।
0: ओह, इसीलिए उसने मुकदमा वापस ले लिया है।
2: चलो, उस बेचारे दुखियारी की जिंदगी तो बन गई, हम उसी से संतोष कर लेंगे।
0: अरे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी हिम्मत के साथ अन्याय का सामना कर सकोगी। तुम्हें अपनी प्यारी सहेली के रूप में पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
2: तुम खुद भोली भाली हो ना, इसीलिए हर एक में गुण ही गुण देखती हो।
1: सहेलियां एक दूसरे की बड़ाई करने में होड़ लगाती हैं भैया।
2: ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, जरूरत पड़ने पर अपना हक छोड़ भी देती हैं।
0: मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारी कोई मदद करूं।
2: मदद?
0: तुम क्यों, शक है? अरे हाँ, उस दिन तुमने हार्ट पेशेंट के एक नाजुक केस के बारे में कहा था।
2: ऐसे तो कई केस हैं उमा, मेरे मामा जी की तरह कई हार्ट पेशेंट हैं जो सुविधा के अभाव में ठीक से इलाज नहीं करा पाते।
0: इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि यही एक अच्छा अस्पताल खोला जाए जिसमें सभी सुविधाएं मैसर
1: हों। नहीं, ये एक बिल्कुल बेहुदा ख्याल है।
2: आप परेशान ना हो डॉक्टर साहब, मेरे मामा की खाली जमीन गाँव की सीमा पर है। जब तक वो रहे वहां मेहनत कर खेती बाड़ी करते रहे। अब मैं उनकी स्मृति में वहां एक अस्पताल बनाना चाहती हूँ।
0: अरे भारती, You are really great.
2: वहाँ एक अच्छा अस्पताल बनाने में यदि आप लोगों की मदद मिल सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। आजीवन आप लोगों की आभारी रहूंगी।
0: भारती, मेरे पिताजी की ऊपर तक पहुँच है। भले काम के लिए अपने परिचय और प्रभाव का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है।
2: जिस दिन ये काम पूरा होगा ना, उसी दिन तुम्हारे यहाँ आकर।
0: अरे छोड़ो उस दिन की बात, आज चलती हो कि नहीं?
2: अरे भाई सब्र करो सब्र करो, तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन तो ठाट से मनाया जाएगा ना, तभी प्रीति भोज बनाऊंगी।
0: तुम तो बड़ी हट्टी हो भाई। चलिए जी, हम चलते हैं।
1: अच्छा, अच्छा भाई, फिर मिलेंगे। हाँ,
2: अच्छा, बाय बाय।
3: मुझे तो पहले ही मालूम था।
0: क्या मालूम था तुम्हें?
3: याद है तुम्हें, हमारे डॉक्टर साहब के पास एक मनहूस आदमी आया था।
0: हाँ हाँ, वो आरोग्य स्वामी।
3: उसने डॉक्टर अम्मा से कुछ दवाएं खरीदने के लिए एक नुस्खा लिखकर देने को कहा, पर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया।
0: ये भी कम हटी ही नहीं है।
3: ठीक ही तो है, झूठ मूठ नुस्खा सर्टिफिकेट वगैरह क्यों लिख कर दे?
0: ये लोग नुस्खा लेकर क्या करेंगे, इससे क्या फायदा है?
3: तुम नहीं जानती, ये लोग झूठ मूठ मर्ज बताकर दवाएं लेते हैं और घर में रख लेते हैं, फिर उन्हें दूसरों को बेच देते हैं। डॉक्टर से नुस्खा लेकर जाली बिल बनवाकर ऑफिस में पेश कर देते हैं और उसका पैसा ले लेते हैं।
0: छी छी छी, अरे ये तो साफ धोखाधड़ी है। हाँ तो फिर आरोग्य स्वामी का क्या हुआ?
3: डॉक्टर साहब ने साफ साफ कह दिया कि ये तिकड़म हमसे नहीं होगी, पर वो नहीं माना, बराबर जिद करता रहा। आखिर डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाकर उसे बाहर निकाल देने को कहा, मैंने उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया।
0: फिर?

0: जाते जाते चुनौती देके गया कि बहुत सिर चढ़ी हुई हो, ठीक कर दूंगा, है किस होश में।
1: ये तो बहुत बुरी बात हुई, मुझे तो बहुत डर लगता है।
2: कंपाउंडर
0: जी अभी आया।
2: सुनो लवक्ष, ये दलाल कंपनी वालों का खत आया है, उन्होंने दवाओं का पार्सल भेजा है।
0: हस मामूल हफ्ते के आखिर में आने वाली गाड़ी में उस पार्सल को भिजवा देने को लिख दीजिए।
2: तुमने सुना है लवक्ष, आसपास के गांव में हैजा फैल रहा है, पर अचरज की बात यह है कि कोई भी आदमी हैजा से बचने की सुई लेने नहीं आया।
0: गांव है ना, सुई से कोसों दूर भागेंगे, फिर भी आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। सरकार ने ऐलान करा दिया है कि सबको हैजे से सुरक्षा की सुई लेना लाजमी है।
2: अच्छा लवक्ष, ऐसा करो तुम लोग यहीं रहना। हाँ, मैं गांव में जाकर रोगियों को देखती हूँ। जी बहुत अच्छा।
3: अरे इस छोकरे की उछल कूद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।
4: एक नुस्खा लिख कर देने को कहा, कहती है कि ये तिगम यहाँ नहीं चलने दूंगी। मैंने समझाया तो मुझे गेट आउट कहकर फटकार दिया।
3: अजी जानते हैं आप, कहीं से कहला फुसला के अपने मामा की जमीन पे इमारत खड़ी कर रही है।
4: छी, एक छोकरी ये सब जोर जबरदस्ती कर रही है और हम मर्द होकर चुपचाप देख रहे हैं।
3: ये सब बड़े लोगों की सहायता के बल पे चल रहा है साहब।
4: गांव के लोग भी तो चंदा इकट्ठा करके उसी को भेंट करते हैं।
3: हर हफ्ते किसी कंपनी की गाड़ी पास के शहर से मुफ्त में दवाएं सप्लाई कर जाती है।
4: इसीलिए तो ये लड़की हम लोगों को तुच्छ मानकर हमारा अपमान करती रहती है। आजकल गांव में हैजे का खतरा है ना, वो जगह जगह जाकर लोगों को इंजेक्शन दवा दी जाती है। इससे ये साबित करना चाहती है कि हमारा धर्म अर्थ औषधालय बेकार है, असली दवाखाना तो स्वयं उसका है।
3: अजी बढ़िया ही धर्म सेवा करने वाली, हम भी देखें जी कब तक चलेगा।
4: आप क्या कर लेंगे श्रीमान?
3: अजी हमारे छोकरे किस दिन काम आएंगे आखिर? उनसे कह दूंगा ऐसा काम करो जिससे कंपनी की उस गाड़ी का आना ही बंद हो जाए।
4: शाबाश, ये भी काम की बात। देखें दवाओं के बगैर कैसे इलाज करेगी।
5: डॉक्टर साहब,
2: क्या हुआ भाई? ये खाओ, ये खून के डब्बे, क्या हुआ?
5: डॉक्टर साहब, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मुझे
2: एक्सीडेंट हो गया। क्या? कंपाउंडर जल्दी आओ।
5: या खुदा, ये किस शैतान का काम है?
4: शहर से दवाएं लेकर कहीं आ रहा था डॉक्टर साहब, गांव से 2-3 मील की दूरी पर ही 4-5 आदमियों ने गाड़ी को घेर लिया और मुझे खूब पीटा।
5: दवाएं क्या हुई?
4: कावेरी नदी के किनारे की सड़क पर ही इबादत हुई थी, सारी दवाएं नदी में फेंक दी। ओफो, उन बदमाशों ने, अकेला आदमी क्या कर सकता था डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे खूब पीटा और फिर चले गए।
5: अब क्या किया जाए डॉक्टर साहब?
2: ऐसा करो, पहले इस आदमी के घाव साफ करके दवा लगाओ।
5: अच्छा,
2: बाद में एक आदमी को शहर भेजेंगे।
5: ठीक है, मैं ही चला जाऊंगा डॉक्टर साहब।
2: नहीं भाई, तुम्हें आराम करना है, तुम कल जाओगे। डॉक्टर साहब एक बात है। बताओ जानम्मा, क्या बात है? कहने के लिए जबान नहीं खुलती, जी घबराता है, क्या कहूँ डॉक्टर अम्मा? घबराने की क्या बात है, बताओ ना। वो उमा जी के घर
5: में, नायकम जी के घर में क्या बात है?
2: उनको उल्टी आ गई है, लगता है हैजा है, कोई भी उनके पास जाने को तैयार नहीं है। आपसे विनती करने आदमी भेजा है कि आप एक बार जाकर उन्हें देख आए। कह भेजो, मैं आ रही हूँ।
5: डॉक्टर साहब
2: कोई बात नहीं है, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह बख्श। उनकी खातिर नहीं तो उमा की खातिर उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। आओ हम सब चलते हैं। डॉक्टर साहब कौन है? डॉक्टर साहब मेरे बेटे की बुरी हालत है, आप जल्दी चलकर देखिए, बेसुध पड़ा हुआ है, दया कीजिए।
6: आप कौन है?
2: अरे गहलम मैं तुम आ गई, चलो अच्छा हुआ।
6: डॉक्टर साहब
2: ये रईस कुमार सानी की घर वाली है।
6: क्या?
2: कुमार सानी के घर? डॉक्टर साहब मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरा इकलौता बेटा बेहोश पड़ा हुआ है, जान का खतरा है और कोई डॉक्टर नहीं मिला, मैं क्या करूं?
6: शहर ले जा सकती हैं आप? आप तो काफी सुविधा संपन्न लोग हैं,
2: शहर के बड़े अस्पताल में बड़े

0: डॉक्टर के पास इलाज करा सकते
1: हैं। डॉक्टर साहब, वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। मैं खुद दौड़ी आई। जानम्मा से विनती की कि आपको समझाए।
2: डॉक्टर साहब, ये घर से बाहर कभी नहीं निकलती। अपने बेटे को मौत से बचाने के लिए यहाँ आई है। डॉक्टर, अभी तो आप मरुद नायकम जी के घर से होकर आई हैं, अब इनके घर भी।
0: पर क्या हम यकीन कर सकते हैं? एक बार पहले इसी तरह कहकर मुझे धोखे में डाला जा चुका है।
2: अगली बार तो अल्लाह बख्श के साथ चलेगा, मैं तो हूँ ही। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा खाना खाकर आइए, तब तक हम सब चलते हैं।
0: नहीं नहीं, अब वो सब खाने वाने की बात छोड़ो, पहले इनके बेटे को बचाना है। चलिए आइए, जल्दी करिए।
3: डॉक्टर साहब।
0: हाँ हाँ, बताइए बच्चा कहाँ है?
1: उस कमरे।
0: चलिए आइए, उसी कमरे में चलते हैं।
3: आइए डॉक्टर साहब, इधर से।
1: राजा बेटा, बोलता क्यों नहीं? आंखें खोलो बेटा।
0: तुम टांगो
3: जी, ये लीजिए दवा का बच्चा। दवा खत्म हो चुकी है, शहर से दवा आनी है। और
2: कोई भी दवा बेकार है।
0: बच्चे का शरीर ठंडा पड़ गया है, चाय निकले काफी देर हो चुकी है।
1: नहीं,
0: कुमार स्वामी साहब, धीरे से काम कीजिए। भगवान ने दिया उसे मैं बाबू।
3: उस बाजी को यही सजा मिलनी चाहिए थी डॉक्टर साहब। मैंने दवा लेके आती हुई गाड़ी को रोक के लुटवाया, दवाओं को नदी में फेंकवाया, उसी की सजा मिल रही है। मुझे उसी की सजा मिल रही है।
4: इंसान जैसा बोला है वैसा ही काटता।
0: चुप रहो, ये बदतमीजी है।
4: माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब।
0: कुमार स्वामी जी, जो नहीं होना चाहिए था सुनो, आप घर लेके और अपनी पत्नी को भी समझ।
4: चलो, चलो।
1: राजा बेटा।

0: थोड़ी देर के लिए बाहर चलिए डॉक्टर साहब, आपके दर्शन करने और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं। अरे भाई, कृतज्ञता तो परमात्मा के प्रति प्रकट करनी चाहिए। आओ चलो, फिर भी देखती हूँ। चलिए चलिए।
1: बाप रे बाप, कितने कुछ फल फूल, कितनी फूल मालाएं, वाह रे वाह।
0: भाइयों, ये सब फिजूल खर्ची है, इसके बदले नया अस्पताल बनवाने के लिए चंदा देते तो अच्छा होता।
2: डॉक्टर साहब, वो देखिए, गांव के बड़े काश्तकार मरुद नायकम जी भी पधार रहे हैं।
0: आइए आइए आइए। अरे आपने ये तो तकलीफ क्यों उठाई?
1: डॉक्टर साहब, आपको अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आया हूँ, आपने हम पर बड़ा एहसान किया है।
0: ऐसा मत कहिए, आप बड़े और बुजुर्ग हैं, फिर मेरी सहेली उमा आपकी बहू है, उस नाते भी आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है।
1: छूत की बीमारी मालूम हो जाने पर पैसे के लिए भी कोई डॉक्टर पास नहीं फटकेगा। हाँ, आपने मेरी जान बचाई।
0: ये तो डॉक्टर का कर्तव्य है, डॉक्टर बनने के बाद बीमारी से डरकर पीछे हटना कैसे संभव होगा।
1: डॉक्टर साहब, आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ, मेरा पोता हुआ है।
0: अच्छा, बहुत बहुत बधाई।
1: उमा रतन भी दोनों आए हैं।
0: अच्छा।
1: बच्चे के नामकरण संस्कार पर आपको निमंत्रण देने दोनों ही आ रहे हैं। मैं पहले आ गया हूँ, आपको हमारे घर अवश्य आना होगा।
0: अब आप इतने बड़े आदमी होकर खुद चलकर बुलाने आए हैं तो भला मैं कैसे चल सकती हूँ।
1: आप ये फल फूल ले लीजिए और अवश्य बधाइएगा।
0: कैसे आप? अरे ये भाटी, तुम आ गए, मैंने सोचा कोई बहाना बनाकर तुम फिर रुक जाओगी। मुझे सूझा ही नहीं उमा कि क्या उपहार ले आऊं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं। उमा, बारी बार पालने पर पड़े बच्चे को हवाई जहाज भेज कर रही हूँ।
3: आप भी हो गए डॉक्टर भारती, अरे बच्चे को क्या अभी एरोप्लेन में बिठा के उड़ाएंगे हैं?
0: ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब था भविष्य में ये होनहार बालक देश विदेश घूमे, ऊंची ऊंची शिक्षा पाए, इसी आशा और अरमान के साथ ये भेंट कर रही हूँ।
1: आइए डॉक्टर अम्मा, भोजन तैयार है, चलिए। हाँ, अरे ये एरोप्लेन तो बहुत बढ़िया है।
0: आपका पोता इसमें बैठकर देश विदेश घूमेगा, आसमान पर उड़ेगा।
1: अरे ये आसमान पर उड़ता रहा तो धरती पर कौन रहेगा?
0: धरती पर ही रहेगा, धरती पर रह लेने के बाद ही तो आसमान पर उड़ना सीख सकता है।
1: अच्छा अच्छा, आइए, भोजन ठंडा हो रहा है, आइए आइए
0: आइए, चलिए। तुम्हारे नर्सिंग होम का उद्घाटन कब होगा? सुना है शहर से कोई बड़ा आदमी आने वाला है। मैं उमा, इस मामले में तुम तो मेरे विचार जानती, फिर भी एक मामूली देहाती आदमी जो मेहनत कश मजदूर है उसके हाथों उद्घाटन होने वाला है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुमने पूरी बिल्डिंग नहीं देखी अस्पताल की, उमा देखोगी ना तो खुश हो जाओगी।
1: सुनिए, एक मिनट सुनिए डॉक्टर।
0: क्यों, क्या हुआ, तुम घबराए हुए क्यों हो?
1: बड़ा अन्याय हुआ है, आरोप स्वामी ने कुछ गुंडों के साथ लेकर नर्सिंग होम की इमारत तोड़ डाली और
0: भारती अकेली चली जा रही है, जालिम राक्षस कहीं उसको भी। मामा जी, बचाइए हमारी भारती को।
1: अरे कोई है?

0: ए, कोई भी इमारत के अंदर घुसने की हिम्मत मत करना, तोड़ फोड़ की तो बहुत बुरा होगा। हाँ बर्बाद
1: बड़ी आई है, हमें डरा दी है। अच्छा पीछे हटो।
0: हाँ हाँ, अगर आप किसी ने पत्थर फेंके तो मैं उसका खून पी लूंगी।
1: ए नफो, चलाओ पत्थर।
2: ये सारी शरारत उस बदमाश आरोग्य स्वामी की है।
3: पुलिस ने एन मौके पर आकर सब बदमाशों को पकड़ लिया। मरुद नायकम जी ने इस वक्त बड़ी मदद की हमें।
2: जो तो है, गांव वालों का प्यार भी तो देखो। डॉक्टर साहब के बारे में तरह तरह के सवालों के जवाब दे देकर थक गए हम लोग जानम।
3: डॉक्टर साहब के लिए इन लोगों के दिलों में कितना गहरा प्यार और आदर है।
2: लगता है उमा जी और डॉक्टर रतन साहब तशरीफ ला रहे हैं। अंदर जाकर डॉक्टर साहब को इत्तला दे आता हूं।
4: आइए आइए आइए। डॉक्टर साहब कैसी हैं?
3: आराम कर रही है। चलिए अंदर चलिए। आइए आइए आइए। चलो
4: भारती, तुमने खुद ही पहली मरीज बनकर अस्पताल का उद्घाटन कर दिया। क्या किया जाए, अच्छे काम के लिए पहले कुछ भेंट तो करनी ही पड़ती है। ये देखो ना, ये मेरे माथे का घाव पहली भेंट है।
5: तो डॉक्टर भारती, आपने उस वक्त बहुत ही जल्दबाजी की, आपको अकेले वहां जाना ठीक नहीं था।
4: उस वक्त सोचने समझने या रुके रहने का होश कहाँ था, और फिर कुछ सूझा ही नहीं। नर्सिंग होम वाले मेरे सुनहले सपने को कोई बड़ी परपरता से गुजर रहा है, बस यही बात मेरे भीतर आवेग भर गई, इसी से तैश में आ गई मैं। भारती, मेरे ससुर साहब बहुत दुखी हैं कि वो तुम्हें इस पथराव से बचा नहीं सके, तुम्हारे लिए बड़े चिंतित हैं वो। चिंता की कोई बात नहीं, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल से मेरा काम यही शुरू होगा। तुम मामा जी को समझा देना उमा, आज तुम्हें मरीज के रूप में लोग यहाँ आकर देख लेते हैं, कल से तुम उन लोगों को मरीज के तौर पर देखना शुरू करना। ये आदान प्रदान अच्छा है, ठीक है ना?
5: डॉक्टर भारती, अब हम चलते हैं, वो अब हमें मद्रास जाने की तैयारी भी करनी है ना।
4: डॉक्टर रतनगिरी, आप जब भी इस गांव में आए, कृपा कर हमारे उमा नर्सिंग होम में पधारने का कष्ट अवश्य करें।
1: जरूर जरूर।
4: देखिए, चिकित्सा संबंधी नई बातों का परिचय मुझे अवश्य दिया करें।
1: ओह सर्टेनली सर। अच्छा, गुड बाय डॉक्टर।
4: गुड बाय डॉक्टर।

0: जासूस रहे हैं?
1: हाँ? नहीं कुछ नहीं, एक छोटे से गांव में इतनी लगन और मेहनत के साथ भारती ने कितना बड़ा और बढ़िया काम कर दिखाया है। मैं उसके सामने हार जाऊंगा।
0: मैं सब जानती हूँ।
1: क्या जानती हो?
0: आप जितना समझते हैं मैं उतनी बेवकूफ नहीं हूँ।
1: क्या कह रही हो तुम?
0: याद रखिए, डॉक्टर उमा डॉक्टर भारती की सहेली है।
1: हाँ, लेकिन ये तो सभी को मालूम है।
0: पर ये बात तो किसी को मालूम नहीं, और भारती ने भी कभी नहीं कहा कि उसकी जगह मैंने ली है और उसकी जिंदगी मैं जी रही हूँ।
1: क्या?
0: हाँ, पहला हक उसी का था।
1: ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई?
0: क्या लाभ होता इसे?
1: माँ,
0: भारती अपने उसूल की पक्की है। लंबा कंटीला रास्ता पार करके उसने स्वयं अपने जीवन की दिशा निश्चित कर ली। वो एक मिसाल, एक आदर्श बन चुकी है। वो अपनी अंतर्चेतना के अनुसार चलने वाली कर्तव्यनिष्ठ महिला है।
1: बड़ी ऊंची बातें हैं ये।
0: ऊंची नहीं, सही बातें हैं ये। जरा सोचिए तो, गाड़ी का रुकना और छूटना उस सिग्नल के इशारे पर निर्भर होता है। हमारा जीवन भी सिग्नल के खंभे जैसा है। ठीक इशारा पाने पर गाड़ी पटरी पर चलती है, गलत इशारा करने पर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इसी तरह कुछ लोग गलत इशारे पर चलते हैं, कुछ सही इशारे पर। क्या किया जा सकता है, अपनी अपनी मजबूरियां हैं।
1: उमा, आज मैं तुमसे भी हार गया हूँ।
0: हार मान बैठना पुरुष का लक्षण नहीं है डॉक्टर साहब। वो भी एक विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए बिल्कुल गलत बात है।
1: सिर्फ एक जगह हार मानना गलत बात नहीं।
0: किस जगह?
1: वो प्रेम की दुनिया में।
0: डॉक्टर साहब, सिर्फ संवेदन और भावना तक ही सीमित ना रहिए, दिल से टोलना भी सीख लीजिए।

कटीला रास्ता। अभी आप सुन रहे थे इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग, नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नेत पाते का। ये था हिंदी रूपांतर। रूपांतरकार ए शौर्य राजन, निर्देशक थे वीपी दीक्षित भट्टू, और ये केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों हम सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले। बांट रही हैं हमारे साथ उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरा भाग।
1: हम बात कर रहे थे राज से स्वराज तक अमाला लाना का सीरियल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की आजादी की कहानी और इतिहास अगर आपको देखना हो तो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज। लेकिन इसके साथ साथ जो जिक्र निकला वो श्याम बाबू का निकला, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मिला था सदाशिव जी को भारतीय खोज में। उसके बारे में बताइए।
2: हाँ, वो रोल था महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था जैसा मैंने कहा, क्योंकि महात्मा फुले ये पापा के जो ऐसे कुछ हमारे आइडियल्स होते हैं,
1: बिल्कुल,
2: जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो महात्मा फुले वैसे आइडियल्स में से एक थे। शाहू फुले अंबेडकर, ये ना तीनों नाम महाराष्ट्र में काफी लिए जाते हैं। और ये एक विचारधारा है कि सब इंसान जो है, सब लोग इक्वल है, समान है। और इसकी पहल ज्योतिबा फुले ने की थी, जब उन्होंने स्त्री शिक्षण के लिए काम किया, जब उन्होंने दलितों को काम देने के लिए काम शुरू किया। उनकी एक कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो शुरू किया, जिसमें हर एक जाति धर्म के इंसान को काम दिया जाएगा, इस तरह से काम होता था। तो ये जो है वो पापा की जो जीवन के प्रति दृष्टि थी उससे बहुत मिलता जुलता ये सब था। तो इसलिए उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक रोल वॉज अ ड्रीम रोल फॉर हिम, क्योंकि देखने में तो वो बहुत ज्यादा महात्मा फुले जैसे थे ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर जो आइडियल्स और जिस तरह से श्याम बाबू ने वो भारत एक खोज की स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई थी, और श्याम बाबू ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि जाति व्यवस्था किस तरह से इन्हें फेस करना पड़ा, सब कुछ वो जिस तरह से आया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था पापा के लिए, और उन्होंने बहुत एंजॉय किया। क्योंकि श्याम बाबू के साथ काम करना यही एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस, हर एक कलाकार जिसने श्याम बाबू के साथ काम किया है वो आपको बता सकते
1: हैं। अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया।
2: हाँ,
1: वो तो किसी भी विषय का जिक्र करें
2: करेक्ट
1: तो वो पेज खुल जाएगा।
2: करेक्ट,
1: वैसे जिसे आज हम क्लिक करते हैं ना।
2: हाँ हाँ, वैसे वैसे तो ही हिमसेल्फ वाज अ सर्च इंजन, इस तरह से हम कह सकते हैं।
1: यस,
2: क्या होता है किसी भी कलाकार के लिए कि वो खुद की एक तैयारी करता है, राइट? तो महात्मा फुले के बारे में हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। तो एक सोच होती है अपनी, एक विचार होता है, और फिर बड़े होते हो और स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ते हो, तब हमें और ज्ञान मिलता है कि और ये इंसान कैसा था, इसकी रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ कैसी थी, इसने जो स्त्री शिक्षण के लिए काम किया ये क्यों किया। पापा कहते थे कि मैं मेरी एक सोच लेकर गया था कि महात्मा फुले ऐसे थे, उन्हें ऐसे दिखाना जरूरी है, पर जब श्याम बाबू ने उनका पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन किया तो एक बहुत अलग तरीके से महात्मा फुले उन्हें समझ में आए। तब तक के जो महात्मा फुले पापा को समझ में आए थे वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के रेफरेंस से समझ में आए थे, और जब भारत एक खोज में पापा ने वो रोल किया और श्याम बाबू ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि महात्मा फुले की जगह भारत के इतिहास में, पूरे इतिहास में क्या है, उस समय पापा को ये समझ में आया कि नहीं, ये महात्मा फुले, हम लोग भले ही उनको लिमिट करते हैं महाराष्ट्र तक, पर ही इज अ नेशनल हीरो,
1: एक व्यापक दृष्टिकोण,
2: व्यापक दृष्टिकोण है, ऑफ कोर्स। और उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की है अछूत परंपरा के खिलाफ या स्त्री शिक्षण के लिए, ये आगे जाकर गांधी जी ने, अंबेडकर साहब ने, इन सब ने वो आगे वो लेके गए हैं, पर उसका मुख्य स्रोत महात्मा फुले हैं। तो ये जब पापा को समझ में आया तब बहुत ही प्राइड वाला वो मोमेंट था कि मैं महात्मा फुले कर रहा हूँ और श्याम बाबू के साथ कर रहा हूँ। और उस वक्त भारत एक खोज एक ऐसी सीरियल थी जिन्हें याद होगा कि हर रविवार को लोग बैठे रहते थे कि अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा, और पूरे देश के सबसे बेहतरीन कलाकार उस समय उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। और बिकॉज अगेन श्याम बाबू थे, तो इसलिए श्याम बाबू ने एक एक चुन चुन कर कलाकार उसमें लिए हुए थे। तो इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस, ऐसा मैं कहूंगी। जैसे मैंने कहा कि लोकमान्य तिलक का तो वो उनका एक जुनून था कि अभी मैं करके दिखाऊंगा, पर महात्मा फुले का जब उन्होंने कैरेक्टर किया तब और थोड़ा आगे आ चुके थे जिंदगी में, थोड़ी मेच्योरिटी और आ गई थी, और श्याम बाबू के निर्देशन में वो करना बहुत ही सुंदर अनुभव था। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लिटरेचर, दलित लिटरेचर जिसे हम कहते हैं में, वो पढ़ा, उसके बारे में उनकी सेंसिटिविटी है, उनकी जो समझ है वो जिस तरह से डेवलप होती गई, और फिर उसके बाद वो जब सामाजिक कामों में गए तब उन्हें उसका बहुत फायदा हुआ उस रोल का और उस समझ का।

0: साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना,
1: साथी हाथ बढ़ाना,
2: साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे,
1: साथी हाथ बढ़ाना, साथी,
2: साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे।

0: को भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। औलादी है दीने अपने, औलादी है बाहे,
1: औलादी है दीने अपने, औलादी है।

0: काफी बात बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, काफी हाथ बढ़ाना,
1: काफी हाथ बढ़ाना साथी रे,
2: काफी हाथ बढ़ाना साथी रे,
1: काफी हाथ बढ़ाना साथी।

0: काफी बात बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। काफी हाथ बढ़ाना,
1: काफी हाथ बढ़ाना, काफी

0: एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जल्ला बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत,
1: एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत,
0: एक से एक मिले तो इंसान बस में कर

0: बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाद की पीढ़ी के जिन्होंने अपने बड़ों से भारतीय खोज की कहानी सुनी है कि ऐसा सीरियल होता था और लोग रुक जाते थे और रविवार का इंतजार किया जाता था, तो बाद की पीढ़ी के लोग इसे ढूंढ कर देखते रहे। बल्कि इस इंटरव्यू के लिए जब मैं वो एपिसोड देख रहा था तो मैंने देखा कि सदाशिव जी की आंखों में एक इंटेंसिटी नजर आती है जब वो अपने संवाद बोल रहे हैं। अलग अलग दृश्यों में जहां उनको खेलने का मौका मिलता है तो खेल जाते हैं, उस रोल को वो एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। क्या कभी कोई ऐसा जिक्र है जहां किसी ने उनसे कहा हो कि तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं और तुम्हारे अभिनय की बड़ी जंग आंखों से जीतती है?
1: एक्चुअली ये इसके लिए हमें फिर से अर्ध सत्य की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। तब गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसका जिक्र है।
1: तो तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और इसलिए वो कैरेक्टर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। और आप अगर अर्धसत्य देखेंगे आज भी तो आप देखोगे, आई थिंक वेव्स पर ही है प्लेटफॉर्म पर, तब आप देखोगे कि जिस तरह से आंखों का अभिनय किया है पापा ने, उसके बाद जब भी उन्होंने कमर्शियल फिल्में की उसमें वो इंटेंसिटी नहीं आई है, पर वही

0: इंटेंसिटी आपको राज से स्वराज तक में दिखेगी,
1: बिल्कुल
0: वही इंटेंसिटी आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखेगी, वही इंटेंसिटी आपको वास्तु पुरुष में दिखेगी। ऐसी कुछ चुनिंदा रोल्स हैं जिनमें वो इंटेंसिटी समझ में आती है, और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम निर्देशक हैं जो वो एक्सप्लॉइट कर पाए हैं जो आंखों की उनकी इंटेंसिटी थी।
1: अर्धसत्य जब कामयाब हुई और अर्धसत्य में जब हम सदाशिव जी को देखते हैं तो जब उनके दृश्य आते तो एक सिहरन देखने वाले को दौड़ जाती है, मतलब एक ठंडा सा भय महसूस होता है, जबकि कितने कम दृश्य हैं
0: और वो पूरे
1: 3.5 दृश्यों में जो उन्होंने कमाल किया। उसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगे और उसके बाद की जो कहानी है कि कैसे उनसे कहा गया सेक्रेटरी रख लो वो बताइए।
0: तो इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब क्या हुआ था।
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ से ही आगे चलिए। हाँ,
0: तो जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब मेरे चाचा जी ने केमिस्ट की दुकान खोली थी अहमदनगर में। तो मेरे चाचा जी बहुत मेरे दादाजी की तरह ही बिजनेस माइंडेड और इस तरह से थे, कलाकार। मेरे पापा एक हमारी फैमिली में निकल गए कलाकार और पापा उनको मदद कर रहे थे क्योंकि नया नया दुकान शुरू हुआ था, प्रीमियर था बंबई में अर्धसत्य का। तो पापा ने दादाजी से पूछा, बिकॉज उस वक्त तो ऐसे होता था ना कि पिताजी की परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने पूछा कि मैं जाऊं वहां पर प्रीमियर है, तो क्योंकि उससे पहले 22 जून 1897 आई हुई थी और वो फिल्म कुछ खास चली नहीं थी। तो दादाजी ने पूछा, अच्छा कितना रोल है तुम्हारा? ना कुछ है, 3-3.5 सीन है। 3-3.5 सीन के लिए तुम अहमदनगर से उठ के बॉम्बे जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे लोग नहीं है, मदद करो। ऐसा माहौल था उस वक्त घर पर। तो पापा ने हाँ कहा। उस वक्त हमारे यहाँ पर फोन भी नहीं था और हमारे ही हवेली में बाहर की तरफ जो दुकानें थी वो रेंट पे दी हुई थी। हमारे बाजू में एक जो दुकान था मेडिकल शॉप के बाजू में, वो एक स्पोर्ट्स का दुकान था, वहां पर एक फोन था। तो पूरा जो हमारा एरिया था वो उसी फोन पे फोन उसके लिए आते थे। फिल्म रिलीज हुई और प्रीमियर पे रामा शेट्टी तो था नहीं, और सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये है कौन, ये बंदा है कौन, ये रहता कहाँ है, क्या करता है। बिकॉज उनका ऐसे नेटवर्क भी नहीं था हिंदी थिएटर में जैसे पहले हुआ करता था लोगों का। तो फिर तेंदुलकर साहब से लोगों ने फोन नंबर लेकर, अहमदनगर में ट्रंक कॉल होते थे उस वक्त, तो वो नंबर लगाकर रुकना पड़ता था, जब कॉल लगेगा तब वो लगेगा इस तरह से। और उस दिन जो वो फोन बजना शुरू हुआ वो दिन भर वो फोन बंद ही नहीं हुआ। अल्टीमेटली शाम को वो शिंदे के जो मालिक थे उन्होंने वो उठाया फोन और बाजू में रख दिया, निकाल के रख दिया, अनबुक कर दिया कि बस अभी नहीं बजना चाहिए फोन। और जब इस तरह से देखा तब दादाजी ने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, तो अब तुम जाओ बंबई और देखो क्या हुआ है। उसके बाद फिर हम बंबई आए, बिकॉज उस समय दिवाली के दिन चल रहे थे, तो वो छुट्टियों का मौसम और वो सब करके 83 की बात है ये, हम लोग बंबई आए। और जैसे ही हम तो उस वक्त लाल डिब्बे से ट्रैवल करते थे, स्टेट बस से हम लोग उतरे, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन था वहां पर उतरे, क्योंकि उस वक्त अहमदनगर में फिल्म भी इमीडिएटली रिलीज नहीं होती थी,
1: देर से आती थी,
0: एक डेढ़ साल के बाद वहां फिल्म आती थी। तो हमें तो पता ही नहीं था बॉम्बे में क्या हुआ है। तो हम लोग उतरे और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: वाह वाह।
0: फिर एक सरदार जी ने पापा को कहा कि अरे भाई तुम टेंशन मत लो, चलो चलो चलो चलो, और उन्होंने हमारा सामान उठाया, टैक्सी में डाला हम सबको, वरना हम लोग
1: गिर जाते।
0: हम लोग ट्रेन से घर जाने वाले लोग थे कि अभी बस से उतरे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे घर जाएंगे। नहीं नहीं बैठो तुम टैक्सी में, ये वो करके फिर हम लोग गए अंधेरी में किराए का घर जो था वहां पर तारा। पापा पैसे देने लगे टैक्सी के, तो नहीं नहीं नहीं नहीं रामा शेट्टी से पैसे नहीं देते। और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या रहा है।
1: बिल्कुल, सोचिए कि हम किस जमाने में ये बात कर रहे हैं जबकि फिल्म के प्रीमियर के बाद रीलें चल पड़ती हैं।
0: हाँ,
1: और रातों रात बंदा स्टार बन जाता है और कोने कोने में खबर फैल जाती है, और यहाँ अहमदनगर में पता ही नहीं है कि बंबई में क्या धमाका हो चुका है।
0: वाह। उस वक्त फिर ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे जब हम पहुंचे तो वहां पर बस किराए का घर था, पर लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पर ये रहते हैं। अगेन हमारे जो नेबर थे उनके पास फोन था तो उनका फोन बजता था, हमारे घर पे फोन ही नहीं था, हमारे घर पे उस वक्त टीवी भी नहीं था एक्चुअली। इसलिए फिर उन्होंने अल्टीमेटली हमें कहा, पवार साहब करके थे, कि भाई अभी तुम एक फोन ले लो।
1: इतने फोन आने लगे।
0: मेरे ख्याल से उस समय जो टेलीफोन कंपनी थी उसमें नंबर लगाना पड़ता था, 6-7 महीना 1-1 साल फोन आने में लग जाता था, पर बिकॉज रामा शेट्टी के लिए वो था इसलिए रातों रात हमारे घर पे उस वक्त फोन आ गया था। मुझे याद है कि अल्टीमेटली तेंदुलकर साहब ने ही पापा से कहा था कि देखो सदाशिव, अभी तुम इतने ये हो चुके हो कि तुम अभी खुद बात नहीं कर सकते प्रोड्यूसर्स से, यू नीड अ मैनेजर। और फिर उन्होंने एक सेक्रेटरी उनको रिकमेंड किया था और फिर पापा ने वो सेक्रेटरी रखा था। और मुझे याद है एक हफ्ते में उस समय पापा ने 200 फिल्में साइन की थी।
1: अरे बाप रे, इतना आदमी एक जीवन काल में करता है
0: एक्चुअली। तो एक हफ्ते में 200 फिल्में उन्होंने साइन करी थी, जो आगे 8-10 साल तक उनका काम उसी में चल रहा था।
1: गजब। मैंने ये भी बात पढ़ी है कि चूंकि थिएटर की दुनिया से आए थे और एक सीधे साधे व्यक्ति थे, तो उन्हें मुंबई के फिल्म जगत की तिकड़म नहीं पता थी कि कैसे अपना रेट तय करना है, कितने पैसे मांगने हैं। और वो शुरुआती जो दौर था वो इसी तरह का दौर था जब उन्हें खुद अपना ही मोल नहीं पता था।
0: मैं तो कहती हूँ पापा को अंत तक खुद का मोल नहीं पता था मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल अंदर बाहर से एक कलाकार थे। जैसा मैंने पहले कहा था कि भोला सांब जो मराठी में कहा जाता है कि जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, वैसी ही उनकी ये थी। उस वक्त भी ही यूज्ड टू डिपेंड ऑन हिज सेक्रेटरी कि भाई तू डिसाइड कर कितना लेना है, किससे कितना लेना है।
1: एग्जैक्टली।
0: पर उसमें भी उनका ये होता था कि भाई ये रोल के लिए एक पैसा भी नहीं मिला फिर भी मैं ये करूंगा। हालांकि ही वॉज अ बिग स्टार उस वक्त, लेकिन वो आखिर तक उनका था। कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए वो कहते थे कि मैं अवेलेबल हूँ, तुम बताओ तुम्हें कब की डेट चाहिए, फिर भले ही वहां पर काम अगर मेरा छूटता है दूसरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बिल्कुल कलाकार थे और एंड तक उन्होंने कभी पैसों के मामले में और इसमें ध्यान ही नहीं दिया। जो पैसा आना शुरू हुआ तो लकीली मम्मी को उसका सेंस था कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है पैसों की, इसलिए उन्होंने वो किया, इसलिए आज तक हम लोग सही सलामत है। वरना पापा को उनका खुद का भी मोल पता नहीं था। मुझे नहीं लगता टिल द एंड उन्होंने खुद की जो वैल्यूएशन की थी, बहुत ज्यादा मांग सकते थे पर उन्होंने मांगा नहीं कभी, बिकॉज पैसा ये उनके लिए प्रायोरिटी ही नहीं थी। उनके लिए प्रायोरिटी थी कि मैं काम करता रहूं, मैं एक्टिंग करता रहूं, मैं लोगों से मिलता रहूं, मैं लोगों के लिए कुछ करता रहूं। तो टेक्निकली क्या था, बिकॉज पापा ने फिल्म इंडस्ट्री को घर से बाहर रखा हुआ था, हमारे घर पे बहुत ज्यादा फिल्मी लोग नहीं आते थे, तो इसलिए उनकी उस वक्त क्या प्रोसेस थी, वो रेट किस तरह से डिसाइड होता था, फिल्म की फीस क्या डिसाइड होती थी, ये प्रोसेस के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी तब मुझे समझ में आया कि पापा ने तो खुद को बहुत अंडर वैल्यू कर रखा है।
1: अर्धशक्ति की बात, जब वो बिजी हो रहे थे लगातार तो जाहिर है कि वो एक थिएटर की धारा पीछे छूटती चली जा रही थी। जाहिर है कि इस बात की एक एक तकलीफ, एक एक खालीपन उनके मन में रहा होगा। उसका कभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे थिएटर का हाथ छूटता जा रहा है?
0: हाँ, पर उनका थिएटर का हाथ भले ही दूर गया हो उनसे पर छूटा कभी नहीं था।
1: हाँ हाँ,
0: ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनके दोस्त जिन लोगों के साथ उनकी उठन बैठन होती थी वो सारे या तो थिएटर के होते थे या तो समाज सेवक होते थे। तो उनका जो स्ट्रक्चर था, जिस तरह से वो बने हुए थे उसमें ही थिएटर था। तो उनके जो कॉलेज के दौरान जिन लोगों के साथ वो थिएटर करते थे, जिन लोगों के साथ रिहर्सल्स करते थे, उनका जो ग्रुप था वो उनका ग्रुप आखिर तक था। तो इसलिए थिएटर कभी उनसे छूटा नहीं था एक्चुअली। और उन्होंने थिएटर किया, नहीं किया ऐसी भी बात नहीं है, उन्होंने एक प्ले किया था अकस्मात टीना कुलकर्णी के साथ जो सुपर हिट था, और ये मैं बात कर रही हूँ 91-92 की,
1: जब वो बहुत बड़े स्टार,
0: बहुत बड़े स्टार थे, सड़क से थोड़ा सा ही पहले, तो या आफ्टर सड़क आई थिंक, तो उस वक्त भी उन्होंने वो प्ले किया हुआ था, बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा था कि इट नीडेड अ परफॉर्मेंस एंड इट वॉज चैलेंजिंग, तो अगर चैलेंजिंग है तो वो करने के लिए तैयार थे, क्योंकि क्या होता है एक बार आप स्टार बन जाते हो तो थिएटर वाले हो या फिल्म वाले हो, ये आपका स्टारडम एनकैश करने के लिए ही ज्यादा आपके पास आते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और वैसे ही रोल आपको ऑफर किए जाते हैं। काफी सारे कलाकारों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है, पापा भी उससे छूटे नहीं है, पर उन्होंने वो प्ले किया था क्योंकि उनके जो दोस्त थे सुरेश चिखले, उन्होंने वो लिखा हुआ प्ले था, और वो प्ले बहुत ज्यादा चला, उसके लगभग आई थिंक 1.5 साल उन्होंने उसके शोज किए, पर उस वक्त थिएटर का परफॉर्मेंस या फिल्म की शूटिंग इतने इराटिक हुआ करते थे कि एक डेट देना और वो स्टिक करना, जैसे अभी होता है कि जो मराठी कलाकार थिएटर करते हैं वो वीकेंड्स रख देते हैं कि वीकेंड्स पे मेरे शोज होंगे और मंडे टू फ्राइडे मैं काम करूंगा, राइट। सो वैसे उस समय एक्टर्स के पास ये सहूलियत नहीं,
1: तब उतनी सिस्टमैटिक इंडस्ट्री नहीं,
0: बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, तो इसलिए उनका वो छूटा। पर बाद में जब उन्होंने धीरे धीरे काम कम करते गए, वो तब उन्होंने एक प्ले किया था जैसा तैसा विठोबा, विच वॉज अ वन मैन शो,
1: ओके, सोलो था,
0: सोलो था, और पूरा 2 घंटे पापा अकेले स्टेज पर,
1: क्या बात है, क्या बात
0: ये
1: है?
0: 2003-04 की बात कह,
1: खुद ही डायरेक्ट किया था या किसी
0: नहीं, नहीं, चंद्रकांत कुलकर्णी करके हमारे मराठी के बहुत बड़े दिग्दर्शक हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था ये प्ले, और लिखा था आनंद विनायक जातेगावकर करके बहुत बड़े फिलोसॉफिकल राइटर होकर गए हैं, उन्होंने लिखा हुआ था ये प्ले। सो तुकाराम महाराज जो संत है उनके अभंगों के ऊपर बेस्ड ये प्ले है, ये इसका ऑडियो ट्रैक है, बिकॉज ये सुनने वाला ही प्ले है,
1: बिल्कुल, ये भी एक माइलस्टोन है कि वो करते चले गए जहां तक उनका बस था।
0: अगर कुछ नया करने के लिए मिल रहा है तो उन्हें वो करना होता था, तो इसलिए आई थिंक जैसा तैसा विठोबा वॉज अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट दैट ही डिड। उसके बाद वो थिएटर फिर से शुरू करना चाहते थे, हालांकि जब उनकी तबीयत बिगड़ गई उस वक्त भी वो एक प्ले निर्देशित और एक्ट करने की प्रोसेस में थे, और तब वो उनका रिहर्सल्स और ये शुरू हो ही रहे थे, पर उनकी तबीयत उनकी साथ नहीं दी इसलिए वो नहीं हो पाया।
1: जी, जिस समय वो व्यस्त होते चले जा रहे थे उस समय जाहिर है कि उनका एक रूटीन होता होगा और घर पर थोड़ा कम समय देते होंगे, तो बच्चों ने कितना मिस किया उनको?
0: बहुत। मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी
1: जी,
0: लेकिन मेरी बहनों ने काफी मिस किया,
1: वो बड़ी थी और
0: हाँ वो बड़ी थी, समझदार थी, क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मुझे ऐसे कुछ अलग लगता नहीं था, बिकॉज पापा बिजी ही थे। तो आप कहते हो कि रूटीन है, तो ये फिल्म एक्टर्स का ना रूटीन ही नहीं होता है,
1: बिल्कुल
0: हाँ, क्योंकि जो शिफ्ट लगती है शूटिंग की, जो शिफ्ट होती है उस हिसाब से उन्हें जाना पड़ता है, और जैसा मैंने कहा कि अभी कलाकारों के पास ये सहूलियत है कि एक टाइम पे वो एक ही फिल्म करेंगे एक समय पे, वैसे उस वक्त नहीं था कि दो तीन दिन एक हफ्ता किसी एक फिल्म का शूटिंग कर लिया, फिर बाद में दूसरी किसी फिल्म का शूटिंग कर लिया, तो जैसे शूटिंग लगते थे जैसे डेट्स दी जाती थी वैसे देते थे, क्योंकि पापा हो लिए, गोविंदा हो लिए, ये जो सब सारे कलाकार थे इनकी डेट्स 3-3, 4-4 साल तक बुक्ड रहती थी,
1: बिल्कुल,
0: तो इसलिए उनका कोई रूटीन नहीं था एक्चुअली, लेकिन एक ही रूटीन था कि पापा होंगे तो पापा है घर पर है, हमसे बात करेंगे, हम सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे, उनके दोस्त आएंगे, उनके साथ टाइम पास होगा, ये रूटीन एक डेफिनेटली होता था। और जब वो अनिल शर्मा जी की फिल्में कर रहे थे तब तो राजस्थान और कश्मीर में महीना महीना शेड्यूल लगते थे, तो जब पापा आने वाले हो तो हम बच्चों को कैसे पता चलता था, बिकॉज उनकी जो फेवरेट मिठाइयां होती थी ना वो मम्मी बनाती थी।
1: अच्छा, तो उससे अंदर
0: शायद पापा आजकल में आने वाले।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और हमारा रूटीन लगभग मम्मी के साथ ही रहता था, मम्मी ही डिसाइड करती थी हम कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ ट्यूशन के लिए जाएंगे, हम क्या कपड़े पहनेंगे, हम क्या करेंगे, बिकॉज वो ही पूरा वक्त होती थी हमारे साथ। पापा तो बाहर गांव होते थे और इतने बिजी होते थे कि ही वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आवर डिसीजन मेकिंग, हमने जो निर्णय लिए उसमें वो कभी नहीं थे। पर मैं इस बारे में बहुत लकी समझती हूँ खुद को कि जैसे मैं कॉलेज गई 2001 के आसपास, तब पापा ने काम बहुत कम कर दिया था, बिकॉज उन्हें ही हैड बिकम बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स, कि एक विलन है या एक कॉमेडियन है, वही वही काम करके उन्हें ऐसा हो गया था यार अभी नहीं करना है बस. और जैसा मैंने कहा कि पैसा और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, इसमें उनका कभी ध्यान नहीं था, तो उन्होंने एक दिन ये डिसीजन ले लिया और मम्मी को बोल दिया कि देख जितना मैंने कमाया है उसमें तुम और मैं मरने तक तो खा पी के सुखी रह सकते हैं, अभी और कमाने की जरूरत है क्या. क्योंकि

0: वो बुक करके रखते थे कि मुझे
1: अच्छा।
0: ये फिल्में देखनी है, और वो फिल्में वो देखते थे वहां बैठकर।
1: ये ड्राइंग और फोटोग्राफी का क्या मामला था?
0: जैसा मैंने कहा कि पापा एक निर्देशक भी थे, तो उनकी नजर हमेशा कुछ अलग अगर दिखता है तो उसके ऊपर टिकी रहती थी।
1: ओके।
0: और हमेशा ढूंढती थी कि कोई नया कुछ अगर दिखाई दे तो लकीली और उनके काम की वजह से उन्हें पूरा भारत वो घूमे, हालांकि आधे से ज्यादा दुनिया वो घूमे। उस वक्त तो बड़े बड़े कैमरास होते थे, लेंस और फिल्म्स होती थी उसमें, रोल वाले कैमरास होते थे, वो लेकर वो चलते थे साथ।
1: वाह वाह।
0: जहां पर भी वो जाते थे, राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, साउथ इंडिया हो, कोडाईकनाल, जहां पर भी वो शूटिंग के लिए जाते थे वहां पर उनके साथ उनका कैमरा होता था। तो अगर अहमदनगर में जो हमारा घर है जो पापा ने बनाया हुआ है, उसमें अगर आप कभी जाओगे, किसी को अगर चांस मिलता है वहां जाने का और देखने का, उस घर का पूरा हमारा इंटीरियर सिर्फ फोटोग्राफ्स है।
1: वाह।
0: जो पापा ने पूरे इंडिया में जाकर खींची हुई तस्वीरें हैं, उसमें फैमिली फोटोग्राफ्स भी है ऑफ कोर्स। तो वो जो टेक्निक है फोटो की, उन्हें मैनुअल कैमरा अच्छा लगता था, डिजिटल कैमरा उन्हें बिल्कुल, उन्हें लगा ये क्या बचकाना है ना, तो वो लेंस एडजस्ट करो, फोकस करो, इत्मीनान से शूट करो, इस तरह से उनकी वो स्टाइल थी। तो क्या, तो उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। और उनके जो दोस्त थे, सबसे करीबी दोस्त हम जिन्हें कह सकते हैं, डॉक्टर अनिल औसट है, फिर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर है जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिन्होंने शुरू की थी, तो इन सब लोगों को भी ये सब शौक थे। तो इसलिए इनके साथ तो किताबें, फोटोग्राफी और पेंटिंग, ये तीन चीजें थी जो इनको बहुत ज्यादा पसंद थी, ये सब लोगों को और पापा को विशेषता, क्योंकि उनके काम की वजह से वो जाते थे। और इसमें एक बात बताने वाली ये है कि ये जब भी जाते थे ना, जैसे उन्होंने मिथुनदा के साथ काफी सारे फिल्में की थी, तो उस वक्त ऊटी में शूटिंग होता था, 90s की बात कर रही हूं मैं, तो जब भी वो जाते थे तो उनके साथ उनके ये जो दोस्त थे, नरेंद्र दाभोलकर हो गए, डॉक्टर अनिल औसट हो गए, या राइटर्स थे, वो लोग साथ में होते थे।
1: वाह वाह।
0: कि वहां पर शांति से मैं शूटिंग करूंगा, तुम बैठ के रूम में अपना लिखने का काम करना। तो ये सब लेखक थे, लेखक वैचारिक इसमें शामिल होने वाले, इस तरह के सारे लोग थे। तो हमेशा उनके साथ उनके दोस्त रहते थे, फैमिली मेंबर्स को वो कभी लेकर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, डे वन से, जैसे याद है जो लोग मम्मी की किताब पढ़ेंगे, अभी उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आएगा, मेरी बहन ही कर रही है, तो जब पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि बचपन से लेकर आज तक, मतलब अभी भी टिल हिज लास्ट, उनके आजू बाजू हमेशा उनके दोस्त हुआ करते थे। जब वो छोटे, बिल्कुल छोटे थे, तब मेरे दादाजी की ईंट बनाने का जो कारखाना होता है वो था, और वहीं पर एक साइड में छोटा सा घर बनाकर दादाजी, दादी और पापा सब लोग रहते थे। और वहां पर जो कामगार होते थे उनके रहने के लिए भी वहां पर रूम्स बनाए हुए थे। तो उन सारे कामगारों के बच्चों को लेकर पापा घर पर आते थे और दादी से कहते थे कि इन सबको भी दो,
1: वाह वाह,
0: मैं इनके साथ बैठ के खाऊंगा। तो दादी कहती थी कि चलो ठीक है, इसी बहाने खा लेगा। सबको खिलाते थे।
1: हाँ।
0: और मुझे जब से याद है बचपन से, तब से हमारे घर पे एक भी दिन ऐसा नहीं, मतलब पापा भले ही शूटिंग के लिए गए हो, पर उनके दोस्त बॉम्बई में किसी काम से आते थे, तो वो अहमदनगर का कोई भी आदमी अगर बॉम्बे आता था तो हमारा घर उनका खुद का घर होता था।
1: वाह वाह वाह।
0: हाँ, तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ, मैं, मेरी माँ, मेरी बहनें और पिताजी इतने ही घर पर है, ऐसा एक भी दिन आज तक मुझे याद नहीं है।
1: हमेशा कोई ना कोई,
0: हमेशा कोई ना कोई होता था, या तो वो कोई लेखक होता था, कोई नया कलाकार होता था, या उनका कॉलेज का दोस्त होता था, या कोई समाज सेवक होता था, या कोई ऐसा होता था जिसका कोई काम है, जिसे कोई परमिशन चाहिए, कोई है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है नया काम, जिसे भी बंबई में आकर कुछ मदद की जरूरत चाहिए होती थी, हमारा घर उन सब के लिए खुला होता था।
1: क्या बात है। इतनी शिद्दत से हम उन दिनों को याद करें जब वो बिजी थे, तो मुझे लगता है यहाँ बख्शी साहब का एक गाना आना चाहिए, तकदीर फिल्म का, पापा जल्दी आ जाना, सात समुंदर पार से।
0: श्योर।
1: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत सारी बातों के सिरे यहाँ पर खुले रीमा जी, लेकिन जो जिक्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आया वो नरेंद्र दाभोलकर जी का है, अंधविश्वास निर्मूलन समिति का। उनके साथ उनके बहुत गहरे रिश्ते रहे, उसका जिक्र कीजिए कि किस तरह से वो इस समिति के साथ भी काम करते रहे।
1: करेक्ट, नरेंद्र काका जो थे वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो भारत में जो अंधश्रद्धा के खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट हुई उसके प्रेरक तो थे ही, पर वो एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत उम्दा इंसान थे। उनकी जो पहचान थी वो पहले डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर श्रीराम लागू, निरो फुले, इनके जरिए पापा की और उनकी पहचान बनी और आगे जाके फिर वो दोस्ती और आगे बढ़ी।
0: तस्वीरों में भी ये लोग साथ नजर आते हैं, बहुत सारी तस्वीरें,
1: काफी सारी तस्वीरें,
0: डॉक्टर लागू है, नीलू फुले हैं, ये सब साथ में दिख रहे हैं।
1: हाँ, एकदम, क्योंकि इन्होंने एक मूवमेंट करी थी जिसका नाम था सामाजिक कृतज्ञता निधि। सो सामाजिक कृतज्ञता निधि ये एक मूवमेंट थी जिसमें इन्होंने फंड रेजिंग की थी। लगनाची बेड़ी करके एक प्ले था जिसमें पापा निरो फुले, डॉक्टर लागू, तनुजा जो एक्ट्रेस, तनुजा, सुहास जोशी, रोहिणी हट्टंगड़ी, ऐसे सब बड़े बड़े बड़े बड़े कलाकार, और इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूमकर निधि जमा किया हुआ था
0: नाटक करके, जो
1: नाटक
0: जिसका
1: करके
0: जिक्र आता है कि बड़ा तूफानी दौरा किया।
1: एग्जैक्टली, और ये मैं 84-85 की बात कर रही हूँ, और उस समय उन्होंने लगभग 60 लाख रुपए 84-85 में जमा किए हुए थे, जिसका हेतु ये था कि ये पैसे हम फिक्स करेंगे और इसका जो इंटरेस्ट इनकम आएगा उसमें से हर साल हम जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनके घर चलने का और कोई जरिया नहीं है, उन्हें हम ये पैसे हर महीना देंगे 2 साल तक।
0: क्या बात, एक तो ये कि ये रकम जो 80 के दशक में थी वो आज की तुलना में मुझे लगता है शायद 10 गुना
1: और ज्यादा ही। तो इस तरह से वो कंसेप्ट थी, ये कंसेप्ट निकली थी नरेंद्र काका के दिमाग से, और डॉक्टर लागू और नीलू फुले ये बहुत करीब से काम कर रहे थे ऑलरेडी डॉक्टर दाभोलकर के साथ, और उन्होंने क्योंकि पापा के साथ उन्होंने काम किया हुआ था कन्यादान में, जैसे मैंने कहा डॉक्टर लागू से बहुत ही करीबी रिश्ता पापा का हो चुका था, तब
0: आगे चलकर उसकी अलग से बात कर।
1: हाँ हाँ, डेफिनेटली, हालांकि बहुत ही करीबी रिश्ता तब तक हो चुका था, इसलिए फिर डॉक्टर लागू ने कहा कि सदाशिव हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड? तो पापा ने कहा जरूर, क्यों नहीं, और इस तरह से पापा उसमें शामिल हुए, और ये सब लोग महाराष्ट्र के जितने भी थिएटर्स हैं, जितने भी छोटे बड़े गांव हैं, वहां जाकर आप इमेजिन कीजिए उस वक्त के नेशनल स्टार्स, डॉक्टर लागू, निरो फुले, पापा, तनुजा,
0: कमर्शियल,
1: एग्जैक्टली, ये सब लोग वहां पर प्ले तो करते थे, परफॉर्मेंस तो लोग देखने आते ही थे इनका, और उसके बाद ये सब लोग जहां ऑडियंस एग्जिट होती है वहां पर झोला लेके खड़े रहते थे।
0: वाओ,
1: झोला लेके खड़े रहते थे और लोग पैसे देते थे। सो जो शो की टिकटों में से पैसे आते थे वो तो आते ही थे, और लोग जिन्हें लगता है कि हमें और मदद करनी चाहिए वो उस झोली में 5 रुपया हो 1 रुपया हो 100 रुपया हो जिसे जो अच्छा लगे वो उस झोली में डालता था, और ये सब पैसे मिलकर सामाजिक कृतज्ञता निधि के लिए जाते थे।
0: ये कितना बड़ा मुहिम, मतलब
1: बहुत ही
0: ये अद्भुत काम रहा उस जमाने
1: तो, और पापा ने मुझे कई बार बता भी चुके हैं, जिसका मेरे ऊपर भी काफी परिणाम रहा है, कि मेरी कला जो है वो सिर्फ मेरी नहीं है, मैं इस समाज का एक घटक हूँ, इसलिए इस समाज के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और इसलिए मैं ये हमेशा पहली जिम्मेदारी ये समझूंगा कि मेरा देश और मेरा समाज, इसके लिए मुझे जो करना है वो मुझे करना है, और फिर मेरा कुटुंब आता है, फिर मेरी फैमिली आती है, फिर मैं आता हूँ। इस तरह से वो जिए भी इसी तरह से, और उन्होंने उनकी करियर भी इसी तरह से की, इसलिए जब वो टॉप पर भी थे तब उनके साथ कभी कोई फिल्मी लोग नहीं होते थे, उनके साथ ये सब समाज सेवक हुआ करते थे। हालांकि ये हमारी फैमिली की परंपरा रही है, मेरे दादाजी भी अहमदनगर के सामाजिक सर्कल्स में बहुत कार्यरत रहे थे टिल द एंड। और उस वक्त भी कॉलेज में भी जब पापा थे तो कोई बाढ़ आई है तो बाढ़ग्रस्तों के लिए कोई शो कर लिया, उनको फंड रेजिंग करके दे दिया, तो ऐसा फंड रेजिंग पापा करते रहे हैं। तो मुझे याद है 97 की बात है, तब हमारे अहमदनगर इज अ हिस्टोरिकल सिटी, और वहां पर एक म्यूजियम था जो एक सुरेश जोशी करके एक थे जो बहुत भाग दौड़ करके वहां पर वो म्यूजियम

0: म्यूजियम उन्होंने तैयार किया था, जमा किया था, पर फंड्स नहीं थे, इसलिए वो म्यूजियम जो था वो अभी बंद शायद करना पड़े इस कगार पर आ चुका था। और गिरीश कुलकर्णी जो है अहमदनगर के स्नेहालय के, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ था जो महाराष्ट्र टाइम्स में आया था, बॉम्बे में पापा ने पढ़ा और उन्हें याद आया कि ये सुरेश जोशी जब वो छोटे थे तो अगर कुछ मिला, उस वक्त मोड़ी लिपि में सारे खत लिखे जाते थे, उसमें मिला तो आकर दादाजी के साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे, बातें करते थे, तो पापा से रहा नहीं गया, वो उन्होंने गाड़ी निकाली, वो अहमदनगर पहुंच गए।
1: गजब।
0: क्योंकि सुरेश जी के पास ये नहीं था, फोन नहीं था, तो बात कैसे हो, तो वो अहमदनगर पहुंच गए। वो गए वहां पर उनके घर पर, उनसे मिले और कहा क्या कर सकते हैं हम, उनका कुछ फंड्स तो चाहिए जो हमें रेज करने ही पड़ेंगे। तो पापा ने कहा ठीक है। उस वक्त स्टार नाइट का ट्रेंड काफी चल रहा था, तो उन्होंने अहमदनगर में, बिकॉज पापा का कहना था कि ये हमारे शहर की धरोहर है और इसके लिए हमारे शहर ने ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: क्या बात है।
0: तो इसलिए उन्होंने उस वक्त गोविंदा असरानी जी, जॉनी लीवर, ये सारे जो बड़े बड़े कलाकार थे उनको लेकर एक स्टार नाइट अरेंज की अहमदनगर में, जहां पर रिलीज की डेट पे फिल्में भी रिलीज नहीं होती थी उस समय, लेट रिलीज होती थी। उन्होंने एक स्टार नाइट अरेंज की जिस एक रात में, ये मैं 97 की बात कर रही हूं, एक रात में 26 लाख रुपया खड़ा किया गया फॉर द म्यूजियम, और ये बहुत बड़ी बात है। और आज भी वो म्यूजियम खड़ा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, बिकॉज लोगों को अभी उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया है। तो कई बार ऐसे होता है, पापा भी ये कहते थे कि लोग भूल जाते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, महत्व किस चीज को देना चाहिए। तो हम अपनी जिंदगी तो जीते हैं, लेकिन जो ये अपना हमारा इतिहास है जिसमें से हम आगे आए हैं, हमारे जो पूर्वज है जिनके कंधों पर हम खड़े हैं आज, उनका रिस्पेक्ट रखना, उनकी यादें ताजी रखना, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है।
1: क्या बात है।
0: तो इस तरह से वो करते रहे हैं और हमेशा, मैंने ये मेरे किसी आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, मुझे याद है कि जब भी कोई आता था, जैसे मैंने कहा कि हमारा घर तो खुला ही था सबके लिए, तो जब भी कोई आता था तो अच्छा क्या हुआ, क्या चाहिए, अच्छा आप ये संस्था चलाते हो ठीक है, क्या आपको मदद की जरूरत है, तो कुछ परमिशन चाहिए, तो सीएम साहब को फोन लगा लिया, दिल्ली में फोन लगा लिया, कुछ फाइनेंशियल चाहिए, अच्छा चलो, तो मम्मी को बोल दिया अच्छा नंदा चेकबुक लेके आ जाओ, चेक निकाल के दे दिया। और इसमें मुझे मजे की बात ये लगती है कि मम्मी ने भी कभी उन्हें पूछा नहीं कि आप अभी इन्हें क्यों दे रहे हो, 10,000 रुपए इन्हें किस लिए दिए। इट वॉज वेरी क्लियर कि उन्हें देना है, उन्होंने दे दिए, खत्म।
1: वाह वाह।
0: तो ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी ये बहुत जबरदस्त थी, और उन दोनों की वैल्यू सिस्टम सेम थी। जैसा मैंने कहा कि वो एक ही स्कूल में बड़े हुए, एक ही गांव में, उनके पिताजी आपस में अच्छे दोस्त थे, तो उनकी जो मूल्य, जिसे हम कहते हैं मूल स्वभाव में जो वैल्यूज थी, वो बिल्कुल एक जैसी थी। और आई थिंक इसी की वजह से वो एक दूसरे को इतने अच्छे से साथ भी दे पाए। इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग। और ऐसे घर में बड़ा होना ये नसीब वालों का ही काम है, तो आई एम वेरी लकी कि इस घर में।
1: बिल्कुल। चूंकि उनके सामाजिक सरोकारों की बात चल रही है, तो यहाँ मुझे होली वाली एक घटना का जिक्र जरूरी लगता है।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: वो बताए।
0: उस समय मैं पूना में थी, मेरी शादी रिसेंटली हुई थी, और मुझे वहां पर फोन आया, प्रसन्न जोशी करके कॉरेस्पॉन्डेंट है मराठी में बहुत बड़े, उनका फोन आया और उन्होंने पूछा रीमा ये सच है जो हम सुन रहे हैं? मैंने कहा क्या? मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है। तो आपके पापा पर किसी ने हमला किया है? ऐसे क्या, मुझे पता ही नहीं था। और बात यह हुई थी कि उस समय नरेंद्र दाभोलकर, डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर लागू, इन सबके लिए काफी सारी धमकियां आने लगी थी, राइट? सो मुझे ऐसा लगा कि शायद वैसा ही कुछ हुआ हो, वी डोंट नो। मैंने कॉल किया मम्मी को कि क्या हुआ है ये वो। मम्मी का अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। तो फिर मैंने मेरी बहन को कॉल किया, मेरी बहन बॉम्बे में ही, पास ही में उसका घर है, तो वो वहीं पर थी। तो उसने कहा इतना कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम से बम्बई आ जाओ, फिर हम बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर मैं बॉम्बे पहुंची, तब पता चला कि हमारी जो सोसाइटी है उस समय 2012-13 की ये बात है, बहुत बुरी तरह से सूखा पड़ा हुआ था महाराष्ट्र में, दो दो साल तक बारिश नहीं हुई थी, तो जो किसान थे वो अनाज नहीं उगा पा रहे थे, और पानी हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए पानी आ रहा था।

0: कितना कम पानी लोगों को मिल रहा था छोटे गांव में, छोटे शहरों में। और यहाँ पर बंबई में, बिकॉज हम बंबई है तो यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं होती। पानी 24 घंटे होता है, बिजली होती है 24 घंटे। तो हमारे सामने ही जो एक बिल्डिंग है उसके आंगन में उन्होंने उस वक्त होली के लिए रेन डांस का माहौल तैयार किया था। तो 8-10 ऐसे शावर कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे चल रहे थे वहां पर। और उस समय ऐसा था कि उस समय मैंने भी एक डॉक्यूमेंट्री करी थी सातारा डिस्ट्रिक्ट में, जो कैटल कैंप्स लगे हुए थे कि किसानों के पास पानी नहीं है, इसलिए वो उनके जानवरों को पानी नहीं पिला पा रहे, इसलिए वो कैटल कैंप्स में रह रहे हैं। पापा ने भी वो कैंप विजिट किया हुआ था। तो इस तरह से हम लोग बहुत ज्यादा उस समय उस चीज के बारे में अवेयर थे। और मीडिया से कॉल आया, बिकॉज सारे कलाकारों ने उस वक्त और महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा था कि सूखी होली खेलनी है ये साल, पानी नहीं जाया करना है। बिकॉज अलग अलग चैनल्स के रिएक्शंस के लिए फोन आते थे, वैसा फोन आया पापा को कि आपका क्या कहना है सूखी होली। तो पापा ने, आप कैसी सूखी होली, मैं अभी देख रहा हूं मेरे सामने 3 घंटे से 10 शावर चालू है जिसके नीचे लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, सब लोग होली खेल रहे हैं, मजे चल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर किसी को कुछ पड़ी नहीं है महाराष्ट्र के किसानों का क्या होने वाला है। और ये पापा ने कहने के बाद इमीडिएटली ओबी वैन्स वहां पहुंची और उन्होंने वो कवर किया। तो पापा बिल्डिंग में से नीचे उतरे और एक रिपोर्टर उनके साथ था जो वो बातें रिकॉर्ड कर रहा था और पापा दिखा रहे थे देखो किस तरह से ये चल रहा है। वो बिल्डिंग के जो लोग थे उन्हें ये समझ में आया कि अरे ये कवर कर रहे हैं, न्यूज कवर हो रही है। तो उस वक्त वो सब दौड़ के हमारी बिल्डिंग में घुसे और उन्होंने वो कैमरा खींचा वो कॉरेस्पॉन्डेंट से। उस धक्का मुक्की में पापा को थोड़ा सा लग गया धक्का, उसका न्यूज में ऐसा हुआ कि उन पर हमला हुआ है। पर खैर वो बहुत दिनों तक वो बात चली, आगे उसकी कोर्ट केस हुई, सब हुआ, पर उनसे वो रहा नहीं गया। और पापा वैसे ही थे, वो झूठ नहीं बोल पाते थे, तो जो है वो बात वो मुंह पर कह के ये हो जाते थे। तो इसलिए उन्होंने वो उसको दिखाया देखो पर ये क्या हो रहा है, इस तरह से उनका चल रहा था वो किस्सा, इस तरह से कुछ हुआ था।
1: और किसानों के प्रति उनका जो सरोकार था वो यहाँ नजर आता है।
0: हाँ, और क्योंकि मेरी दादी जो थी वो खुद एक किसान की बेटी थी, पापा के जो मामा वगैरह थे, मामा नाना, वो सब बहुत ही गरीब किसान थे। इसलिए जब भी छुट्टी होती थी तो ये छोटे गांव में जाते थे, क्योंकि उस समय तो ऐसा था ना नानी के घर जाना है, तो तब ये खेतों में घूमते थे, तब ये रहते थे। तो किसान की जिंदगी क्या होती है
1: वो उनको पता था,
0: बहुत करीब से देखी हुई थी।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए उनकी वो जो तड़प थी कि हमारे किसान किस तरह से सफर कर रहे हैं, किस तरह से उनकी जिंदगी पानी की कमी की वजह से खराब हो रही है, ये बहुत स्ट्रांगली उन्हें लगता था।
1: बिल्कुल। यहाँ एक गाना सुनते हैं, दो आंखें बारा हाथ का। हाँ। ए मालिक तेरे बंदे हम।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। ये बातचीत जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। इस कार्यक्रम में संपादन नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए युवा साथियों का अपना पसंदीदा कार्यक्रम यू वर्ल्ड।

युवाणी सुनने वाले सभी युवा साथियों को क्षितिज शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव का नाम भारतीय राजनीति के इतिहास में अत्यंत सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वे एक दूरदर्शी राजनेता, विद्वान, कुशल प्रशासक, बहुभाषाविद और महान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने ऐसे समय में देश का नेतृत्व संभाला जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। अपनी दूरदृष्टि, दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रभावी नीतियों के माध्यम से उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से नई दिशा दी। इसी कारण उन्हें

भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रमुख सूत्रधार माना जाता है। साथियों, हर वर्ष 28 जून को उनकी जयंती पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाती है। इस अवसर पर उनके जीवन, व्यक्तित्व, राजनीतिक योगदान और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को याद किया जाता है। उनकी जयंती केवल एक महान नेता को श्रद्धांजलि देने का अवसर नहीं है, बल्कि उनके आदर्शों और राष्ट्र के प्रति समर्पण से प्रेरणा लेने का दिन भी है। तो साथियों, आइए जानते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव था। उनका जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना राज्य के करीमनगर जिले के वंगारा गांव में हुआ था। उनका परिवार साधारण कृषक परिवार था। बचपन से ही वे बहुत मेधावी और अध्ययनशील थे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में प्राप्त की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न संस्थानों में अध्ययन किया। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और स्वतंत्रता आंदोलन से भी प्रेरित हुए। विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने समाज सेवा और राष्ट्रीय चेतना के कार्यों में सक्रिय भाग लेना प्रारंभ कर दिया। वे हिंदी, तेलुगु, संस्कृत, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच और कई अन्य भाषाओं के जानकार थे। उनकी विद्वता और भाषाई क्षमता उन्हें अन्य नेताओं से अलग पहचान दिलाती थी। दोस्तों, बात करें उनके राजनीतिक जीवन की, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पीवी नरसिम्हा राव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और अपने कार्यकाल में शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनेक सुधार किए। बाद में उन्होंने केंद्र सरकार में विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का सफलतापूर्वक संचालन किया। उनकी प्रशासनिक क्षमता और शांत स्वभाव के कारण वे सभी दलों में सम्मानित नेता माने जाते थे। तो साथियों, क्या था प्रधानमंत्री के रूप में उनका योगदान और अलग अलग क्षेत्रों में भी उनके योगदान के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक अल्पविराम और आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में।

गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत था नदी श्रवण का। साथियों, ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव के बारे में। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनके योगदान की अगर बात करें तो वो बहुत ही अतुल्य योगदान उन्होंने भारत को दिया। वर्ष 1991 में भारत एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में था, महंगाई बढ़ रही थी और आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ गई थी। ऐसे कठिन समय में पीवी नरसिम्हा राव ने भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला। उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने अनेक ऐतिहासिक आर्थिक सुधार लागू किए। उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाया। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार हुआ। साथियों, उनके द्वारा किए गए सुधारों के प्रमुख उद्देश्य थे उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण को कम करना, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र को अधिक अवसर प्रदान करना, व्यापार और उद्योग को सरल बनाना, आर्थिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और इन नीतियों ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भारत जिस आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर है उसमें पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। साथियों, पीवी नरसिम्हा राव ने भारत की विदेश नीति को भी नई दिशा प्रदान की। उन्होंने अनेक देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाया। उनके कार्यकाल में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से लुक ईस्ट नीति की शुरुआत की गई। उन्होंने अमेरिका, रूस, यूरोप और एशियाई देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए। उनके प्रयासों से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत हुई और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। साथियों, केवल प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने विदेशी देशों के साथ संबंध बनाने तक ही अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं किया बल्कि शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। पीवी नरसिम्हा राव केवल राजनेता ही नहीं बल्कि स्वयं एक उत्कृष्ट साहित्यकार भी। उन्हें साहित्य, दर्शन, इतिहास और संस्कृति में गहरी रुचि। उन्होंने कई पुस्तकों का लेखन और अनुवाद किया। उनका प्रसिद्ध उपन्यास दी इनसाइडर भारतीय राजनीति की जटिलताओं को समझने में महत्वपूर्ण माना जाता है। वे भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के समर्थक। उनका मानना था कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला होती है, इसीलिए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया। पद्म पीवी नरसिम्हा राव को बेहद शांत, गंभीर और दूरदर्शी प्रशासक माना जाता है। वे निर्णय लेने में धैर्य रखते थे और परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन करने के बाद ही कोई ठोस कदम उठाते थे। राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अल्पमत सरकार को सफलतापूर्वक 5 साल तक चलाया, जो उनकी नेतृत्व क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनकी कार्यशैली में अनुशासन, सादगी और ईमानदारी का विशेष स्थान था। वे अनावश्यक प्रचार से दूर रहते थे और अपने कार्यों के माध्यम से अपनी पहचान बनाना पसंद करते थे। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 28 जून यानी आज के दिन उनकी जयंती पूरे देश में मनाई जाती है। इस अवसर पर विभिन्न सरकारी संस्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों द्वारा उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में उनके जीवन पर भाषण, निबंध लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिताएँ और संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। उनके आर्थिक सुधारों, प्रशासनिक दृष्टिकोण और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर चर्चा की जाती है। दोस्तों, ये दिवस विद्यार्थियों और युवाओं को ये संदेश देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, दूरदृष्टि और सही निर्णयों के माध्यम से बड़े परिवर्तन संभव है। साथियों, पीवी नरसिम्हा राव का पूरा जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में

शिक्षा को सर्वोच्च महत्व दिया। वे निरंतर अध्ययन करते रहे और जीवन भर नई नई बातें सीखते रहे। उनके जीवन से हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको कई प्रेरणाएं मिलती है, जैसे कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना, शिक्षा और ज्ञान को जीवन का आधार बनाना, राष्ट्रहित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखना, ईमानदारी और सादगी के साथ काम करना, दूरदर्शी सोच विकसित करना और नई चुनौतियों को अवसर में बदलना। तो साथियों, ये सब प्रेरणाएं लेकर हम जो आज का युवा पीढ़ी है वो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और आने वाले भविष्य में अपना और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। साथियों, आज भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है और इसका महत्वपूर्ण आधार 1991 में प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधार हैं। उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, सेवा क्षेत्र, विदेशी निवेश और वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भागीदारी के पीछे पीवी नरसिम्हा राव की दूरदर्शी नीतियों का बड़ा योगदान माना जाता है। उनकी नीतियों ने भारत को आत्मविश्वास के साथ विश्व मंच पर आगे बढ़ने का अवसर दिया। आज भी अर्थशास्त्री और नीति निर्माता उनके निर्णयों का अध्ययन करते हैं और उन्हें आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नेताओं में गिनते हैं। साथियों, पीवी नरसिम्हा राव भारतीय राजनीति के ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने ज्ञान, दूरदृष्टि और नेतृत्व क्षमता से देश को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने आर्थिक संकट से जूझ रहे भारत को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया और भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव रखी। वे एक सफल प्रशासक, विद्वान, साहित्यकार और राष्ट्रभक्त थे। उनकी जयंती हमें ये स्मरण कराती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो कठिन समय में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर साहसिक और दूरदर्शी निर्णय ले। उनके आदर्श, कार्य और विचार आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करते रहे। भारतीय का कर्तव्य है कि वे उनके योगदान को याद रखें और राष्ट्र निर्माण में अपना सकारात्मक योगदान देने का संकल्प लें। तो साथियों, आइए आपको फिर से ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं अगला गीत।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेवफा सनम से की आवाज़ थी नितिन मुकेश की, गीत के वो लिखे थे योगेश ने और संगीत था निखिल विनय का। दोस्तों गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप, अधिक तापमान और पसीने की समस्या लेकर आता है और इस मौसम में स्वास्थ्य और आराम का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। गर्मियों के मौसम में सही परिधान चुनना न केवल हमारे आरामदायक शेड्यूल के लिए आवश्यक है बल्कि कई स्वास्थ्य समस्याओं जैसे घमोरियाँ, त्वचा की एलर्जी और अत्यधिक पसीने से भी बचाव करता है। इसीलिए मौसम के अनुसार कपड़ों का चयन करना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हल्के, ढीले और सूती वस्त्र गर्मी के मौसम के

लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। गर्मियों में शरीर का तापमान बढ़ जाता है और अगर हम मोटे और सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं तो शरीर में अधिक गर्मी महसूस होती है और पसीना भी अधिक आता है। इसके विपरीत हल्के और सूती कपड़े हवा का संचार बनाए रखते हैं जिससे शरीर को ठंडक प्राप्त होती है और आराम का अनुभव होता है। सही परिधान हमारे स्वास्थ्य, हमारे आत्मविश्वास और हमारी कार्य क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। इसीलिए दोस्तों गर्मियों के मौसम में सही वस्त्रों का चयन करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार के कपड़े हमें ऐसे मौसम में पहनने चाहिए। साथियों गर्मियों के लिए सबसे अच्छे कपड़े सूती यानी कॉटन के माने जाते हैं। सूती कपड़ा पसीने को आसानी से सोख लेता है और शरीर को ठंडा बनाए रखता है। यह त्वचा के लिए भी सुरक्षित होता है और एलर्जी की संभावना इसमें कम होती है। सूती कुर्ता, शर्ट, टी शर्ट, सलवार सूट, साड़ी और पायजामा गर्मियों के लिए बेहद ही अच्छे विकल्प माने जाते हैं। साथ ही दोस्तों हल्के रंगों का भी अपना महत्व होता है। गर्मी के मौसम में सफ़ेद, क्रीम, हल्का नीला, हल्का गुलाबी, आसमानी और हल्का हरा जैसे रंगों के कपड़े हमें पहनने चाहिए। हल्के रंग सूर्य की किरणों को कम अवशोषित करते हैं जिससे शरीर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। इसके विपरीत काले, गहरे नीले और भूरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी सोखते हैं, इसीलिए जितना हो सके इनका प्रयोग हमें कम करना चाहिए। साथियों गर्मियों में बहुत अधिक तंग कपड़े पहनने से शरीर में हवा का प्रवाह कम हो जाता है और पसीना अधिक आता है। ढीले और आरामदायक कपड़े शरीर को पर्याप्त वायु प्रदान करते हैं और चलने फिरने में भी सुविधा देते हैं। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों को ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जो कि आरामदायक हो। साथ ही हमें पॉलिएस्टर, नायलॉन और दूसरे सिंथेटिक कपड़े गर्मियों में पहनने से बचना है क्योंकि ऐसे कपड़े अधिक गर्मी उत्पन्न करते हैं और पसीना रोकते हैं और इससे त्वचा संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसीलिए इस मौसम में प्राकृतिक रेशों से बने कपड़ों को प्राथमिकता देना अधिक लाभदायक होता है। तो साथियों धूप से बचाव के लिए कौन से वस्त्र हमें पहनने चाहिए, साथ ही बच्चों और विद्यार्थियों को किस प्रकार के कपड़ों का चयन करना चाहिए, इन सब पर हम ये चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। अभी आपको ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुने थे फिल्म डार्क द फायर से गीत आवाज़ थी कुमार शानू और अनुराधा की। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत था राजेश रोशन का। साथियों, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे गर्मियों के अनुकूल परिधान चुनने के बारे में। जी हाँ साथियों, तेज धूप में बाहर निकलते समय पूरी बाहों वाले हल्के कपड़े पहनना लाभदायक होता है। इसके साथ टोपी, कैप, सूती दुपट्टा या स्कार्फ का उपयोग करना चाहिए, जिससे सिर और चेहरे को धूप से बचाया जा सके। धूप का चश्मा पहनने से आंखों की सुरक्षा भी होती है। साथियों, बच्चों को गर्मियों में हल्के सूती और आरामदायक कपड़े पहनाने चाहिए। विद्यालय जाते समय साफ सुथरी वर्दी के साथ टोपी या छाता उपयोगी हो सकता है। खेल कूद के समय ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो पसीना आसानी से सोख ले और शरीर को ठंडा रखे। साथियों, गर्मी में अधिक पसीना आने के कारण कपड़ों को नियमित रूप से धोना भी आवश्यक है। साफ और सूखे कपड़े पहनने से त्वचा संक्रमण और दुर्गंध जैसी समस्याओं से भी बचाव होता है।

प्रतिदिन कपड़े बदलने की आदत भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो साथियों, गर्मियों में अगर हम उपयुक्त परिधान चुनते हैं तो उससे हमें कई लाभ होते हैं, जैसे हमारे शरीर को ठंडक और आराम मिलता है, पसीना आसानी से सूख जाता है और त्वचा संबंधी रोगों का खतरा भी कम हो जाता है। धूप के दुष्प्रभाव से भी हम बच जाते हैं और हमारी कार्य करने की क्षमता और आत्मविश्वास भी बढ़ता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में ताजगी भी बनी रहती है। तो इसलिए दोस्तों, गर्मियों के इस मौसम में सही परिधान का चयन केवल फैशन का विषय नहीं बल्कि स्वास्थ्य और सुविधा से भी जुड़ा हुआ है। सूती हल्के रंगों वाले और ढीले कपड़े शरीर को आराम प्रदान करते हैं और गर्मी के दुष्प्रभावों से बचाते हैं। इसके साथ ही स्वच्छता, धूप से बचाव और मौसम के अनुसार कपड़ों का चयन हमें स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो गर्मियों में ऐसे परिधान चुने जो आरामदायक, स्वास्थ्यवर्धक और मौसम के अनुकूल। यही समझदारी हमें स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न जीवन की ओर ले जाती है। तो साथियों, अभी वक्त है फिर से मनोरंजन का। आइए आपको ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे उदित और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम था धड़कन। गीत के बोल थे समीर के और संगीत था नवीन श्रवण का। साथियों आइए बात करते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। दोस्तों जल जीवन का आधार, मनुष्यों पशु पक्षी और समस्त जीव जगत के अस्तित्व के लिए स्वच्छ जल अत्यंत आवश्यक। भारत के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक लोगों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। आज भी कई जगह पर जल की समस्या ज्यों की त्यों बनी है और इसी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना और जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना है। इसके साथ ही जल स्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भूजल स्तर में सुधार और जल के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना भी मिशन का प्रमुख लक्ष्य है। ये योजना लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, जल जनित बीमारियों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। साथियों आइए जानते हैं मिशन की प्रमुख विशेषताएं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांवों में पाइपलाइन बिछाकर प्रत्येक घर तक नल से जल पहुंचाने का कार्य किया जाता है। जल की गुणवत्ता की नियमित जांच की व्यवस्था की जाती है ताकि

लोगों को सुरक्षित पेयजल मिल सके। इस योजना में ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे जल आपूर्ति व्यवस्था का बेहतर संचालन और रखरखाव सुनिश्चित हो सके। केवल जल उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। वर्षा जल संचयन, तालाबों और कुओं का संरक्षण, वृक्षारोपण और जल का सीमित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग जल जीवन मिशन की भावना को मजबूत बनाते हैं। अगर हम आज जल की बचत नहीं करेंगे तो भविष्य में जल संकट और अधिक गंभीर हो सकता है। साथियों, जल जीवन मिशन के अनेक सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभ। स्वच्छ पेयजल मिलने से जल जनित रोगों में कमी आती है और लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को दूर दराज से पानी लाने में लगने वाले समय और श्रम से राहत मिलती है। बचा हुआ समय शिक्षा, रोजगार और अन्य उपयोगी कार्यों में लगाया जा सकता है। इससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है और सामाजिक विकास को भी गति मिलती है। साथियों, अगर हम बात करें विद्यार्थियों की भूमिका की, तो विद्यार्थी जल संरक्षण के संदेश को समाज तक पहुंचाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे घर और विद्यालय में पानी की बर्बादी रोक सकते हैं, वर्षा जल संचयन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं और पानी बचाने की आदत को विकसित कर सकते हैं। छोटी छोटी ये पहले भविष्य में बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं। इसीलिए साथियों, जल जीवन मिशन केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के साथ साथ जल संरक्षण को संस्कृति को बढ़ावा देना भी है। यदि सरकार और नागरिक मिलकर जल का संरक्षण करें और उसका जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करें, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए आज भी पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सकता है। इसीलिए हमें जल का सम्मान करना चाहिए और उसकी एक एक बूंद का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जल है तो कल है, और यही संदेश अपनाते हुए हमें जीवन को आगे बढ़ना चाहिए। तो साथियों, अभी फिर से वक्त हो चला है मनोरंजन का। आइए आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं अगला गीत।

हूँ और अलका याग्निक की आवाज़ ने की फिल्म का नाम था हाँ मैंने भी प्यार किया। गीत के बोल लिखे थे समी ने और संगीत था नदीम श्रवण का। साथियों, आज के इस आधुनिक युग में फैशन, सोशल मीडिया और विज्ञापनों का प्रभाव लोगों के जीवन पर लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेष रूप से युवाओं में महंगे ब्रांड के कपड़े, जूते, मोबाइल और अन्य वस्तुएं खरीदने की एक होड़ सी दिखती है। कई बार लोग अपनी वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए ब्रांडेड वस्तुओं का उपयोग करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके कपड़ों या ब्रांड से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व, व्यवहार, ज्ञान, ईमानदारी और उसके अच्छे कर्मों से बनती है। इसीलिए साथियों, हमें ब्रांड नहीं पहचान बनना चाहिए और इसी संदेश को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि साथियों, ब्रांड किसी वस्तु, कंपनी या उत्पाद का नाम होता है, जबकि पहचान किसी व्यक्ति के चरित्र, गुणों और कार्यों से होती है। महंगे कपड़े पहन लेने या महंगी मोबाइल रखने से कोई व्यक्ति महान नहीं होता। समाज में वही व्यक्ति सम्मान पाता है जो अपने व्यवहार, मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी से दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। साथियों, मनुष्य का व्यक्तित्व ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। विनम्रता, अनुशासन, समय का सम्मान, सकारात्मक सोच और दूसरों के प्रति आदर का भाव किसी भी महंगे ब्रांड से अधिक मूल्यवान होता है। लोग किसी व्यक्ति को उसके पहनावे से कुछ समय तक याद रख सकते हैं, लेकिन उसके अच्छे व्यवहार और कार्यों को जीवन भर याद रखते हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के कारण युवाओं पर फैशन और ब्रांड का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया है। कई विद्यार्थी महंगे कपड़े और सामान खरीदने की इच्छा रखते हैं, जिससे कभी कभी परिवार पर आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है। इसके बजाय युवाओं को अपनी शिक्षा, कौशल, प्रतिभा और चरित्र के विकास पर ध्यान देना चाहिए। एक योग्य, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति स्वयं अपनी अलग पहचान बना लेता है, क्योंकि साथियों, भारत की संस्कृति सादगी और उच्च विचारों पर ही आधारित है। इतिहास में ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने साधारण जीवन जीकर असाधारण काम किए। उनकी पहचान उनके ज्ञान, सेवा और नेतृत्व से बनी, न कि उनके वस्त्रों या बाहरी दिखावे से। साथियों, सादगी मनुष्य को विनम्र बनाती है और उसे वास्तविक जीवन मूल्यों से जोड़ती है, और समाज में वही व्यक्ति सम्मानित होता है जो अपने कार्यों से दूसरों का विश्वास जीतता है। ईमानदारी, परिश्रम, सहयोग, अनुशासन और सेवा की भावना किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है। तो इसीलिए हमें जीवन में हमेशा सादगी अपनाते हुए अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें जीवन में पहचान बनानी है, ना कि ब्रांड बनना है। तो साथियों, इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने दोस्त क्षितिज को दीजिए इजाज़त।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारी सांझ सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और 9 बजे इवनिंग।

रात्रि 11 बजे 14 मिनट हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम धीरे करेंगे हमारे दिल्ली के। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थान में प्रादेशिक समाचार।

इन्हें हम रिले करेंगे हमारे जयपुर से। अब से कुछ ही देर में यानी शाम के 6:05 पर श्रोता सुनेंगे रामचरित मानस। आज हम श्रोताओं को सुनवाएंगे रामचरित मानस का क्रमांक 1।

सात बजकर 30 मिनट पर छोटा सुनिए राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे विकास यात्रा कार्यक्रम में आज का विषय है अमृत सरोवर योजना। प्रस्तुति शरद शर्मा की, निर्देशन रामजी लाल मीणा। आठ बजकर 30 मिनट पर फिल्म संगीत कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे जय जवान।

रात्रि 10 बजे छोटा हिंदी रविवार सत्रीय संगीत सम्मेलन, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारी शांति सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, लीजिए सुनिए रामचरितमानस। आज हम श्रोताओं को सुनवा रहे हैं रामचरितमानस का क्रमांक 110 पर है सुरेश वाडकर का।

अगवानी करने वालों को अयोध्या से आई बारात जब जनकपुर के निकट दिखाई दी तो हृदय में उमड़ते आनंद से उनके शरीर रोमांचित हो उठे। धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। राजा जनक ने बारातियों के लिए दूध, ठंडे शरबत, जल आदि तथा भांति भांति के पकवानों से सजे थाल परात भिजवाए। वस्त्राभूषणों तथा बहुमूल्य मणिमाणिकों से लदे पशु

पक्षी घोड़े हाथी भी भिजवाए गए। अगवानी करने वाले और बाराती नगर के बाहर इस प्रकार मिल रहे हैं मानो आनंद के दो सागरों का मिलन हो रहा हो। देव सुंदरियां फूलों की वर्षा करती हुई मंगलाचार कर रही हैं। देवता आनंद मग्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। बारात को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सभी सुविधाओं वाले जनवासे ले जाया गया। बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतपुर में सीता जी ने मन ही मन सभी सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें बारात के स्वागत सत्कार के लिए भेजा।

मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए।

जाय सब दीना, भय बकशीस जाच कनी दीना। करी पूजा मान्यता बड़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। बसन विचित्र पावड़े परही, देखी धन दुधन मधु परिहरही। अति सुंदर दीने जनवासा, जन सब कहूँ सब भांति सुपासा। जानी सिया बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमिरी सब सिद्धि।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 6:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना।

0: धन निर्बल धार आगे शीश झुकावे
1: आगे शीश झुकावे।
0: भूत पिशाच निकट नहीं आवे जो थाने नित ध्यावे।

0: पवन पुत्र है राम दूत, थारे सारी दुनिया आवे,
1: थारे सारी दुनिया आवे,
0: थारा दर्शन करे, चाव से महिमा थारी गावे,
1: महिमा थारी गावे,
0: ओ नैया मारी, ओ नैया मारी पार लगाया सरसी, लगाया सरसी, लगाया सरसी, हमें भगता की पीड़ मिटाया सरसी।

करके मुझे पर मुझे अपनी शरण में ले लेना। मैं दास तुम्हारा जन्म से हूँ, मैं दास तुम्हारा।

0: अभी आप सुन रहे थे वक्त गीतों का कार्यक्रम वंदना। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: इस समय शाम के 6:29 हो रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: हुई। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, बाघ संरक्षण में राज्यों के अनुभवों का आदान प्रदान भविष्य की संरक्षण रणनीतियों को मजबूत करेगा। और प्रदेश में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन आज 59,000 से अधिक बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि आज देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि योग दिवस को दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने पिछले दिनों पश्चिम एशिया में बने युद्ध के हालात के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचे, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचे, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति बीमा का उल्लेख करते हुए योजनाओं की प्रगति और इनके लाभों की जानकारी दूसरे लोगों तक साझा करने की अपील की। श्री मोदी ने AI टूल्स को देश की संस्कृति और भारतीय ज्ञान तथा भाषाओं के संरक्षण के काम में लिए जाने पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के कई भागों में गांवों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने आगामी महीनों में गणेश उत्सव की तैयारियों में लगे मूर्तिकारों से मिट्टी से बनी मूर्तियां बनाने और खरीदारों से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां नहीं खरीदने की अपील भी की। मन की बात कार्यक्रम सुनने को लेकर प्रदेश भर में लोगों में खासा उत्साह रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अपने निवास पर सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के साथ ये कार्यक्रम सुना। वहीं पाली, बाड़मेर और जैसलमेर सहित विभिन्न स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना गया। इस दौरान जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के तहत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: उन्होंने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को और मजबूत करने और गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से सुझाव और नए विचार आमंत्रित किए। इस अवसर पर श्री चौहान ने ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल जोखिम आधारित और अनुपालन लेखा परीक्षाओं सहित

0: आंतरिक लेखा परीक्षाओं के संपूर्ण प्रबंधन के लिए एकीकृत डिजिटल मंच है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बालोतरा के पचपदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर आज रिफाइनरी का अवलोकन किया। श्री शर्मा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जोधपुर में एयरपोर्ट के नवीन टर्मिनल का मुआयना भी किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी आगामी 4 जुलाई को इस नए टर्मिनल का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों के तहत बालोतरा जिले में 7 दिन का विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। अभियान के पहले दिन आज प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत और विधायक अरुण चौधरी सहित जनप्रतिनिधियों तथा विभागीय अधिकारियों ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सरिस्का बाघ परियोजना आज दुनिया की सफल बाघ पुनर्स्थापन कार्यक्रमों में गिनी जाती है। वर्तमान में यहां बाघों की संख्या बढ़कर 56 हो चुकी है। आज अलवर के सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापन अवसर और चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि ये कार्यशाला ऐसे समय आयोजित हुई है जब सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापना ने 18 साल पूरे कर लिए हैं। श्री यादव ने कहा कि बाघ संरक्षण में राज्यों के अनुभवों का आदान प्रदान भविष्य की संरक्षण रणनीतियों को मजबूत करेगा। कार्यशाला में वन मंत्री संजय शर्मा, देश भर के बाघ संरक्षण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, वन अधिकारी और विभिन्न राज्यों के प्रधान वन्य जीव प्रतिपालक उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लक्ष्य सरकारी प्रयासों के साथ जन भागीदारी से संभव है। श्री बिरला आज कोटा के दादाबाड़ी क्षेत्र में रेंडल पार्क में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक नागरिक अपने घर, गली, पार्क और मोहल्ले को स्वच्छ रखने के साथ पौधरोपण और उनके संरक्षण का संकल्प ले तो कोटा सबसे स्वच्छ और हरित शहरों में अपनी अलग पहचान बना सकता है। उन्होंने लोगों से पर्यावरण के अनुकूल जीवनचर्या अपनाने और पौधरोपण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया।
1: पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली लोगों की हो और इसको हम जन आंदोलन बनाए। मुझे आशा है कि कोटा बूंदी की जनता अपनी दिनचर्या के अंदर भी पर्यावरण के अनुरूप दिनचर्या करेगी और सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम लगाकर उस पेड़ को संरक्षण भी करेंगे, उसको बड़ा भी करेंगे और अपने शहर, गली, गांव को स्वच्छ रखने के लिए संकल्प भी करेंगे।
0: लोकसभा अध्यक्ष ने रेंडल पार्क में उपलब्ध खेल सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोटा में आधुनिक खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए युवाओं में जागरूकता बढ़ रही है। इसी कड़ी में पाली जिले के सुमेरपुर में मॉनसून के आगमन से पहले युवाओं ने बड़ी संख्या में सीड बॉल्स तैयार की है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: इन सीड बॉल्स को मानसून के दौरान अरावली की पहाड़ियों और जंगलों में डाला जाएगा। बारिश के बाद सीड पौधों का रूप लेंगे। सीड बॉल्स में अरावली क्षेत्र में पाई जाने वाली देशी प्रजातियों जामुन, हमलाकस, उमटा, खेर, देसी बबुल, गुंदा और जाल के बीजों का उपयोग किया गया है। साथ ही उपजाऊ मिट्टी और देसी खाद के मिश्रण का उपयोग किया गया है जिससे बीजों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा। युवाओं की यह पहल जंगलों के विस्तार के साथ साथ पक्षियों, वन्य जीवियों और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
0: प्रदेश सहित देश भर में आज से 3 दिन की राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जा रही है। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने निवास पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। प्रदेश भर में 59,000 से अधिक बूथों पर

0: पहले दिन ये दवा पिलाई गई। अगले दो दिन अब स्वास्थ्य कर्मी आज पोलियो की दवा से वंचित रहे बच्चों को घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। गौरतलब है कि भारत में साल 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। बीते 15 वर्षों में देश भर में कोई भी पोलियो का नया केस सामने नहीं आया है। 27 मार्च 2014 को भारत को पल्स पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र मिल चुका है। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों में फिर से कुछ कमी आई है। इस बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। उधर चूरू में दिन भर की तेज गर्मी के बाद आज शाम को बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं सिरोही और आबूराज में दिन भर बादल छाए रहे। मौसम केंद्र जयपुर ने जुलाई के पहले सप्ताह में प्रदेश के कुछ स्थानों पर प्री मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापना के 18 साल पूरे हुए। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, बाघ संरक्षण में राज्यों के अनुभवों का आदान प्रदान भविष्य की संरक्षण रणनीतियों को मजबूत करेगा। और प्रदेश में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन आज 59,000 से अधिक बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले भर में आज पल्स पोलियो राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। 3 दिन के इस अभियान में सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर भी ट्रांजिट बूथ स्थापित किए गए। आज दवा पीने से छूटे बच्चों को अगले 2 दिन घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिले भर में उत्साह पूर्वक मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य आयोजन मान क्लब फुटबॉल मैदान में रखा गया, जहां प्रभारी सचिव पीसी किशन और जिला कलेक्टर सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और आम जन ने योगाभ्यास किया। जिला न्यायालय परिसर में आयोजित योगाभ्यास तथा ध्यान शिविर में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं के साथ स्टेट बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों ने योगासन किए। इसी तरह केंद्रीय कारागार श्यालावास में भी योगाभ्यास तथा ध्यान सत्र रखा गया, जिसमें बंदियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलों की स्वास्थ्य सेवाओं का 3 दिन तक मुख्यालय के प्रभारियों के दलों द्वारा सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान दवाइयों, उपकरणों की उपलब्धता और प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक लिया गया। नशा मुक्ति दिवस पर जिले में जागरूकता कार्यक्रम रखे गए। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पुनर्वास के जरिए नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। जिले भर में इन दिनों शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए लोगों को विभिन्न योजनाओं तथा सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। शिविरों को लेकर आमजन में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। इन शिविरों में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जन प्रतिनिधि भी निगरानी और निरीक्षण कर रहे हैं। रामगढ़ पचवारा नगर पालिका में आयोजित शिविर में बरसों से मुख्य बाजार की समस्या का हाथों हाथ समाधान होने से लोगों ने राहत की सांस ली। इसी तरह बांदीकुई, बसवा, सिकराय, महवा, मंडावर और लालसोट ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में भी शिविर आयोजित किए गए। कृषि विज्ञान केंद्र दौसा में पिछले दिनों जैविक खाद से समृद्ध मृदा, आय वृद्धि और पर्यावरण संतुलन विषय पर किसान गोष्ठी रखी गई। संगोष्ठी में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को संरक्षित और उर्वरक खेती की जानकारी प्रदान की। किसानों को मृदा स्वास्थ्य सुधार, जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। जिले में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की पिछले दिनों लॉटरी निकाली गई। योजना के तहत दौसा जिले के 1300 वरिष्ठ नागरिक विभिन्न तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा करेंगे। इनमें से 1150 से अधिक को रेल और 142 को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण कर सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कार्मिकों से किसी भी आपात स्थिति में हर समय तैयार रहने को कहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति के चेक वितरित किए गए। रीनीट यूजी परीक्षा 21 जून को जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में 4000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा को सुचारू और सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए। जिला कलेक्टर ने नीट परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में मुहर्रम पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पारंपरिक आयोजन हुए। कई जगह जुलूस की शक्ल में ताजिए निकाले गए। शाम को मातमी माहौल के बीच ताजियों को करबला में सुपुर्द खाक किया गया। निर्जला एकादशी पर जिला मुख्यालय सहित जगह जगह धार्मिक गतिविधियां देखी गईं, दान पुण्य के आयोजन हुए। लोगों ने पानी शरबत और पेय पदार्थों के साथ भंडारे लगाकर पुण्य कमाया। ज्येष्ठ महीने में जिले में मौसम ने कई रंग दिखाए, कभी बरसात तो कभी तेज गर्मी ने जिलेवासियों को प्रभावित किया। इस दौरान आंधी बारिश की गतिविधियों से कई जगह नुकसान भी देखा गया। इसी के साथ दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंचा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो स्वदेशी रक्षा उत्पाद माथे ध्यान देवता भारत बत्ती हिफाजती और आत्मनिर्भर बन रियो है। केंद्रीय गांवाय विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत 2047 रा नजरिया ने साकार करण में गांवारी भूमिका ने महत्व बताया है। सरिस्का माय भाग पुनर्स्थापना रा 18 साल पूरा विया। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव कयो बाघ संरक्षण माय राज्य रे अनुभव ने साझा करणु भविष्य री संरक्षण रणनीतियां ने मजबूत करेला। और प्रदेश माय 3 दिन रा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रे पहले दिन आज 59,032 बूथा माथे 5 साल तहरा टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलाई जी। समाचार रे साथे मैं शंभू सिंह और अबे समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो है कि स्वदेशी रक्षा उत्पाद माथे ध्यान देवता भारत समुद्रों लेर आकाश ताई बत्ती हिफाजती और आत्मनिर्भर बन रियो है। आज आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी कयो के जून महीना में स्वदेशी C-295 विमान री पहली उड़ान रे साथ ही भारत विमानन हल्का में एक मोटी कामयाबी हासिल करी है। वर्णा कयो के आज देश में रोजगार रा मौका बद रिया है और आत्मनिर्भर भारत रूप संकल्प मजबूत वे रियो है।
3: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करता कहो कि योग दिवस दुनिया भर में मनाई जो ई बार वो आयोजन 2,532 ठोड़ा माथे भी हो। भारत में करोड़ों लोग योग दिवस में भागीदारी करी। श्री मोदी लारलादीना आथुणी एशिया में बनिया युद्ध रा हालात रे दौरान वारी अर्ज माथे देशवासियों रा समर्थन और सहयोग सारू आभारी जतायो।
3: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचे, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचे, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
2: श्री मोदी मारी सरकार कानी शुरू करी जी नवी सामाजिक हिफाजती योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना रो जिक्रो करता योजना री प्रगति और इनरा फायदा री जानकारी दूजा लोगों तय साझा करने री अर्ज करी। श्री मोदी एआई टूल्स ने देश री संस्कृति और भारतीय ज्ञान और भाषा रा संरक्षण रा काम लिया जावन माथे न्यारी नारी शैक्षणिक संस्थावां ने शुभकामनावां दी। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान रे तहत देश रा कई हल्का माए गांवां ने साफ सुथरा बनाया राखण सारू करी जा रही कोशिशां रो जिक्रो करियो। वणा आवता महीना माए गणेश उत्सव री तैयारियां माए लाग्या मूर्तिकारां हूं माटियों बनी मूर्तियां बनावण और खरीददारां हूं प्लास्टर ऑफ पेरिस हूं बनी मूर्तियां नी खरीदण री अरज करी। मन की बात कार्यक्रम सुनण ने लेर प्रदेश माए लोगां माए खासो उमाव नजर आयो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर माए आपरा रहवास माते सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा में चुनी जा उम्मीदवारों रे साथ है ओ कार्यक्रम सुनियो। श्री शर्मा कहो कि प्रधानमंत्री रा संबोधन आम जन ने देश में वेरिया सामाजिक सरोकारों जुड़िया नवाचारों की जानकारी उनने अपनावने की सीख मिले है। पाली बाड़मेर जैसलमेर समेत न्यारा न्यारा ठोड़ा माथे मन की बात कार्यक्रम ने भेड़ा सुनी जा इस दौरान जन नुमाइंदा और आम लोग मौजूद रिया। गांववाई विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत 2047 का नजरिया ने साकार करण में गांवारी महत्व भूमिका बताई है। वे आज नई दिल्ली में वीआर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में बोल रहा है। श्री चौहान कहो कि गांववाई विकास में तेजी लावण सारू विकसित भारत ग्रामीण योजना के तहत राज्य रा योगदान समेत 1,51,000 करोड़ रुपये बत्ती रो बंदोबस्त करी जो है।
4: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
2: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज बालोतरा रा पचपदरा माए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा तय दौरा ने लेर रिफाइनरी ने देखा। श्री शर्मा कार्यक्रम री तैयारियां ने लेर एहलकारा ने लेर मीटिंग कर रिया है। इनो पहला मुख्यमंत्री जोधपुर एयरपोर्ट रा नुआ टर्मिनल भवन रोई जाए जो लियो। इस दौरान वना मीडिया साथे बतल माए कहो कि प्रधानमंत्री आवता 4 जुलाई ने ई नुआ टर्मिनल रो लोकार्पण करेला। मुख्यमंत्री रे साथे ही इस दौरान जन नुमाइंदा और जिला प्रशासन रा एहलकार मौजूद रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 4 जुलाई ने तय बालोतरा दौरा री तैयारियां ने तहत जिला माए 7 दिन रो खास स्वच्छता अभियान शुरू हुई हो। अभियान रा पहला दिन आज प्रभारी मंत्री जोरा राम कुमावत और विधायक अरुण चौधरी समेत जन नुमाइंदा और महकमाई एहलकारा झाड़ू लगार सफाई रे प्रति जाग जगाउण रो संदेश दियो। समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर में प्रसारित किया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव कहो है कि सरिस्का बाग परियोजना आज दुनिया री कामयाब बाग पुनर्स्थापना कार्यक्रम में गिनी जावे है। अबार माय अठे बाघारी तादाद बदने 56 वेगी है। आज अलवर रा सरिस्का माय बाघ पुनर्स्थापना अवसर और चुनौतियां मुद्दा माथे राष्ट्रीय कार्यशाला माय बोलता श्री यादव कहो के आ कार्यशाला उन भगत भी है जदे सरिस्का माए बाघ पुनर्स्थापना रा 18 साल पूरा कर लिया है। श्री यादव कहो के बाघ संरक्षण माए राज्य रा अनुभवारी अदला बदली भविष्य री संरक्षण रणनीतियां ने मजबूत करेला। कार्यशाला माए वन मंत्री संजय शर्मा और देश भर रा बाघ संरक्षण विशेषज्ञ वैज्ञानिक वन अहलकार और न्यारा न्यारा राज्य रा प्रधान वन जीव प्रतिपालक मौजूद रिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहो है कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता रो लगा सरकारी कोशिशों रे साथ जन भागीदारी में पूरो वह सके है। श्री बिरला आज कोटारा दादाबाड़ी हलकारा रेंडल पार्क माए विया पौधरोपण कार्यक्रम में बोल रहा है। उन्होंने कहो कि जे हर रहवासी आपरा घर गली बगीचा और मोहल्ला ने साफ राखण रे साथ ही पौधरोपण और उनरा संरक्षण रो संकल्प लेवे तो कोटा सबू साफ और हरिया भरिया शहर माए आपरी न्यारी पहचान बना सके है। वना लोगों पर्यावरण मुजब जीवन चर्या अपनावण और पौधरोपण ने जन आंदोलन बनावण री अरजी करी।
5: पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली लोगों की हो और इसको हम जन आंदोलन बनाए। मुझे आशा है कि कोटा बूंदी की जनता अपनी दिनचर्या के अंदर भी पर्यावरण के अनुरूप दिनचर्या करेगी और सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम लगाकर उस पेड़ को संरक्षण भी करेंगे, उसको बड़ा भी करेंगे और अपने शहर गली गांव को स्वच्छ रखने के लिए संकल्प भी करेंगे।
2: लोकसभा अध्यक्ष रेंडल पार्क माए मुहैया खेल सुविधाओं रोई जाए जुलियो वना कहो के आवनवाड़ा भगत माए कोटा माए आधुनिक खेल सुविधाओं उपसा रोक कर उजाला। राजस्थान समेत देश भर में आज तीन दिन रा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। इनके तहत देश ने पोलियो मुक्त बनाया राखण साहब 5 साल तक राष्ट्रगला टावरा ने पोलियो रोधी खुराक पिलाई जावे। प्रदेश में 1 करोड़ 32 टावरा ने दवा पिलाने रो लगस राखी जो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज आपरा रहवास माते टावरा ने पोलियो की खुराक पिलार अभियान की शुरुआत करी। प्रदेश में 59,032 बूथा माते पहले दिन आ दवा पिलाई जी। आपता 2 दिन अभे स्वास्थ्य कर्मी पोलियो री दवा पीवणु बछोड़ा टावरा ने घर घर जा आ दवा पिलावेला। ध्यान जोग है के भारत माए साल 1995 माए पल्स पोलियो अभियान री शुरुआत करी जी ही। लाडला 15 साल माए देश भर माए कोई पोलियो रो नू ओके सामे नहीं आयो है। 27 मार्च 2014 ने भारत ने पल्स पोलियो मुक्त प्रमाण पानो मिल चुको है। प्रदेश माए पर्यावरण संरक्षण और हरियाली ने बढ़ावो देवन सारू नौजवाना माए जाग बदरी है। ई कड़ी माए पाली जिला सुमेरपुर माए मानसून आवणु पहला नौजवान घनी तादाद माए सीड बॉल्स तैयार कर रिया है और ब्यूरो मारा खबर नवीसू।
6: इन सीड बॉल्स को मानसून के दौरान अरावली की पहाड़ियों और जंगलों में डाला जाएगा। बारिश के बाद सीड पौधों का रूप लेंगे। सीड बॉल्स में अरावली क्षेत्र में पाई जाने वाली देसी प्रजातियों जामुन अमलातस उमटा खेर देसी बबुल गुंदा और जाल के बीजों का उपयोग किया गया है। साथ ही उपजाऊ मिट्टी और देसी खाद के मिश्रण का उपयोग किया गया है जिससे बीजों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा। युवाओं की यह पहल जंगलों के विस्तार के साथ साथ पक्षियों वन्य जीवियों और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशारद जोशी आकाशवाणी समाचार पाली।
2: और अब मौसम। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां में फिर कुछ कमी आई है। इस बीच तापमान में उतार चढ़ाव रो सिलसिलो चाले। राजधानी जयपुर समेत कई जिला में कड़ी गर्मी और उमस जिंदगी माथे असर पड़ियो है। उठीने चूरू में आखे दिन कड़ी गर्मी रे पछे आज संध्या बिरखावी जिणो लोगों ने थोड़ो आराम मिलियो। वठे सिरोही और आबूराज में आखे दिन बादल छाई जा रिया। मौसम केंद्र जयपुर जुलाई रा पहला हफ्ता में प्रदेश रा कुछ थोड़ा प्री मानसूनरी गतिविधियां में बढ़ोतरी री घनी आस जताई है। पहली रा प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव री जयंती माथे राष्ट्र आज वाने श्रद्धांजलि अर्पण करे। नरसिम्हा राव 90 रा दशक में दुनिया में ये संकट और मंदी रा दौर में भारत ने हिफाजती बारे राखण सारू कुशल प्रशासक रा तौर माथे याद करिया जावे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया रा संदेश माए कहो है कि देश रा एक महताऊ दौर माए श्री राव भारत री प्रगति माए अमोल योगदान दियो। अबे आखिर माए खास समाचार आप एक कर फेरू सुन दे रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो स्वदेशी रक्षा उत्पाद माथे ध्यान देवता भारत बत्ती हिफाजती और आत्मनिर्भर बन रियो है। केंद्रीय गांवाई विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत 2047 रा नजरिया ने साकार करण माए गांवारी भूमिका ने महताऊ बताया है। सरिस्का माए बाघ पुनर्स्थापना रा 18 साल पूरा विया। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव कहो बाघ संरक्षण माए राज्य रा अनुभव ने साझा करणु भविष्य री संरक्षण रणनीतियां ने मजबूत करेला। और प्रदेश माए 3 दिन रा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रे पहले दिन आज 59,032 बूथा माते 5 साल ताई रा टावरा ने पोलियो री खुराक पिलाई जी। इनके साथ ही प्रादेशिक समाचार और बुलेटिन अठे पूरो यो मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजा हिंदी में प्रसारित करो जाएगा। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण भाइयों का अपना पसंदीदा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम ग्राम जगत।

बिल्कुल धरती दोहरा रही जिसके तरीके से वहाँ पर दोहरा रही धरती ने एक वे प्रेरित होके ये मतलब गायन किए गए हो। और आप बात करी डेयरी व्यवसाय री, डेयरी व्यवसाय में कई तरीके रा लोग ये व्यवसाय से जुड़ा भी है, रोजगार तो आपकी रोजी रोटी जो कोई पर्यटन जैसलमेर शहर तो जोड़ा साथ साथ में पूरे गांव ढौणी में दूध कलेक्ट करके व्यापार करेंगे। भाइयों आज जो को दिन है वो 28 जून है, 28 जून जो को है एक विशेष दिवस रूप में आप मनाया करें। 28 जून जो को है भाइयों आप अगर बात करो तो भाई आदमी जो को है एक बीमे बीमा जीवन बीमा, जीवन बीमा रो जब नाम आवे तो सबसे पहले नाम आवे LIC रो नाम, क्योंकि LIC नाम बीमे से जरूरी है। भाई आप अगर बीमा जो को है वो आज दिन है वो राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस है, ये 28 जून ने मनाया करें। ये रो मुख्य जो को उद्देश्य यही है कि सामान्य आदमी नो आपकी सबसे पहले तो स्वास्थ्य बीमा जरूर होना चाहिए। वही कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी के तरीके से प्रधानमंत्री जी जो राष्ट्रीय मिशन स्वास्थ्य मिशन के तहत एक बीमो कराया करें तो अपन वो बीमो कराना चाहिए। पूरे साथ साथ में कई अलग क्षेत्र में आप स्वास्थ्य बीमो करना चाहिए, भगवान न करे थे बीमार पड़ो। और राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जी है वो भी बीमो कराया करें, वो भी बीमो अपन कराना चाहिए। भगवान न करे कि आप बीमार पड़ो और आप हॉस्पिटल जाना पड़े, अगर हॉस्पिटल भगस अगर हॉस्पिटल जाना भी पड़ भी जावे तो आप घर जो है लागत वो नहीं लागे और सरकार भी कई तरीके से खर्च करे या प्राइवेट जो संस्था हो वो भी मैं थोड़ा को बीमा कराइड हुए तो वो उरो जितो भी

करते हो निर्णय वो करे। तो कहने का मतलब अपनो खुद रो स्वास्थ्य पूरे साथ साथ में अगर आप गाड़ी चलाओ मोटरसाइकिल है बीजी मोटी चार वाइकल लो कोई चक्कर को हाथ ने वो अगर चलाओ तो उरो भी कराना चाहिए। लेकिन भाइयों तो ऐसा सुनियो को नहीं कि आपकी संपत्ति रो भी बीमा कराना चाहिए, जैसे आपकी दुकान है घर है मकान है सब चीज़ों सब सुख जो रही आज तक भी कभी कोई चीज़ कोई लेकिन 1% या 2% कभी कभी तो देखिए हो कोई दुकान में आग लाग जाओ या घर में कुछ हो जाओ और भी कोई चीज़ हो जाओ तो अगर थोड़े बीमो कराइड हो तो तुरंत भी ना आप पूरी रिपोर्ट दर्ज कराए कि आपको कोई भी काम में कि भाई मारो तो घर में नुकसान हो तो दुकान में नुकसान हो तो भी ना आप पूरा फायदा ले सको। तो कहने का मतलब भविष्य में आप कई तरीके से सुरक्षित रख सको जिके रो आज दिन है जिकेन आप राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कहें जो उद्देश्य महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है ना वित्तीय सुरक्षा से जुड़ो रहे आपातकालीन सुरक्षा है जैसे जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ी अनहोनी है प्राकृतिक आपदाओं है समय में अगर बीमो हो मजबूत हुई तो आप आर्थिक सुरक्षा दे वित्तीय रो ये बहुत फायदो है यह सुनिश्चित करें कि भाई मेडिकल इमरजेंसी में दुर्घटना में कोई स्थिति में आप लोग खर्च को नहीं होने दे। संपत्ति की जो सुरक्षा है घर है गाड़ी है व्यवसाय है संपत्ति और कई तरीके के नुकसान है वो सामान्य बीमे में बहुत महत्वपूर्ण है। बीमे का कई प्रकार है बीमे का प्रकार है जैसे जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस भगवान करे थे 100 साल की उम्र हो लेकिन बीच में थोड़े कहीं कहीं हो जाए तो थोड़े देखो परिवार पालन पोषण करना आप बीमो जाती है आप परिवार तक पहुँच जाओ। स्वास्थ्य बीमो महंगो इलाज है आजकल मोटी मोटी कई नहीं बीमारियाँ बहुत हो रही है वो महंगे इलाज वास्ते आप बाहर मोटी मोटी हॉस्पिटल में जाना पड़े आप को नहीं कर सको उधारा पैसा लेना पड़े कर्जो करना पड़े लेकिन थोड़े अगर ये रुपये रुपये बचाएड़ो है तो आप स्वास्थ्य बीमा बढ़ाए करोड़ो है तो अपन कोई दिक्कत को संपत्ति और वाहनों बीमो जैसे वाहन है घर है दुकान है वही तरीके का बीमो यदि वर्तमान बीमा पॉलिसी में समीक्षा अगर आप यदि कराओ लेकिन अगर जानो ये आवश्यकता जो है वो केतन के अनुसार अपन बीमे वास्ते बहुत ही सही है। तो आज जो जो दिन है वो आप विशेषकर जो है राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस है और वही कार्यक्रम के माध्यम से आजकल फसलों भी जैसे बीमा हुई तो आजकल राजस्थान सरकार जो है पशुओं भी बीमा कराओ तो कहने का मतलब बीमो जो है वो आप खुद रो भी कराओ पशुओं रो भी कराओ खेतों भी कराओ। तो बीमो एक जागरूकता मिशन के तहत आज दिन जो है 28 जून रखे गए उसे कार्यक्रम के माध्यम से हर सुनान किसान भाई ने कहे कि सबसे पहले तो खुद रो बीमो कराओ उसके बाद गाड़ी घोड़े कराओ और उसके बाद में आपकी संपत्ति हो सके तो कराओ जिके से आप अगर तीनों बीमा करा दिया तो आप लोग कोई दिक्कत को नहीं कोई माते कर्जो को नहीं कोई माते रिटेंशन को नहीं टाबरोरी ओ नहीं बाहर परिवार पूरे रहें आप लोग करा दीजिए जिके से आप सुरक्षित और एकदम कोई भी कर्जो नहीं ला तो सरकार रखना जारी सुरक्षा एक बार है राजस्थानी लोग की। लोकगीत आज आप सुनता हो सुनता रागिनी मुमल वाली।

आज आप सुनियो, आप बात करी बीमारी और राष्ट्रीय बीमारी जो आज दिन भी आप बात करी दूध और डेयरी भी और जब बात दो अलग अलग विषयों में जब बात करी तो एक विषय आप मेरी घड़ी के साथ साथ में लास्ट जो होया करी मौसम भी बिल्कुल मौसम और तापमान में थोड़ी सी कमी है लेकिन उमस ज़्यादा है। लेकिन मैं तो ये कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों तक यही पाऊँ कि भाई जितनी जरूरत हो तो घर से निकलो लेकिन शीतल पेय जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो। और जैसे कि आप और नींबू है या कैरी पानी है या इलेक्ट्रॉल है और समय मत अगर आप कोई भी उल्टी या दस्त है तो आप डॉक्टर ना चेक कराओ क्योंकि हमें बरसातों हैं वो आने वाली है। अपना जो किसान भाई है वो खेतों में अपनी तैयारी में लग गया है विशेषकर मौसम के साथ साथ में बच्चों और बुजुर्ग द्वारा विशेषकर अपना ध्यान रखना और अलग अलग विषयों में जब आप बात करी आज मन की बात भी बात करी तो ये कार्यक्रम के माध्यम से अंतिम पड़ाव में जाओते जाओते हर महीने रे अंतिम रविवार नो अपनो देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात भी सुनी तो हमें किसान भाइयों करना पड़ता है अपना घर घना।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का अपना कार्यक्रम ग्राम सदर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन जुबली चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 7:30 हैं। लीजिए सुनिए राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम।

केसरियो हजारी कुलिरो फूल हजारी कुलिरो फूल केसरी के नजर लागे केसरी के नजर लागे ओ पीरा मारो मा डलियो मतराए

राज मारू।

ए पड़छी रे नाके में तो पलान यूरे मांडो हो रे नाके में तो पलानियो रे मांडो रे भारो पलानियो रे मांडो रे भारा दुई दुई तंगड़ लापा ताया रे राज मारा दुई दुई

ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਮਾਰਾ ਕੁਸ਼ਲੀਆ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗੇ।

निबुड़ा निबुड़ा निबुड़ा निबुड़ा छोटा छोटा काचा काचा निबुड़ा लाजे निबुड़ा लाजे मन लाजे लाजे झूल लाजे लाजे लाजे मरी

Money like they

అరే నిపుడా మన నాయతే ఎలా అయితే

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। राजस्थानी लोक संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार थे समंदर खां, सत्तार खां और साथी। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 1.8 MHz पर। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विकास यात्रा। विकास यात्रा में आज का विषय है अमृत सरोवर योजना। प्रस्तुति शरद शर्मा की और निर्देशन रामजीलाल मीणा का।

0: जल है तो कल है। जी हाँ, आज की इस दौर में अगर हम बात करें जल है तो कल की, तो ये अपने आप में बिल्कुल सही बात है। देश में इस समय जो गर्मी का सीजन चल रहा है उसको देखते हुए हम ये मानकर चलते हैं कि आज जो मूलभूत आवश्यकताओं में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है पानी की। पानी के बिना हमारा जीवन बहुत अधूरा, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन देश की बढ़ती हुई आबादी और जल स्रोतों की होती हुई कमी को देखकर हमें लगता है कि अब हमें और बहुत ज़्यादा जागरूक होकर जल संरक्षण के महत्व को समझते हुए इस दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में अपने भी हाथ उसमें शामिल करते हुए उसमें कुछ अपनी तरफ से भी सहयोग करना चाहिए। आज की विकास यात्रा में हम बात कर रहे हैं अमृत सरोवर योजना, जो कि केंद्र सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है और ये योजना दरअसल आम आदमी और हम सबके लिए बहुत जरूरी जाती है। इस योजना का कुल मिलाकर हम ये कह सकते उद्देश्य रहा होगा कि आप जल बचाने में अपना कितना योगदान दे सकते हैं। तो आज की विकास यात्रा में हम इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं मैं शरद शर्मा और मेरे साथ हैं श्यामवीर सिंह।
1: श्रोताओं नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: और शरद जी, देखिए किसी भी देश के विकास के लिए जल बहुत ही जरूरी है और बिना जल के तो कुछ संभव है ही नहीं। और जिन क्षेत्रों में जल नहीं है वहाँ पर अल्प मात्रा में जो बारिश होती है उसका संरक्षण करके ही हम विकास के पथ पर चल सकते हैं। यानी उस क्षेत्र का विकास तभी संभव होगा जब हम एक एक बूंद जल को संरक्षित करेंगे। और शरद जी, बहुत बड़ी एक जो योजना है सरकार की वो है कि जो हमारे पुराने जल स्रोत थे उनका संरक्षण किया जाए, पुनरुद्धार किया जाए और जो विलुप्त होते जा रहे थे उनको अपना पुराना स्वरूप दे करके ये इस तरह से स्वच्छ जल के वो भंडारण किया जाए वहाँ पर कि वो जरूरत पड़ने पर हमारे आम व्यक्तियों के काम आ सके। तो ये जो अमृत सरोवर योजना है ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आम जन के लिए, गांव के लिए और ख़ासकर जैसे कम बारिश वाले क्षेत्र हैं उनके लिए तो ये वरदान है।
0: इसमें देखने वाली बात ये है कि जल की जो कीमत है हम शुरू से जानते आ रहे हैं। व्यक्ति खाने के बिना कुछ दिन रह सकता है लेकिन हवा और पानी ये दो ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनको हमें बहुत संरक्षित और सुरक्षित रखना जरूरी होता है। जब हम हवा को सुरक्षित रखने की और संरक्षण की बात करते हैं तो वो पर्यावरण से जुड़ता है और इसी में जल का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हरियाली होगी तो बारिश होगी, प्रकृति और वातावरण बारिश के अनुकूल होंगे और उसके बाद जल होगा। हमारे यहाँ जल की जो महत्ता है वो केवल एक पीने योग्य पानी के रूप में ही नहीं है बल्कि जल हमारे लिए एक देवतुल्य भी माना जाता है, तो जिसके लिए हम अपना पूरा सब कुछ समर्पण कर सकते हैं। सरकार जानती है कि जल की बढ़ती हुई मांग और उसकी आपूर्ति का जो संतुलन है वो किसी भौतिक संसाधनों से नहीं हो सकता है, वो होगा आमजन की जागरूकता और उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी से। इसीलिए सरकार ने मिशन अमृत सरोवर योजना शुरू की थी। आज लगभग इसको 13-14 साल हो चुके हैं। हर वर्ष हम इसमें अपना योगदान देते हैं, विशेषकर जून का जो महीना होता है इसमें सरकार द्वारा वंदे गंगा जल अभियान भी शुरू किया जाता है, जिसके माध्यम से अपने गांव में जो भी जल स्रोत है उसका जीर्णोद्धार किया जाए। श्याम जी, एक और चीज़ है कि अगर आप प्रकृति से जुड़कर उसके लिए कुछ करते हैं तो प्रकृति आपको उसके बदले में बहुत कुछ देती है। और हमारे यहाँ तो जो परंपरा है जल स्रोत की और उसके रख रखाव की, तो देश के जितने भी गांव हैं लगभग हर जगह वहां पर आपको पारंपरिक जल स्रोत मिलते हैं। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ कि पारंपरिक जल स्रोतों की जो देखभाल है और उसकी सुध-बुध थोड़ी कम होती गई, तो इसलिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया जिसके माध्यम से सरकार जो है आम लोगों को वहाँ के अपने जो नेचुरल प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनके सब संसाधन हैं उसको ठीक ठाक रखें, उसका जीर्णोद्धार करें और जब भी बारिश होगी

0: तो उसका बारिश का पानी जब उसमें संग्रहित होगा तो वो आने वाले समय में न केवल पीने योग्य होगा बल्कि खेती बाड़ी और अन्य कार्यों में भी होगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता तो हमें हर पल रहती है।
1: शरद जी, अब बात करें हम जो हमारे सरोवर थे जो गांव के किनारे विलुप्त होने के कारणों की, तो आपको याद होगा कि हमारे आज़ादी से पूर्व या आज़ादी के बाद तक भी हमारे देश के अंदर गांव में ज़्यादातर घर मिट्टी के हुआ करते थे या कच्चे हुआ करते थे। तो ये एक चक्र बन गया था कि तालाब थे, पोखरें थी, उनको यूँ कहें कि खुदाई की या संरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो अपने आप ही संरक्षित होते रहते थे। कैसे? क्योंकि देखिए, कच्चे घर होते थे बारिश से पहले, यानी जो मई या जून का महीना होता है वहां पर वो तालाब सूखने लगते थे, पानी कम रह जाता था, और बारिश से पूर्व सारे गांव वाले मिलकर के अपने घरों की रिपेयरिंग करते थे बारिश से आने से पहले। अगर घर की रिपेयरिंग नहीं की जाएगी तो वो बारिश को झेल नहीं पाते थे, गिर जाते थे। तो जो मिट्टी होती थी जो तालाब के अंदर, वो चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था, ये हमारी पुरानी परंपरा रही है। उस चिकनी मिट्टी की एक परत गांव की छतों पर, दीवारों पर लगा दी जाती थी, और पूरी बारिश उस दीवार वो सहन कर लेती थी, और बारिश खत्म होने तक वो दीवार मतलब सुरक्षित रहती थी, और पुनः जब वो मिट्टी गल गल के बारिश में वो तालाब में पुनः पहुंच जाती थी। फिर जब अगला महीना आएगा, अगली साल, तो फिर उस मिट्टी को तालाब से निकाल करके उन दीवारों पर लगा दिया जाता था, बारिश से वो मिट्टी घुल करके वापस तालाब में आती रहती थी। एक चक्र हुआ करता था, तालाब अपने आप जो सीमित जो गहराई होती थी उसको प्राप्त कर लेते थे, क्योंकि गांव वाले उससे मिट्टी निकालते थे। अब जो पानी जो तालाब के अंदर आता था, वो कई तरह के, यूं कहें कि कई तरह के तालाब होते हैं हमारे देश के अंदर। एक तो वो तालाब जो पीने योग्य पानी पीने के लिए स्टोर किए जाते हैं, उसके अंदर जो कैप्चर एरिया होता है वो साफ सुथरा रखा जाता था, वहां पर किसी पशु या गंदगी फैलाने की अनुमति नहीं होती थी। वहां जो बारिश गिरती थी वो सीधा तालाब में आएगी और उसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। ऐसे तालाब बावड़ियां ज्यादातर राजस्थान में होती हैं। और जो उत्तर भारत की बात करें जहाँ बारिश अधिक है, जमीन के अंदर पानी है, तो वहां पर एक ही तालाब में बारिश का पानी स्टोर हो जाता था, गांव की नालियों का पानी उसी के अंदर जाता था, और वो पानी पीने के योग्य तो नहीं होता था, लेकिन उसको पशुओं को काम में लेते थे, पशुओं को नहलाने धुलाने के लिए पानी पीने के लिए, या कभी जो फसलें होती थी तालाब के आसपास उनमें सिंचाई के काम आता था। तो जो कैटेगरी है जो तालाबों की, अब हुआ क्या कि उत्तर भारत में जो जमीन का पानी है वो ट्यूबवेल लग गए और घर घर जो है टंकी से पानी पहुंचने लगा, तो तालाबों के जो पानी था यूं कहें कि वो उनमें मात्रा तो बढ़ी, लेकिन हम बात करें घर पक्के बन गए तो उसकी मिट्टी खुदाई होनी बंद हो गई। तो धीरे धीरे धीरे धीरे वो तालाब सारे मिट्टी से भर गए और विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गए, और उनके आसपास जो थे बहुत सारे पौधे उगाए। यूं कहें कि जल स्रोत, हमने जमीन से नीचे का पानी तो निकाल लिया लेकिन पुनर्भरण की व्यवस्था नहीं की, कि जो तालाब थे वो सूख गए।
2: बिल्कुल
1: जमीन के अंदर पानी कहाँ से आता था? तालाबों का पानी रिस रिस के नीचे जाता था, आसपास जो स्टोर होते थे नहर है या कोई अलग है तो उनका पानी, तो तालाब रहे ही नहीं, वो सूख गए, तो नीचे का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और वो बहुत गहराई में चला गया। तब सरकार की आंखें खुली, लोगों को परेशानी हुई, तब सरकार ने कहा कि ये जो सरोवर थे गांव के किनारे कितने महत्वपूर्ण थे। तो आज जरूरत इसलिए पड़ रही है कि जो गांव के किनारे जो तालाब हैं उनमें पानी रहेगा तो जमीन के अंदर पानी रहेगा, और अगर उन तालाबों में पानी नहीं रहेगा तो जमीन के अंदर भी पानी सूखेगा और हमको पीने के लिए समस्याएं पैदा होंगी।
0: बिल्कुल, इसमें आपने जो बात बताई वो सत्यता के तौर पर देखा जाए तो सही है, और आज के समय में अब इन सबको सुरक्षित रखने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ गई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिनों दिन हमारी जो जल की मांग है वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए इस महत्वाकांक्षी जल संरक्षण पहल की जो योजना बनाई गई है, इसका मुख्य लक्ष्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करना और देश के हर जिले में कम से कम 75 जल निकायों अर्थात तालाबों का निर्माण या उसका पुनरुद्धार करना था, जिसके माध्यम से सरकार जो है लोगों को दोनों तरफ से जोड़ना चाहती है। एक जो हम जल को इतना महत्व देते हैं, उसको काफी तवज्जो देते हैं, उसके प्रति हमारा समर्पण का भाव, और हमारी भविष्य की जो जरूरतें हैं वो हम उससे पूरा कर सकें। और ये सब चीजें देखिए, सरकार इसके लिए आपको संसाधन और आर्थिक सहायता दे सकती है, लेकिन जागरूकता हम लोगों की होनी चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि गांव में आज भी इन सब चीजों को

0: बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सजाया जाता है, संवारा संवारा जाता है, देखा जाता है। तो इसलिए इसमें बहुत जरूरी बात यह है कि आप अपने लिए कम से कम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप अपना योगदान जो दे सकते हैं वो जरूर दें। ये सामूहिक कर्तव्य है, सामूहिक जिम्मेदारी है और हम सभी के लिए ये आने वाले भविष्य में आवश्यकता को अगर हम पूरा करना चाहते हैं सुलभता से, आसानी से, कि हमें जल अपने ही स्रोतों से मिल जाए, तो उसके लिए करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज और भी है, अक्सर देखने में आता है कि जब भी आप तालाबों का या छोटे छोटे सरोवरों का या खड़ियों का जब जीर्णोद्धार करते हैं, खुदाई करते हैं, तो उस साल बारिश भी खूब होती है
1: बिल्कुल
0: और उसका परिणाम ये होता है कि वो खुदाई किए हुए जो तालाब होते हैं गर्मियों में थोड़ा बहुत सूखा रहते हैं, लेकिन जैसे मानसून की बारिश शुरू होती है वो पूरे तरह से भर जाते हैं। तो प्रकृति भी उन लोगों का साथ देती है जो संघर्षशील होते हैं, मेहनत करते हैं और जो प्रकृति के प्रति समर्पित होते हैं। तो प्रकृति से नाता जुड़िए और जल संरक्षण की इस मिशन अमृत योजना जो है, अमृत सरोवर योजना है, इसमें अपना योगदान दीजिए। और जल संरक्षण जो है इसमें कैसे भी आप कर सकते हैं, देखिए इसकी शुरुआत अभी घरों से भी होता है। हम बात ग्रामीणों की कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में तो देखिए इतने आधुनिक संसाधन नहीं होते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में आजकल मकान भी इस तरह से बनने लग गए हैं कि उसमें बहुत कुछ चीजें ऑटो मोड पर चलने लगी है। अब हमारे यहाँ पानी शहरों में जो है फ्लश मोड पे काफी व्यर्थ जाता है, वॉश बेसिन पे भी हम पानी को काफी वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा ये ध्यान दें कि जितना आवश्यक हो उतना ही उसका उपयोग किया जाए, फ्लश को ठीक तरह से संचालित किया जाए। और जो हैंड वॉश जो हमारे आजकल बने हुए हैं आधुनिक रूप में, उसमें टूटी खुली रहती है और हम हाथ धोते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा वहां पर भी जल का बहुत अपव्यय होता है, तो उसको भी रोका जाना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और भविष्य की चिंताओं को अगर हम ध्यान में रखते हुए सोचते हैं कि हमारा भविष्य आने वाले समय में पानी को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होगा, तो हमें इस चीज पर ध्यान देना होगा। और ये चीजें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में नहीं बढ़ सकती, ये हर व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है उसकी ये सामूहिक चेतना में ये बात आनी चाहिए कि ये हमारी दैनिक आवश्यकता है, इसके बिना हम रह नहीं सकते, तो इसको कैसे हम संरक्षित रखें ये हमारा प्रयास होना चाहिए।
1: अब जो अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं उनकी खासियत क्या है शरद जी? देखिए, पहले जो गांव का पानी, सीवरेज का पानी जो जाता था उसको उस तालाब के अंदर नहीं जाएगा। अमृत सरोवर के अंदर स्वच्छ जल होगा और उसके आसपास यूँ कहें कि छोटे गार्डन विकसित किए जाएंगे और उसमें बोटिंग का भी प्रावधान है। तो जो ग्राम पंचायतें हैं उनके अंदर जो तालाब है, क्योंकि जमीन तो पहले पुरानी सी पड़ी हुई है, अब उसको संरचित करके बड़ा तालाब करके अब उसको भरने के दो तरीके हैं। एक तो बारिश का पानी आएगा, स्वच्छ जल उससे भरा जाएगा। दूसरा, अगर आसपास कोई नहर है तो उसको नहर से जोड़ा जाएगा, और नहर नहीं है तो जमीन के अंदर पानी है तो उसको जमीन के अंदर के पानी से भी उसको भरा जाएगा। और जो सीवरेज का पानी है या गांव का जो गंदा पानी जाता है उसको एक जगह इकट्ठा करके उसका ट्रीटमेंट करके वो सिंचाई के काम में लिया जाएगा, या पास में कोई नदी होती उसमें डाला जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि सरकार की एक बहुत बड़ी योजना प्रोजेक्ट चल रहा है, वो है नदियों को जोड़ने के लिए। तो जिन नदियों के अंदर पानी नहीं है आज, कल को उन नदियों के अंदर पानी भी आएगा और उन नदियों का पानी पहुँचेगा इन अमृत सरोवरों के अंदर। तो ये अमृत सरोवर ना सिर्फ हमारे गांव के जल स्रोतों का यूँ कह पुनरुद्धारण होगा, बल्कि वहाँ गांव के जो वातावरण है उसको स्वच्छ बनाने में और गांव के लोगों को एक यूँ कहें कि रमणीक स्थल के रूप में भी वो मिल जाएगा, जहाँ पर शाम को वो इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, बोटिंग वगैरह कर सकते हैं, पार्कों में घूम सकते हैं। तो अगर गांव के जितने भी सरपंच हैं, और वो देखिए पहले क्या होता था कि जो कोई तालाब बावड़ी धर्मार्थ कोई सेठ होते थे वो बहुत सारे बनवा देते थे जगह जगह, लेकिन सरकार चाहती है कि सरकार के पास जितना बजट है तो पूरे देश के अंदर जितने अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, तो जैसे कि कहीं 75 स्वीकृत हुए हैं, कहीं 50, कहीं 100, तो पूरे जिलों के अंदर जितने गाँव हैं उन तक पहुँचने में कई वर्ष लग सकते हैं। तो हम सबको आगे आकर के अगर अभी हमारे गाँव का अमृत सरोवर मान लो बजट नहीं आया है, तो हम सबको मिलकर उसकी तैयारी कर लेना चाहिए और जितना हमारे पास हो सकती है उतना तो हम उसका जीर्णोद्धार कर सकें, कम से कम बारिश का पानी उसमें एकत्रित हो सके। तो जब बजट आएगा, अमृत सरोवर बनेगा, तो जो हालत मिलेगी उससे और बेहतर और अच्छा और जल्दी काम होगा। कुल मिला के बात करें तो ये जल संरक्षण की योजना है और गाँव के स्वच्छ वातावरण को बनाने में भी इस अमृत सरोवर का योगदान रहेगा।
0: इसमें श्याम जी एक और चीज जो आपने कही कि यहाँ पर हरियाली होगी और पार्क जैसा बनेगा और बोटिंग भी होगी, तो आप जैसलमेर में हम जब रह रहे हैं और बात कर रहे हैं तो गढ़ीसर इसका कितना बढ़िया उदाहरण है, जहाँ पर पूरा पानी जो है ये वर्षा जल संग्रहण का ही एकमात्र उदाहरण है, जिसमें पानी का संरक्षण हुआ हुआ है और इसको बने हुए भी न जाने कितने वर्ष हो चुके हैं। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो इस गढ़ीसर झील के पास जाते हैं और बोटिंग का आनंद लेते हैं और एक तरह से ये टूरिस्ट स्पॉट भी बना है। तो जल संरक्षण का मतलब एक तरह से आप इसके पीछे निहित उद्देश्य को देखिए, एक तरफ हरियाली का विकास मतलब पर्यावरण संरक्षण, दूसरा वहां पर बोटिंग और अन्य एंटरटेनमेंट की सुविधाएं, इसका मतलब पर्यटन को बढ़ावा मतलब स्थानीय लोगों को रोजगार।
1: बिल्कुल,
0: तो आप एक चीज ये समझ लीजिए कि ये जल संरक्षण केवल आने वाले समय में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मात्र बनकर रहेगा ऐसा नहीं है, इसके जो दूरगामी अन्य जो परिणाम है और जो प्रभाव है वो काफी हद तक हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में भी बहुत मदद करते हैं और ये जीवन का विकास का एक आधार भी बन जाता है कि जब आपने इस तरह की चीजों को बना दिया और वहां पर जब पर्यटन हुआ और इस तरह से नौकायान या अन्य कोई चीजें गतिविधियां होने लगी और शो होने लगे, फाउंटेन शो भी होते हैं, तो इस तरह की चीजों के आकर्षण केंद्र से ये पर्यटक के रूप में विकसित होकर आपकी इकोनॉमी को यानी स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दे रहा है। तो स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने का मतलब होता है पारिवारिक जीवन में आर्थिक प्रगति का एक नया द्वार खुलना। तो सरकार जब भी कोई योजना बनाती है तो उस योजना में उसके बहुत सारे दूरगामी पहलुओं और उसके प्रभावों पर भी विश्लेषण होता है। अब समस्या ये रहती है कि हम उन चीजों को समझ नहीं पाते, इसीलिए हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह की चीजें होती है तो उसके प्रभाव कितने होंगे और कहाँ तक जाएगा। और ये आप समझ लीजिए कि ये केवल एक पानी की बर्बादी को रोकने का काम ही नहीं है, बल्कि देश के विकास में पर्यटन हो चाहे अर्थव्यवस्था हो या रोजगार हो उसको भी आगे बढ़ाने का काम है। और इससे हम भूजल स्तर को भी बढ़ाने की बात कर सकते हैं और जो कि कह सकते हैं ग्राउंड वाटर लेवल जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है वो भी बढ़ेगा। और ये एक और चीज इसमें ध्यान देने योग्य है कि देश के प्रत्येक जिले में जब हम 75 अमृत सरोवर विकसित करने की बात कर रहे हैं तो इसमें आकार में कम से कम 1 एकड़ और जल धारण क्षमता लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। तो आप ये सोचिए कि इस तरह की जमीनें हमारे गाँव में बहुत बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। जैसलमेर जैसे कि क्षेत्रफल को देखा जाए तो यहाँ तो काफ़ी बहुत है हमारे पास इस तरह की ज़मीनें उपलब्ध हैं जहाँ पर इस तरह के काम किए जा सकते हैं। और ये एक जो बात हुई है कि अमृत जल सरोवर योजना में केवल पानी को संरक्षण करने का मतलब नहीं है कि कोई भी पानी आया आपने मिक्स कर दिया। श्याम जी आपने बिल्कुल इसमें सही बात उठाई कि ये एक शुद्ध जल का एकत्रीकरण है जो हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ हो और ये आने वाले समय में सबके लिए उपयोगी भी हो। अदरवाइज तो हम देखते हैं कि मटमैला पानी, नालियों का पानी, गंदा पानी भी उसमें चला जाता है। अब वर्षा जलित जो जल आता है मानते हैं कि उसमें भी थोड़े बहुत मिट्टी होती है, लेकिन वर्षा जल जो होता है वो अपने आप में शुद्धता के पैमाने पर काफी अच्छा माना जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो उसमें मिट्टी निथर जाती है और पानी ऊपर साफ आ जाता है तो लोग उसका उपयोग भी करते हैं।
1: अब यहाँ पर एक बात और है शरद जी के जो योजना है अमृत सरोवर बनाने की उसके अंदर इनको नहरों के पानी से जोड़ा जा रहा है, तो नहर का जो अतिरिक्त पानी जो फ्लो होगा ना तो उसकी निकासी के लिए वो आगे सिंचाई के लिए भेजा जाएगा, तो इससे फायदा क्या होगा? देखिए, एक तो अमृत सरोवर 12 महीने पानी से फुल रहेगा, दूसरा जो अतिरिक्त पानी आएगा ना वो किसानों के आसपास जो फसल के काम भी आ जाएगा, तो जो अमृत सरोवर के आसपास जो खेती होगी ना उसको भी इससे फायदा होने वाला है। और सबसे अच्छी बात शरद जी ये है कि इन अमृत सरोवर में अगर स्वच्छ जल होगा तो मान लीजिए कि कोई बारिश नहीं हुई 2-4 साल, कई बार ऐसा होता है सूखा पड़ जाता है, तो इस पानी को फिल्टर करके हम गांव में पीने के लिए भी सप्लाई कर सकते हैं। आमतौर पर तालाबों के पानी में जो गांव वाले कपड़े धोते हैं पशुओं को तो पिलाने के लिए काम में लेते ही हैं, लेकिन हम इसको फिल्टर करके या ट्रीटमेंट करके इसको पीने के काम में भी ले सकते हैं, तो एक इमरजेंसी व्यवस्था पीने के लिए भी ये हो जाएगी। तो बहुत सारे फायदे हैं अमृत सरोवर पर, और अब जितने तैयार हुए हैं मैंने कुछ देखे हैं इतने खूबसूरत हैं और उनमें बोटिंग भी हो रही है और उनकी दीवारों पर कलरफुल चित्र भी बना

0: आए गए हैं। तो बच्चे आते हैं, वो बड़ा मतलब उन खूबसूरत चित्रों को देखते हैं और आसपास जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जो लोग आते हैं वहाँ पर, तो उनको उस अमृत सरोवर में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जैसे पुण्य के तौर पर किसी को खाना खिलाते हैं, उसी तरह से इन पेड़ पौधों को शाम को वो पानी भी इनमें पिला, पौधों को पानी पिला के जाते हैं। तो जो लोग आते हैं वो पानी पिला देते हैं, तो वो पेड़ पौधे बहुत जल्दी से ग्रो कर रहे हैं। और कोई अपने नाम का, अपने परिवार के नाम का पेड़ पौधा लगाना चाहे तो वहाँ भी वो जगह उपलब्ध है। तो ऐसे अमृत सरोवर गांव के अंदर डेवलप किए गए, बड़े ही खूबसूरत हैं, और आने वाले समय में जो और बनेंगे तो मुझे लगता है गांव भी शहरों की तरह और महानगरों की तरह बड़े सुंदर दिखने शुरू होंगे।
1: इसमें एक और चीज है कि इस तरह के कार्यों से ये एक सामुदायिक मिलन स्थल भी बन जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जब हम देखते हैं कि लोगों को दिन भर भागदौड़ में समय नहीं मिलता है, तो शाम को सुस्ताने के लिए जब इन स्थलों पर जाएंगे तो एक तरह से सामुदायिक मिलन भी हो जाएगा। और देखने में आया है कि इन तालाबों के चारों ओर जो है नीम है, पीपल है और बरगद जैसे छायादार और फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: जो काफी लंबे समय तक रहते हैं और इनकी छाया और फल भी काफी अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर घाटों का निर्माण भी किया जा रहा है और
0: बिल्कुल
1: घाटों पर निर्माण के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था भी की गई है
0: बिल्कुल
1: और स्वतंत्रता सेनानियों या शहीदों के परिवार के नाम से इसका शिलान्यास भी किया जाता है, ताकि इससे देशभक्ति और हमारे जो देश के प्रति बलिदान करने वाले जो बलिदानी हैं उनको भी हम स्मरण करते रहे, उनसे प्रेरणा लेते रहे। और इसके अलावा इसमें जो रोजगार है, आर्थिक लाभ है, अब जैसे किसी गांव में तालाबों की खुदाई होती है तो आप देख रहे हैं रोजगार गारंटी योजना जो हमारी चलती है उसमें भी काम इसमें ग्रामीण स्तर पर व्यापक तौर पर होता है और अतिरिक्त आय हो जाती है। इन तालाबों का उपयोग करके हम सिंचाई है, मछली पालन है या सिंचाई की खेती है, अन्य जैसे काम है, किसानों के लिए भी इसका उपयोग हो जाता है, पीने के पानी का भी इसमें उपयोग होता है। तो ये इस तरह से आप जो कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कह सकते हैं योजना का खाका तैयार किया है सरकार ने कि जिसमें बहुत सारे क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है।
0: सर जी, एक महत्वपूर्ण और बात बताऊं, कुछ जो ग्राम पंचायतें हैं तो उन्होंने अपने जो अमृत सरोवर बनाए, आसपास कुछ धार्मिक स्थल अगर पहले से मौजूद थे तो उनका जीर्णोद्धार कराया गया है। और वहाँ पर कोई विशेष दिन होता है तो वहाँ पर कुछ मेले आयोजित करते हैं वो, तो इसी बहाने गांव के आसपास के लोग उन मेलों में इकट्ठे होते हैं और जो यूँ कहें व्यापारी बंधु आसपास के जो शहरों से आते हैं। तो कई अमृत सरोवर तो ऐसे हैं कि साल में एक बार, और कई के हर मंथली भी होते हैं, साप्ताहिक भी होते हैं, पिकनिक पॉइंट भी हैं। तो कुल मिला के ये बात करें कि जो भारत के जो विकास की दौड़ में जो गांव भी आगे बढ़ रहे हैं और जो अमृत सरोवर योजना है, मुझे लग रहा है गांव के लिए वरदान साबित होगी।
1: बिल्कुल, और ये धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक सामाजिक पर्यटन के रूप में विकसित होकर सरकार ने इसके लिए ये भी प्रावधान किया है कि अगर कोई स्वयं सहायता समूह है, स्वयं आगे आकर इसकी देखरेख करना चाहता है तो उसके रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी सरकार उनको सौंप देती है और समय समय पर उनको मार्गदर्शन भी देती है, जिससे अगर उसमें वो कुछ अपनी तरफ से नवाचार करना चाहते हैं, उसके विकास में कुछ योगदान देना चाहते हैं, तो सरकार उसके लिए भी उनको पूरी तरह से सहायता देती है। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि आज के समय में ये योजना जो है बिल्कुल खरी है और इस योजना का जो भविष्य है आज के इस समय में लोगों के प्रति जो इसमें रुचि है और उस रुचि और जागरूकता के चलते जब उन्हें ये पता चल चुका है कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और ये केवल मात्र जीने का आधार ही नहीं बल्कि देश के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगति का भी प्रमुख आधार बिंदु है, तो लोगों ने इसमें स्वयं बढ़ चढ़कर जो है अपना योगदान देने का काम शुरू कर दिया है। तो योजना का ये जो खाका तैयार करने के बाद उसकी जो सफलता है वो तभी सही साबित होती है कि जब आम जन उस योजना से जुड़कर उसमें अपना बहुमूल्य योगदान दें और उनके आजू बाजू के जितने भी प्रभाव हैं उसको समझते हुए अपना मानकर ये चलें और इसमें न केवल उनकी भलाई है बल्कि देश का विकास है और जो विजन हम आने वाले समय में भविष्य में भारत का देख रहे हैं उसमें ये एक छोटी सी कड़ी भी साबित होती है।
0: और कुल मिला के बात करें कि जो भारत का जो विकास हो रहा है उसमें कोई भी क्षेत्र कहीं पीछे न रह जाए, सरकार की यही मंशा है। तो ग्राम पंचायतों के बजट को बढ़ाया गया है और बहुत सारी योजनाएं गांव तक पहुंचाई गई हैं। तो जैसे अमृत सरोवर है, इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो गांव के लिए हैं। और उनसे

0: गांव का विकास तेजी से हो रहा है और सरकार की मंशा ये है कि 2047 तक जब हम विकसित भारत की जो कल्पना कर रहे हैं उसमें सचमुच हर क्षेत्र विकसित दिखाई दे और कोई क्षेत्र पिछड़ा ना रहे, हर व्यक्ति को रोजगार हो और बदलाव जो देश में तेजी से हो रहे हैं और तेजी से हो, हर गांव में अमृत सरोवर बने तो मुझे लग रहा है हर गांव की खूबसूरती इतनी निखर जाएगी कि भारत के गांव एक स्वच्छ और विकसित गांव नजर आएंगे।
1: और इस संकल्प के साथ कि जल है तो कल है और इसको बचाना हमारा पहला दायित्व है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम मानकर चलते हैं कि इस अमृत सरोवर योजना में हमारी भागीदारी 100% रहेगी और गांव और देश और हम सबका भविष्य बहुत सुंदर और सुनहरा होगा। इस उम्मीद के साथ आज के इस विकास यात्रा कार्यक्रम से मुझे शरद शर्मा
0: और श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
2: आजादी का अमृत महोत्सव।

अभी स्वतः संदर्भ कार्यक्रम विकास यात्रा जिसका विषय था अमृत सरोवर योजना, प्रस्तुति शरद शर्मा की और निर्देशन रामजीलाल मीणा का। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ का। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 8:30 हैं। सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय जवान।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ मैं हूँ राजलक्ष्मी। हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम जय जवान। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं हकीकत फिल्म से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने।

कर चले हम पिता जनतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जनतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।

नब्ज थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ के कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न

वतन साथिये कर चले हम पिता जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।

तुम साथियों कर चले हम विदा जान तुम साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन।

जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है, गले बांध लो अपने सर से

0: वाले वतन साथियों।
1: तो हकीकत फिल्म का गीत अभी आपने सुना, इसके बारे में ये प्रसिद्ध है कि ये युद्ध की पृष्ठभूमि पर ये फिल्म बनी थी और ये ऐतिहासिक और सर्वश्रेष्ठ युद्ध फिल्मों में से इस फिल्म को जो है याद किया जाता है। चेतनानंदन द्वारा निर्देशित की गई थी और जब भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, तब उस लड़ाई पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन किया गया था, जो कि उस युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के साहस बलिदान पराक्रम को सच्ची श्रद्धांजलि के लिए। कार्यक्रम के अगली कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं बॉर्डर फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़ और साथियों ने।

तो बॉर्डर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे हैं, और बॉर्डर फिल्म की जब हम बात करते हैं तो ये फिल्म भी प्रसिद्ध देशभक्ति और युद्ध पर ही आधारित फिल्मों में से एक थी। ये फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान राजस्थान के लोंगेवाला में जो ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई थी उस पर आधारित सच की घटना पर ये फिल्म बनाई गई थी। और इस फिल्म में भी भारतीय सैनिकों के युद्ध पराक्रम शौर्य को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जिसे देखते ही दर्शक जो है उसके मन में भी देशभक्ति और वीरता का एहसास होने लगता है। सुनिए बॉर्डर फिल्म का ये प्यारा सा लोकप्रिय गीत।

श्रोताओं, बॉर्डर फिल्म के इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर में यानी रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे इवनिंग न्यूज़, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में UPI भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशल में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट आवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला। ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही, इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत, एक पंचायत किस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
3: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच

0: गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 7 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश डोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations of a recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heat wave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
4: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke saath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले. आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इन टू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी.
3: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation level talk with Seychelles President Patrick Hermine in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields including agriculture, finance, space and health. Prime Minister Modi expressed happiness that an MOU has been signed to implement UPI in Seychelles.
4: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है.
3: He said the India-Seychelles partnership in the health sector has stood the test of time. He said the MOU signed on Jan Aushadhi today will help provide quality and affordable medicines to the people of Seychelles. Addressing the gathering, Seychelles President Hermine said maritime security in the Indian Ocean region remains central to bilateral ties, with the two countries reaffirming their commitment to counter piracy, drug trafficking, illegal fishing and cross-border crime.
5: A particularly significant milestone is the groundbreaking inauguration of the Professional and Technical Education Center. This India-assisted project will equip Seychellois youth with world-class vocational training, strengthening our capacity building. My deepest gratitude to Prime Minister Modi for this transformative initiative.
3: On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The Seychelles President conferred the prestigious honor on Prime Minister Modi. The distinction has been awarded to Prime Minister Modi in recognition of his green leadership, his efforts towards advancing the interests of developing countries, and his long-standing commitment to promoting the blue economy, climate action, the sustainable management of ocean resources, and the developmental aspirations of small island developing states. Prime Minister Modi dedicated the honor to all the countries who are committed to environmental conservation and fighting climate change. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, both India and Seychelles seek a world where development is more inclusive and international institutions reflect contemporary realities, reaffirming their commitment to advancing the interests of the Global South.
4: Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive. We both seek a world where international institutions reflect contemporary realities. We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively and fairly.
3: Mr. Modi said that India's vision is captured in the idea of Mahasagar, which recognizes that our futures are interconnected and interdependent.
4: Our vision is captured in the idea of Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar. This vision recognizes that our futures are interconnected and interdependent, and we will continue to work together for a safer and more secure Indian Ocean region.
3: The Prime Minister said it is a special honor to stand before everyone as the first Indian Prime Minister to address the National Assembly. He also thanked the President and the people of Seychelles for honoring him with the Seychelles' highest distinction, the Guardian of the Blue Horizon. Mr. Modi reached Victoria yesterday on a three-day visit to the East African island nation. Meanwhile, Lok Sabha Speaker Om Birla and several union ministers, including Amit Shah, S. Jaishankar, Rajnath Singh, Piyush Goyal, Manohar Lal, and Jitendra Singh congratulated Prime Minister Modi on being conferred with Seychelles' highest distinction for the leadership in environmental conservation and sustainable development. Prime Minister Modi has said that power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today, Mr. Modi said this spirit was once again evident after he appealed to citizens to adopt certain measures in view of the prevailing warlike situation in West Asia. Mr. Modi had urged people to avoid buying gold, postpone non-essential foreign travel and use carpooling for some time.
4: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था उस समय के लिए सोना खरीदने से

उसे ऐसा दिल नशी कोई शेर है कहीं, शायर कहे शायरी की कसम, नहीं नहीं।

अभी आपने अब्दुल्ला फिल्म का गीत सुना मोहम्मद रफी की आवाज़ में। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अगली कड़ी में नया दौर। उस फिल्मकार की आवाज़ें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम श्रोता आकाशवाणी के एफएम से सुन रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में नया दौर इस फिल्म का गीती आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

0: तेरी फोड़े जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी
1: जब ऐसे चिकने चेहरे और जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले तो कैसे ना

0: बेरियों के ढेर पक गए जिंदु मेरी।
1: कभी डाल इधर भी तेरा, कभी डाल इधर भी तेरा के तक तक।

0: तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये सिंधु मेरिये।
1: अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरे छिप जाने दे, के चांद मेरे छिप जाने दे।
2: मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए हुए नया दौर फिल्म के इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। राजस्थानी लोक संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं ममता सिंह, सीमा मिश्रा और रागिनी। श्रोताओं, लीजिए पहले सुनिए ममता सिंह के गाए हुए ये लोकगीत, तावड़ो धीमो पड़ जा रे, चांद चढ़ो गिरनार और उड़ उड़ रे मारा काला रे काकड़ा।

साजन सालिया परदेसियां में दौड़ी गलियां बीच भंवर जी में दौड़ी गलियां भी

कह गया जी कोई कर गया कॉल उन्हें तो भंवर जी कर गया कॉल उन्हें गिरता गिरता भस गई रे मारे राम।

रुद्रा हो अगला में थारे बांधुर रुद्रा गले में हार पहराऊं तागा जत मारा पिवजी घर आवे।

जन्म जन्म जन्म जन्म गुण गाऊं जत मारा पिबजी घर आवे उड़ उड़ रे मारा काला कागला जत मारा जग मारा।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे रविवार स्तरीय संगीत सम्मेलन, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित सुधीर पांडे का एकल तबला वादन। पंडित सुधीर पांडे का नाम देश के अग्रिम पंक्ति के सर्वश्रेष्ठ तबला वादकों में लिया जाता है। आपने तबले की शिक्षा अपने पिता सहगुरु स्वर्गीय पंडित अर्जुन पांडे और दादा गुरु पंडित भागवत सिंह जी से बनारस दिल्ली और अजराड़ा घरानों में प्राप्त की। तीनों घरानों का खूबसूरत गुलदस्ता सजाकर एक नई शैली गुरु द्वारा प्रदान की गई, जिसे लडंत का बाज नाम दिया गया। आप इस शैली के प्रमुख प्रतिनिधि वादक हैं। दाएं बाएं की सघन भूमिका, बोलों की शुद्धता, रचनाओं में लय का सुंदर विन्यास, प्रयोग धर्मिता और विरासत में मिले पुराने दुर्लभ बोलों की पांडित्यपूर्ण प्रस्तुति आपके वादन में सहज रूप से मिलती है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू अ तबला रिसाइटल बाय पंडित सुधीर पांडे। पंडित सुधीर पांडे इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट तबला वर्चुसो। ही रिसीव्ड हिज रिगरस ट्रेनिंग फ्रॉम हिज रेवर्ड फादर एंड गुरु लेट पंडित अर्जुन पांडे एंड हिज दादा गुरु पंडित भागवत सिंह। इनहेरिटिंग द रिच ट्रेडिशंस ऑफ द बनारस दिल्ली एंड अजराड़ा घरानास, drawing upon the finest elements of these three illustrious traditions, his gurus evolved a unique style of tabla playing known as ladant ka baj, of which Panditji is among the leading exponents today. His artistry is characterized by the balanced and powerful use of both hands, crystal clear articulation of bowls, intricate rhythmic architecture, innovative presentation, and the scholarly rendering of rare traditional compositions preserved through the sacred Guru Shishya Parampara. Through his performances at prestigious festivals and concerts, he has earned immense admiration from musicians, connoisseurs and music lovers alike.
0: आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं घनश्याम सिसोदिया। पंडित सुधीर पांडे अपने कार्यक्रम का आरंभ तीन ताल से कर रहे हैं।
1: In tonight's program, he is accompanied on sarangi by घनश्याम सिसोदिया। He is presenting tabla recital in ताल, तीन ताल।

Kanda,

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन। अभी आप सुन रहे थे ताल फिल्म ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे घनश्याम सिसोदिया। और इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यही संपन्न होती है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: यू जस्ट हर्ड ताल तीन ताल प्लेड ऑन तबला बाय सुधीर पांडे। ही वॉज अकम्पनीड ऑन सारंगी बाय घनश्याम सिसोदिया। With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी है। आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री एन एस कल्याण रामन द्वारा मृदंगम पर लाइव विन्यासम।
3: This is Akashwani. In tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha, we present Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanaraman.
2: Paramparik Sangeet Parivar mein janme Sri N.S. Kalyanaraman, Andhra Pradesh ke suprasiddh mridanga vadak hai. Unhone balyavastha se hi mridanga vadan par gahri ruchi dikhai aur apna prarambhik prashikshan Sri M.K.R. Prasad se prapt kiya. Baad mein unhone vikhyat mridanga vidwan श्री दंडमूड़ी राममोहन राव और श्री के वीरभद्र राव से उच्च प्रशिक्षण पाया।
3: श्री एन एस कल्याण रामन इज अ रेनाउंड मृदंगम आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश बिलोंगिंग टू अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल फैमिली। ही शोड कीन इंटरेस्ट इन मृदंगम फ्रॉम अ वेरी यंग एज एंड रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग अंडर श्री एम के आर प्रसाद। ही लेटर अंडरवेंट एडवांस्ड ट्रेनिंग अंडर द रेनाउंड गुरुज श्री दंडमूड़ी राममोहन राव एंड श्री के वीरभद्र राव।
2: श्री एन एस कल्याण रामन ने डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण, श्री टी वी शंकर नारायण, श्री टी एन शेषगोपालन, हैदराबाद ब्रदर्स और हैदराबाद सिस्टर्स जैसे अनेक प्रख्यात संगीतज्ञों के साथ संगत किया। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित मंच जैसे मद्रास म्यूजिक एकेडमी में कई प्रदर्शन दिया।
3: श्री एन एस कल्याण रामन हैज अकम्पनीड सेवरल एमिनेंट म्यूजिशियंस इंक्लूडिंग डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण, श्री टी वी शंकर नारायण, Sri T. N. Seshagopalan, Hyderabad Sisters and Hyderabad Brothers. He has performed in prestigious sabhas across the country including Madras Music Academy.
2: Sri N. S. Kalyanaraman Akashwani ke top grade kalakar raha. Aapne Chennai aur Vijayawada Akashwani kendra mein 36 varsh ki visisht seva pradan kiya. Aapne Akashwani aur Doordarshan ke kai rashtriya sangeet karyakram mein bhag liya. आप कंची कामकोटी पीठम का आस्थान विद्वान रहा और आपको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित उगादि पुरस्कार भी प्राप्त हुई।
3: He is a top grade artist of Akashwani and has also participated in national programs of music and Doordarshan programs. He rendered 36 years of distinguished service to Akashwani at Chennai and Vijayawada. He was honored as Asthana Vidwan of Kanchi Kamakoti Peetam and also received the prestigious Ugadi Puraskar from the government of Andhra Pradesh.
4: Aaj ke karyakram mein Sri M.S. Kalyanaraman Mridanga

0: एनएस कल्याणरामन अपना मृदंगम लाइव विन्यासम का समापन संकीर्ण चापुताल से कर रहा है।
1: श्री एनएस कल्याणरामन कंक्लूड्स हिज लाइव विन्यासम ऑन मृदंगम विद संकीर्ण चापुतालम।

0: आप रविवार से अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा प्रस्तुत मृदंगम पर लाइव विन्यासम सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है। अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: You have been listening to Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanuraman in the Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Vijayawada and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 103.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी रात में 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम डिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
1: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke saath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले. Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
2: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space, and health. On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The Seychelles President conferred the prestigious honor on Prime Minister Modi. Prime Minister Modi dedicated the honor to all the countries who are committed to environmental conservation and fighting climate change. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that India's vision is captured in the idea of Mahasagar, which recognizes that our futures are interconnected and interdependent. On the sidelines of the Seychelles visit, Prime Minister Narendra Modi met Mauritius Prime Minister Dr. Navin Chandrarangulam today. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Prime Minister Modi underscored the importance attached by India to the development and progress of Mauritius, noting that the ongoing bilateral projects will contribute to Mauritius' healthcare, connectivity, sustainable development, and blue economy. India today categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. He said Pakistan should rid itself of its proclivity to rely on terrorism as an instrument of state policy. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today launched the pilot project.